फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। शुक्रवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 25वीं तिथि, तदनुसार 15 मई 2026 इस समय 5:57 हुए हैं। हमारा आज का प्रसारण अब आरंभ होता है।

हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रक्षेपण 100.7 मेगाहर्ट्ज पर 6 बजने को है, तो होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: വൈഷ്ണവി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ആജ് സംയുക്ത അറബ് അമീരാത്, യുഎഇ, നെതർലാൻഡ്, സ്വീഡൻ, നോർവെ ഓർ ഇറ്റലി കി 6 ദിൻ കി യാത്ര പർ റവാനാ ഹോംഗേ. യാത്ര കെ പെഹലേ ചരൺ മേ ശ്രീ മോദി ആജ് യുഎഇ പഹുഞ്ചേംഗേ, ജഹാ വേ രാഷ്ട്രപതി ശേഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ സേ മുലാഖാത് കരേംഗേ. ദോനോ നേതാ ദ്വിപക്ഷീയ മുദ്ദോ, വിശേഷ റൂപ് സേ ഊർജാ സഹയോഗ്, പാരസ്പരിക് ഹിത് കെ ക്ഷേത്രീയ ഓർ അന്തർരാഷ്ട്രീയ മുദ്ദോ പർ വിചാർ വിമർശ കരേംഗേ. ഹമാരെ സംവാദദാതാ നേ ബതായാ ഹൈ കി പ്രധാനമന്ത്രി കി ഇസ് യാത്ര സേ ദോനോ പക്ഷോ के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है.
1: इंडिया और यूए की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही. यूए अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है. इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है. रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है. विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा. नई दिल्ली में कल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और

ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैमानिकी विकास एजेंसी के विमान एकीकरण और उड़ान परीक्षण केंद्र की आधारशिला रखी जाएगी। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश

0: बकवासों पर की गई, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, ताकि उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। इससे पहले इस योजना के अंतर्गत सोने की आयात पर कोई सीमा नहीं थी। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 111 लोगों की मौत और 200 लोगों के घायल होने की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल जायजा लेने का निर्देश दिया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। कल शाम धर्मशाला में मुंबई इंडियंस ने एक गेंद शेष रहते 205 रन बनाकर जीत हासिल की। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर 6:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए चिंतन।
2: गई है यीशु ने कहा है, अपने प्रेम करो, अर्थात दूसरे मनुष्य के बीच के संबंध का आधार प्रेम ही निर्धारित किया है। प्रेम है जिस पर विकसित समाज की कल्पना कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति की वाग्धारा की दिशा निर्धारित करने वाला प्रमुख स्रोत मानव से मानव के स्नेह का भाव ही है। प्राचीन भारतीय मनुष्यों ने प्रेम के 8 स्तर माने हैं। प्रीति, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव और महाभाव। कि प्रेम निष्काम और निस्वार्थ भाव से किया जाए, किसी से किसी स्वार्थ के वशीभूत हो प्रेम करने का ढोंग करता है तो वह पाप ही करता है। इसके में कई दूसरी अर्थाएं भी वांछित होती है, यथा उसे परम विवेकशील भी होना चाहिए, हो जाता है उसके देने का भाव नहीं आ सकता, ना अंधा हो जाता है कि फिर आकांक्षा करने लगता है, चाहे किसी का अहित ही करना पड़े या दूसरे व्यक्तियों का दिल ही दुखाना पड़ जाए। आपकी भी रक्षा नहीं कर सकता करता है उसके कि वह बहुत बुरा हो गया है, किंतु फिर भी वैसा ही करता है। इसी को मोह कहते हैं। उदाहरण किसी दिन कम होता है। हम सब के जीवन में ऐसे क्षण बहुधा आया करते हैं जब अपने को दिखने लगते हैं। ऐसा क्षण बहुत ही शुभ होता है। जीवन में जब मनुष्य को अपने पाप दिखते हैं तो वह बड़ी शुभ घड़ी होती है। जब वे जीवन में किए गए पापों पर पश्चाताप करके अपने आने वाले दिनों में उनसे दूर रहने का संकल्प करता है। पास के जीवों से, अपने समाज से प्रेम करने वाला व्यक्ति निश्चित ही एक दिन अपने सत्कर्मों के फलस्वरूप संपूर्ण मानव जाति के आदर का पात्र बनकर सामने आता है। उसका के रूप में याद किया जाता है। यीशु मां टेरेसा तक प्रतिमूर्ति ही रहा है। अमीर, गरीब,

0: अपना स्थान समर्पित कर दिया। यही कारण है कि आज हमारा मस्तक उनके सामने झुका रहता है।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, हम पानी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, जिसमें सबसे पहले हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पंडित कुमार गंधर्व और वसुंधरा कोमकली की आवाज में। ये भक्ति गीत रचना है कबीर की, संगीत है पंडित हृदयनाथ मंगेशकर का।

0: तीर्थ यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आकाशवाणी एट 90 की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष वंदे मातरम और मैं निशा भारद्वाज आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। श्रोताओं, वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है बल्कि ये तो भारत की आत्मा का अमर स्वर है। और अब जबकि इस गीत ने 150 वर्षों का एक लंबा सफर तय कर लिया है तो और भी जरूरी हो जाता है कि हम इसके बारे में अधिक जानें, अधिक समझें। तो इस बारे में हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं विश्व भारती विश्वविद्यालय से प्रोफेसर मनवेंद्र नाथ साहा।
1: नमस्कार। इस गीत की महत्व तो सब भारतीयों के लिए बहुत ज्यादा है, अब सभी जानते हैं। ये गीत 1875 7 नवंबर बंकिम चंद्र ने लिखा है। हमारा नेशनल गीत है वंदे मातरम। बंकिम चंद्र एक चिंताविद थे और एक नवेलिस्ट थे। ड्यूरिंग द ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ अक्षय नवमी विच वॉज ऑन 7 नवंबर 1875 ये गीत बंकिम चंद्र ने लिखा। उसके बाद वंदे मातरम फर्स्ट अपीयर्ड इन द लिटरेरी मैगजीन जो बंकिम चंद्र ने ही संपादना किया था, बंगा दर्शन पर पब्लिश हुआ था 1818। ये भी आप जानते हैं कि ऋषि अरविंदो ने गीत का अंग्रेजी अनुवाद किया है जिसका नाम था मदर आई गो टू दी। कवि गुरु रविंद्रनाथ 1937 में इसका सुरारोप किया, उसके पहले पहला सुर दिया जदू भट्टो ने। सुर मीन्स इस गीत का धुन बनाया जदू भट्टो। उसके बाद हम जानते हैं कि 1896 पर जब कलकत्ता में नेशनल कांग्रेस हुआ पहली बार पब्लिक मंच पर ये गीत गाया था और उसी दिन से या उसी टाइम से गीत का पहला लाइन पॉलिटिकल स्लोगन बन गया, स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई में एक नारा बन गया ये गीत। बंकिम चंद्र केवल नवेलिस्ट नहीं थे, उन्होंने एक इतिहास चेतना की प्रवक्ता थे जिस चेतना जाति संगठन के लिए एक बड़ी बात है। बंकिम चंद्र वॉज ए मिशन बिल्डर नॉट ओनली ए नॉवेलिस्ट। प्रख्यात चिंताविद रमेश चंद्र दत्तों ने कहा द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th सेंचुरी। बंकिम चंद्र को ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th सेंचुरी कहा गया। बंकिम ने जीवन के हर मोड़ पर हर सच की संधान की। और एक बात है कि बंकिम चंद्र इस गीत का परिकल्पना मुर्शिदाबाद जिला में किया था जब बंकिम चंद्र मुर्शिदाबाद में कलेक्टर था। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं मुर्शिदाबाद जिला से बिलोंग करता हूँ। बंकिम के अंदर देश के लिए प्यार था, उनके अंदर तीव्र अत्याभिमान भी था। इस अभिमान की एक्सप्रेशन हुआ इस गीत में। बंकिम मैंने पहले ही कहा कि एक नवेलिस्ट नहीं थे, एक ऋषि भी थे। He was the pioneer of स्वदेश पूजा। On 1876 वेस्ट बंगाल की हुगली जिला में गोपालचंद्र धर नामक एक व्यक्ति वंदे मातरम गीत देश मल्लार धुन में गाया था। और मैंने बोला कि 1871 में गीत का परिकल्पना मुर्शिदाबाद जिला में हुआ। वंदे मातरम हमारा गर्व है, स्वदेश को आगे बढ़ाने के लिए ये गीत हर वक्त हमारा आदर्श होगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने उनकी घरे बायरे नामक जो नॉवेल है, उपन्यास है, उसमें कैरेक्टर है निखिलेश। निखिलेश ने बोला देश उसी को है जो देश को प्यार करते हैं, जन्म लेने से देश हमारा नहीं हो जाता। बंकिम चंद्र के अंदर में देश के लिए एक अभिमान थे, उस अभिमान से ये गीत 1875 आज के दिन लिखा गया था। उसके बाद जब आनंदमठ उपन्यास पब्लिश हुआ 1882 में तब उसका गीत का प्रसार हुआ। उसके बाद ये गीत हमारा नेशनल गीत हुआ। तो मैं ये कहूंगा कि आज के दिन देशभक्ति, देश के लिए प्रेम, देश के लिए प्रतिमान होना चाहिए। और अगर हम इस बात को दिल में रखें तो बंकिम के प्रति वही होगा सच्चा श्रद्धा। सबको मेरा नमस्कार, बंकिम चंद्र जी के लिए मेरा प्रणाम।
0: इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मनवेंद्र नाथ साहा जी। और इसी के साथ मैं निशा भारद्वाज लेती हूँ आपसे अनुमति। नमस्कार।

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन की क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में भक्ति गीत। रचना है कबीर की, संगीत है पंडित हृदयनाथ मंगेशकर का।

इस गीत के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न होता है। केंद्र से बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर 6:30 हुए हैं। लीजिए अब सुने कृषि चर्चा में कृत्रिम गर्भाधान की महत्ता। डॉक्टर दिलीप पटेल पशु चिकित्सक पशु चिकित्सालय खरसिया।

0: हेचाउ सनैला उगाना है 40 और 50 दिन के भीतर में माटी में मिला देना है और फसल ला प्राकृतिक रूप में पोषण आहार मिलते।
1: वाह, ये तो संजीवनी बूटी जैसे काम करी भैया, महू भी अपनाहु ये लगा।
0: हरी खाद ला अपनाव, धरती नाई के स्वास्थ्य ला बचाव।
1: ज्यादा जानकारी बर अपन नजदीकी कृषि कार्यालय के हेल्पलाइन नंबर में संपर्क कराऊ। सभी संग

देसी नस्ल कथन या दो लीटर ही है तो के जान उत्पादन में भी वृद्धि हो और फायदा भी हो। तो पशुपालन कृत्रिम गर्भाधान योजना जो है पूरे राज्य में चला, जेकर से हम आपन के देसी नस्ल के गाय से जो है अच्छा नस्ल के जो है बछड़ा उत्पन्न कर सकत हन। तो एक कृत्रिम गर्भाधान में जो भी गाय जब सामान्य देसी जो गाय होते वह 3 वर्ष के आयु तक आते अपन के प्रजनन योग्य क्षमता में, तो हमें आजकल कृत्रिम गर्भाधान योजना संचालित है। तो पशु के गर्भी के आय के लक्षण जैसे ही हमला पता चला थे ओकर 24 घंटा के बीच हमला जो है जानवर के कृत्रिम गर्भाधान कराना रहते। एक हम का लक्षण देख के हमला पता चल ही, तो इमे जो है जो गाय है वह जो जेनाइटल मार्ग है उनमें से जो है पतला पानी के समान लारा जो है निकलते, जैसे गाय के पास तो वह गाय जो है उसके ऊपर चढ़े के प्रयास करते। तो ये लक्षण मिलते ही जो है हमन जो है डॉक्टर से संपर्क करके आजकल एचएफ गाय जो आप मन देखे हो या काली चितकबरी गाय रहते, जर्सी गाय, गिर गाय है, साहीवाल नस्ल है, ये सब नस्ल के जो है हमार विभाग में सीमेन रथे एकर उपयोग करके जो है अच्छे नस्ल के बछड़ा पा सकत हन। अभी हम विभाग में जो है ऐसे तकनीक भी आ गए है जेकर द्वारा गर्भाधान द्वारा हम उनके पास अच्छे सीमेन उपलब्ध हो गए है, जेकर उपयोग हम जो है देसी गाय में इस तो हम भी आप सब मन जाए

बहुत ही ज्यादा बढ़ गए है। और एक मुख्य जो कारण है वह जो भी न थे ओकर अभी के स्थिति में कोई मोल नहीं है। काबर के द्वारा होते ट्रैक्टर आगे हार्वेस्टर आगे एकर द्वारा खेती में जो न जानवर है एकर उपयोग जो है बहुत ही कम हो गिसना जिसका कारण किसान भाई बोला खुला छोड़ देते। तो ये समस्या के भी जो है निदान जो है हमारे सीमेन उपलब्ध है। इस 160 सीमेन के उपयोग हम अगर देसी गाय में करबो तो इनमें जो है हमारा बच्चिया नस्ल ही प्राप्त होगी और जेकर से जो है दोनों प्रकार की समस्या से हमारा मुक्ति मिल ही। धन्यवाद संगवारी।

0: कार्बनिक पदार्थ देते जेकर
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब आपको जानकारी दे दें प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। थोड़ी ही देर बाद सुनेगा रामचरितमानस मिनट पर, चित्रपटेंगे 7:05 पर, दिवस के अवसर पर भेंट वार्ता हम आपको सुनवाएंगे पर, जिसमें विषय है संस्कार प्रेम और सुरक्षा की पाठशाला परिवार। 45 मिनट पर से मिलिए का अनुप्रसारण किया जाएगा रायपुर केंद्र से 8:30 पर। अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा सुबह 9:00 से। कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 10:10 पर। फिर का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश का समय होगा 10:30 पर। प्रसारण किया जाएगा दिल्ली केंद्र से सुबह 11:00 से।
2: मंगल भवन मंगलहारी
3: जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7:00 और दोपहर 12:30 डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: हाथी हमरगोट का प्रसारण होगा 5:00। भजन आप सुन सकेंगे 5:10 पर। चित्रपट का आनंद लीजिएगा 5:30 पर। फिर सुनिए आप सुन सकेंगे 6:20 पर। और फिर सुनिए का शेष भाग सुनेगा 7:00। किसान भाइयों के कार्यक्रम चौपाल का समय होगा 7:20 पर, जिसकी बात का विषय है पोटेशियम तत्व का फसल उत्पादन पर प्रभाव। बदक पालन एक लाभकारी व्यवसाय। साथ में आप सुनेंगे आज का टिप कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव, आज का मौसम। हम आपके लिए लेकर आएंगे 8:20 पर। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 8:30 पर। विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा 9:00 से। विविध संगीत आप सुन सकेंगे 10:00। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम रजनीगंधा का समय होगा 10:30 पर। ये प्रसारित होने वाले कार्यक्रम

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। नेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर 6:40 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए रामचरित मानस। कलाकार है राजेंद्र साठे, संगीत संयोजन है सतीश भाटिया का।

भारतीय भक्ति साहित्य में जहां एक ओर ब्रह्म के निर्गुण और सगुण स्वरूपों की व्याख्या मिलती है, वहां दूसरी ओर प्रभु के नाम की महिमा तथा यशोगान भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तुलसीदास ने प्रभु के नाम को उनके निर्गुण तथा सगुण दोनों रूपों से अधिक महिमामय तथा बड़ा बताया है। जो लोग सभी कामनाओं को त्याग कर श्री राम का नाम भजते हैं, उनका मन भक्ति रूपी सरोवर में मछली की भांति होता है, जिसे जल से अलग करने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। निर्गुण तथा सगुण ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान होता है। निर्गुण काठ में निहित अग्नि जो देखती नहीं, सगुण उस अग्नि के समान है जिसे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है, किंतु तत्वतः दोनों एक ही हैं। दोनों का ज्ञान प्राप्त करना समान रूप से कठिन होता है। प्रभु का नाम ऐसा सहारा है जिससे दोनों सरल और सुगम हो जाते हैं।

मानस हम है फ्रिक्वेंसी।

0: अभी आप सुन रहे थे देश गान समोसर में। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 6:55 हुए समाचार होंगे।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक डॉक्टर गणेश हेगड़े। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्यारभ्य यूएई नेदरलैंड स्वीडन नार्वे इटली देशानां षड् दिवसीय यात्रायां भविष्यति। पञ्चदेश यात्रायाः प्रथमपदे अद्य श्री मोदी यूएई देशं गमिष्यति, यत्र सः राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान इत्यनेन सह मिलिष्यति। द्विपक्षीय विषयेषु विशेषतः ऊर्जा सहकार्ये तथैव परस्पर हितस्य क्षेत्रीय अन्ताराष्ट्रिय विषयेषु च द्वौ नेतारौ विचाराणाम् आदान प्रदानं करिष्यतः। मेलनमिदं ऊर्जा सुरक्षा विषये केन्द्रीकृतं भविष्यति इत्यपेक्षा वर्तते। प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना प्रोक्तं यत् अस्मिन् वर्षे भारतस्य अध्यक्षतायां ब्रिक्स इति बहुदेशीय संघः बहुपक्षीयतां सुदृढं कर्तुं, सतत विकासं प्रवर्धयितुं, आर्थिक शक्तिं प्रवर्धयितुं, अधिक समावेशीय विश्वव्यवस्थायाः निर्माणार्थं च मिलित्वा कार्यं करिष्यति। ह्यः नवदिल्ल्यां ब्रिक्स देशानां विदेशमन्त्रिभिः प्रतिनिधिमण्डल प्रमुखैः सह संवादं कुर्वन् श्रीमोदी अवदत् यत् उदयमानानां अर्थव्यवस्थानां मध्ये सहकार्यं प्रवर्तयितुं वैश्विक दक्षिणस्य आकांक्षाणां विकासाय च ब्रिक्स संघः महत्वपूर्ण मञ्चरूपेण उद्भूतः वर्तते। केन्द्र सर्वकारेण उक्तं यत् देशे पर्याप्तं असंस्कृत तैलस्य एलपीजी इति द्रवीकृत अनिल ईंधनस्य प्राकृतिक अनिल ईंधनस्य च उपलब्धतां सुनिश्चेतुं प्रभावी पदानि गृहीतानि सन्ति। ह्यः नवदिल्ल्यां अन्तर्मन्त्रालयस्य वृत्तान्तस्य समये पेट्रोलियम प्राकृतिक अनिल मन्त्रालयस्य संयुक्त सचिव पदासीना सुजाता शर्मा अवदत् यत् देशे सर्वत्र गृहोपयोगी एलपीजी इति द्रवीकृत अनिल ईंधनस्य आपूर्तिः सुचारुरूपेण प्रचलति। नीट इति आगामी राष्ट्रीय पात्रता सहित प्रवेश परीक्षायाः सज्जतायाः समीक्षां कर्तुं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधानस्य निवासस्थाने उच्चस्तरीय सभा आयोजिता। सभायां नीट परीक्षायाः सुचारुतया कुशलतया च संचालनस्य विविध पक्षेषु विस्तृत विमर्शाः कृताः। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः अद्य आंध्रप्रदेशस्य श्री सत्यसाई मण्डलस्य पुट्टपर्ति इत्यत्र अनेक वैमानिक रक्षा परियोजनानां आधारशिला स्थापन कार्यक्रमे भागं ग्रहीष्यति। रक्षामंत्रालयेन उक्तं यत् विमान विकास संस्थायाः विमान समायोजनस्य उड्डयन परीक्षण केन्द्रस्य च शिलान्यासः भविष्यति। विमानस्य एकीकरणस्य परीक्षणस्य प्रमाणीकरणस्य च एषा परियोजना उन्नत मध्यम युद्ध विमान कार्यस्य विकासं त्वरयिष्यति। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान अद्य महाराष्ट्रस्य सतारा इत्यत्र प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनायाः लाभार्थी सम्मेलने एवं महाराष्ट्र आवास अभियान राज्यस्तरीय पुरस्कार वितरण समारोहे च भागं ग्रहीष्यति। उत्तर प्रदेशे विगत 37 होरासु झंझावात चक्रवात विद्युत्पातादिभिः सह अतिवृष्टि कारणात् न्यूनातिन्यूनम् 11,100 जनाः मृताः, 200+ जनाः वृणिताः सन्ति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः जिलाधिकारीं तथा संबंधित अधिकारिणः शीघ्रतया घटनास्थलं गत्वा सर्वेक्षणं कर्तुं निर्देशं दत्तवान्। उधमपुरा मण्डलस्य शिवपार्वती तीर्थे ऐतिहासिकः त्रिदिवसीया शिवपार्वती मेला इति प्रसिद्धा वार्षिक मौंगरी मेला अद्य आरभ्यते। धार्मिकोत्साहस्य उत्सवस्य च भावनायाः मध्ये उधमपुरा मण्डल प्रशासनेन मौंगरी इत्यत्र सर दब्बर क्षेत्रे भव्य ऐतिहासिक मेलायाः सज्जता कृता वर्तते। केन्द्र सर्वकारेण सुवर्णस्य आयातस्य कृते 100 किलोग्राम परिमितस्य सीमायाः निर्धारणं कृतमस्ति। अग्रिम प्राधिकरण योजनायाः अन्तर्गतं आभूषण निर्यातकाः शून्य शुल्केन असंस्कृत वस्तूनां अथवा निवेश सामग्रीणां आयातं कर्तुं शक्नुवन्ति। आईपीएल इति विंशतिं प्रतिविंशतिः क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ मुंबई इंडियंस दलेन पंजाब किंग्स दलं षट्स्तोभकैः पराजितम्। अद्य सायं सार्ध सप्तवादने लखनऊ सुपर जायंट्स दलं लखनऊ नगरे चेन्नई सुपर किंग्स दलं सम्मुखी करिष्यति इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा, सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
3: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टुपर्थी में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। श्री राजनाथ सिंह अनकापल्ली जिले के टी सिरसापल्ली गांव में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की नई अत्याधुनिक नौसेना प्रणाली निर्माण सुविधा की भी आधारशिला रखेंगे। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एडीए समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों में तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई है, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे।

0: एक ही घटनाओं में 111 लोगों की मौत और 200 लोगों के घायल होने की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल जायजा लेने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल में भी हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फूंग गोंगा को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशु को ताउलो और सांडा में दो प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। ताउलो जिम्नास्टिक और मार्शल आर्ट का मिश्रण है। इसमें प्रतियोगियों को उनके मूवमेंट के आधार पर अंक दिए जाते हैं। आईपीएल क्रिकेट में प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा और मुंबई इंडियंस ने कल पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर से बोल रहे हैं। 5 मिनट में ही अब प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत, जिसमें सबसे पहले हम आपको सुनवाने जा रहे हैं टोची पिनसा की आवाज में अपने फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है शाद कामिल ने, तर्ज बनाई है संजय चौधरी ने।

0: में सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: मनोरंजन शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन की क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: आकाशवाणी प्रसारण के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं।
1: आकाशवाणी F90।
3: नमस्कार दोस्तों, मैं वरुण, मैं रायगढ़ का निवासी हूँ।

क्योंकि इसमें खा

0: आकाशवाणी और सभी हृदय बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमें इसी तरह प्रेरित करती रहे, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: चित्रपट संगीत में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आवाज में दिल तो बच्चा है जी फिल्म का ये गीत।

0: वोट करें सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है वेब्स ऐप जिसमें उपलब्ध हैं संगीत गेम एनिमेशन सोप सीरियल कार्यक्रम उपलब्ध हैं आइए मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें
1: अब हम आपको राजेश घोषाल की आवाज में एक गीत जिसे लिखा है कौसर मुनीर बोनी चक्रवर्ती ने

0: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
1: में अब हम आपको सुनवाने जा रहे निखिल डिसूजा, सुखविंदर सिंह, श्रुति हसन, लॉय मेंडोसा की आवाज में डी डे फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा निरंजन अयंगर ने, तर्ज बनाई है शंकर हसन लॉय ने।

0: कार्यक्रम चितपट संगीत में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अलका याग्निक की आवाज में चलते चलते फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा जावेद अख्तर ने, तर्ज बनाई है जतिन ललित ने।
1: साकार करने साल 2023 में माई भारत

0: संगीत अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी से बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी 100.7 मेगाहर्ट्ज पर 35 मिनट हुए हैं। लीजिए सुनिए भेंट वार्ता। विषय है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर विशेष भेंट वार्ता, संस्कार प्रेम और सुरक्षा की पाठशाला परिवार। वार्ता कर रहे हैं जमुना प्रसाद चौहान कवि, भेंट करता है रामविलास पटेल।
1: जय जोहार संगवारी हो, आज हवे अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस काबर मनाया जाते, काबर जरूरी हवे परिवार ला एकजुट होना, परिवार के महत्ता का हो सकत है, यही सब उद्देश्य ले लेके मनाया जाते। यानी कि जन जागरूकता, परिवार के महत्व ला समाज में बताना, बुजुर्ग मन के सम्मान करना, ऐसे बहुत सारा विषय हवे जिला समाज में बताना, एकर उद्देश्य हवे आज के दिवस के। ऐसने में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के अवसर में हमारे बीच में उपस्थित हैं जमुना प्रसाद चौहान जी। ये मन हावे कवि हावे और छत्तीसगढ़ी भाखा में अपन के रचना करते हैं, और ये मन के रचना के एक पुस्तक भी प्रकाशित हुई से छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के डहल ले। तो ऐसे सदस्य हमारे बीच में उपस्थित हैं जमुना प्रसाद चौहान जी, सबले पहले स्वागत है आप मन के हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार, जय जोहार।
2: धन्यवाद पटेल साहब, आप मन मला स्टूडियो में आमंत्रित करा राष्ट्रीय परिवार दिवस के उपलक्ष्य में। तो ये तो बात है सार्थक होगी इसकी, मैं एक परिवार ले आए हूँ और वो परिवार के बारे में मला बोले के सौभाग्य प्राप्त हो थे।
1: हाँ हाँ,
2: तो एक परिवार ले आके एक परिवार भर में बोला था, तो मैं अपन आप धन्य समझा।
1: तो जमुना प्रसाद चौहान जी, हमन जानना चाहबो कि आज के दौर में समय में हमन देखा था कि परिवार बिखराव की ओर बढ़त है, एकर बारे में क्या कहना चाहता?
2: बिखराव और टकराव एकर बर होते सर। अभी तो हमारे एक तो पाश्चात्य सभ्यता की होड़ लग गई से, माने आजकल टेलीविजन मोबाइल वगैरह वगैरह में जो देखा थे तो सही चीज ला नहीं पकड़ के आदमी मन गलत चीज के प्रति रुझान मुकरमन में पैदा कर दा रहे थे, और वो पीढ़ी हर हमन के गलत दिशा में चल रहे थे। अच्छा। इसके खातिर परिवार में आज बिखराव की स्थिति उत्पन्न हो जाते मोर विचार से।
1: अच्छा अच्छा, तो परिवार हमन एकजुट कैसे कर सकते हैं? परिवार के अवधारणा जो हावे कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ते, एक एक ईट ला जोड़ के हमन घर बनाथन, वैसे एक एक सदस्य ला लेके हमन एक परिवार बनाथन, तो ऐसने में परिवार ला हमन कैसे एक जुट कर सकत हन और उमल सही राह दिखा सकत हन?
2: हमन में थोड़ा सा नैतिकता के पतन हो जात है, ओला हमन ला सुधार करना पड़ी, हमारा आने वाला पीढ़ी ला हमन ला ये बताना पड़ी। हाँ, कि एक जमाना में जब शुरू हमन दुनिया में आए तो एक संयुक्त परिवार में हमन सब रहत रहे।
1: हाँ,
2: वहाँ छोटे बच्चा ले लेके बूढ़ा है, हमार महिला है, माँ बहनी काका बाबा मामा फूफा सब मना है, उमन के हमन सम्मान करन।
1: हाँ,
2: उमन के आदेश ले सिरोधार्य करन, काबर उमन अपन जीवन के लंबा समय ला परिवार में बिता के ऊंच नीच ला समझ जाए रहे, और हमारे मन बता जाए तो वाला अनुसरण करन। और अभी के लड़का मन थोड़ा सा वो चीज ले हट के विपरीत आचरण करत है ना, वो हर हमारे समाज पर अच्छा नहीं होते, ओला सुधारे की आवश्यकता है।
1: अच्छा, तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस से इला मनाए के दरकार काबर पड़े से एकर शुरुआत कब हुई?
2: एकर शुरुआत हुई अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के 1994 ले।
1: अच्छा अच्छा,
2: इन्हें आवश्यकता एकर बर पड़ी कि हमारे सेना मन दूरदर्शी रहीन, उमन जीवन के हर पहलू ला जी रहीन, तो मतलब रहीस कि न परिवार है इसमें टूटे, झन बिखरे, झन बगरे, एकजुट होके रहे, जिसे कि छोटे छोटे रेसाले एक ठो रस्सी बन जाते।

0: हाँ
1: ओ में कड़को बरकस जानवर लगा बांध दे ले और वहां ले हिले नहीं तो उसने आज बच्चा बूढ़ा सियान सब मन के मेल हो गए थे परिवार चलही तो जीवन है सुघर जिए के थे हमारा माहौल मिली।
0: हाँ
1: ये सब ला देखते हुए आने वाला समय है और बढ़िया रहे परिवार एकत्रित हो और सुलभ जीवन यापन करे के साधन में लिप्त होते हुए वंश ला बढ़ाते हुए और सृष्टि के संरचना जो हो तेला सिरोधार करते हुए चले ले परिवार बढ़िया रतीस और अच्छा करे की चाह हमें ये 1994 अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस ला मनाए के चालू किए गए।
0: हाँ संयुक्त राष्ट्र संघ के दिशा निर्देशा अनुसार जो है 1993 में प्रस्ताव आ रही से और 1994 में पहली बार ये दिवस ला मनाए के शुरू हुई और आज हम ये ला मनात हन तीकर महत्व का हावी परिवार के कैसे परिवार हम ला एक दूसरे ला जोड़ के रखते।
1: मोरे विचार से मैं कहना चाहिए हूँ आप मल्ला सुनिए हमारे साथी मन भी बताना चाहिए कि परिवार में सबके योगदान है जिसने रथे।
0: हाँ
1: ओला बरोबर सब ला सम्मान दे ले बच्चा ला ओकर विचार के अनुरूप शिक्षा दीक्षा दे के परिवार के संस्कृति सभ्यता जैसे कि हमन तीज त्योहार मनाथन।
0: हाँ हाँ
1: वो बहाना से हमन परिवार मन एक जगह में।
0: हाँ हरेली है तीजा पोरा और एक नावा खाई के
1: त्योहार होते
0: है ना
1: तो में एक तो संस्कार होते सर।
0: हाँ
1: कि नावा खाई के त्योहार में हमन जुड़थन।
0: हाँ
1: तो जुड़ मिल के पूजा पष्टा करथन पूजा पष्टा करे के बाद हमन बड़े बुजुर्ग मन के पाँव ल छू के आशीर्वाद लेथन।
0: हाँ
1: यार खाली पाँव ल छू के आशीर्वाद ले के प्रक्रिया नहीं हो।
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: टेढ़ा पाटी बागीर जो न झुकते ते एक भर भर बाल्टी पानी ले लेके आते ऊपर।
0: हाँ
1: तो बुजुर्ग के पैर में झुके ले उमन के द्वारा जो आशीर्वाद मिलते और हमारे जीवन ला सार्थक बना।
0: बिल्कुल सही
1: तो
0: कहा।
1: इस त्योहार में एक तो बहाना है।
0: हाँ हाँ
1: कि हमने एक जगह में जुड़ी और एक दूसरे के सम्मान और सद्भावना भावना ला देखते हुए हमन अपन आप लोग में ढाले के प्रयास करी।
0: बिल्कुल सही का एकर से लोग लैका मन भी सीखते हैं और वही अनुसार ले अपन के आगु के कदम ला बढ़ाते। तो आप मन के पुस्तक जो है प्रकाशित हुई से छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के डहाले छत्तीसगढ़ी कविता मन के संग्रह तो का आप मन के ऐसे कुछ रचना हावे जो घर परिवार से जुड़े हावे।
1: हाँ मोर छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग ले मोर मैया के खोंधरा नाम के ठो कविता संग्रह प्रकाशित हुई।
0: हाँ हाँ
1: और मैं 70-75 ठी लगभग कविता है कहा
0: जी।
1: तो मैं हर तीज त्योहार हमार छत्तीसगढ़ के संस्कृति हमार मनुष्य मन के हमार जो न एक ठो प्रचलन चाल चलन व्यवहार हर चीज लो में उकरे प्रयास करे हूँ
0: जी
1: और हर पहलू में मैं कविता लिखे हूँ।
0: हाँ
1: तो बीवी ही कविता है समझा मान।
0: अच्छा अच्छा अच्छा तो परिवार लेके का कहना है का रचना है आप मन
1: मोर परिवार लेके रचना है बहुत पहले ले मैं रचना करत आज हूँ कहा।
0: हाँ हाँ
1: तो ओकर बर आनी बानी के मैं लिखत जात रह हूँ।
0: हाँ हाँ
1: परिवार है मातृत्व दिवस है।
0: हाँ हाँ
1: और बालिका दिवस है अपन बेटी मन बर है।
0: हाँ
1: वो सब ला मैं लिखे के प्रयास करत रह हूँ।
0: हाँ
1: कोई तारतम्य में अहुले लिखे हूँ हमारे परिवार ला देखते हुए।
0: हाँ हाँ
1: तो एक कविता मोर कर रहे कहा।
0: बिल्कुल हम सुनना चाहबो।
1: तो ला परिवार दिवस के ये उपलक्ष्य में आज ये मोर स्वरचित जो कविता है जो छत्तीसगढ़ शासन प्रकाशित भी करे है ओकर कुछ लाइन आप मतलब मैं सुनात हूँ।
0: बिल्कुल स्वागत है।
1: मोर घर परिवार दुनिया ला करे है अंजोर मोर घर परिवार

0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रचना जमुना प्रसाद चौहान जी, और छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के डाले आप मन के रचना ला भी प्रकाशित किया गया से, यार भी बहुत बढ़िया बात है कि घर परिवार और समाज ले ही देश के विकास होते हैं, और समाज के विकास मतलब देश के विकास
1: जी।
0: और आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के अवसर में आवा, और आखिर में आप मन से हम जानना चाहबो का कहना चाहिए रेडियो सुनने वाला श्रोता संगवारी मन ला।
1: रेडियो सुनने वाला श्रोता संगवारी मुराने वाला पीढ़ी मन ला भी मैं संदेश देना चाहता हूँ कि घर परिवार, संयुक्त परिवार, आदर्श परिवार, आज एकल परिवार की होड़ में जो हम दौड़ लगा थन वो हर हमार पिछड़ेपन के एक ठो कारण है। हमन के वहर ये कहना चाहिए कि हमन ला आगू जो जाए के रास्ता सुलभ हो ही हमन एक ठो संयुक्त परिवार में रहो, एक दूसरे ला अनुसरण करबो, बड़े बुजुर्ग मन के कहना ला मानबो, ओमन के जिंदगी जो जिए हैं ते मन के हमन जो शिक्षा लेबो वहां ले तो हमार परिवार हर बढ़िया चलही, और हमन ला पाश्चात्य सभ्यता को और नहीं जाके हमार संस्कृति सम्मान लही बनाए रखे बर प्रयास करना चाहिए।
0: तो जमुना प्रसाद चौहान जी कवि रही हमारे बीच में, और आप मन हमारे स्टूडियो में आवा, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के अवसर में अपन के विचार ला साझा करा, एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय जोहार।
1: जय जोहार, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, वार्ता करते जमुना प्रसाद चौहान कवि, भेंट करता थे रामविलास पटेल, ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। लीजिए अब सुनिए गांधी चर्चा।

0: गांधी चर्चा में आज सुनिए लिखे गए महात्मा गांधी के लेख का वाचन।
1: इसलिए इसे हम अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। यदि हम

と感じる。खाना छूटे तो छूटे, लेकिन खाना छूट लेकिन जो आलस्य करता है, ध्यान नहीं करता, उसके कि उसने और समाज को धोखा दिया, अब सत्य का आचरण करना अर्थात सत्य आलस्य आए तो क्या करना चाहिए, ऐसी कोई चीज है ही नहीं। यदि हम बिस्तर से उठकर सीधे प्रार्थना में जाएं, तब तो प्रार्थना जागृत होना चाहिए, दाताओं करनी चाहिए।

श्वासोच्छ्वास करना चाहिए और यदि तो जो श्लोक अथवा भजन हो उन्हें तो खड़े हो जाना चाहिए, बड़े अथवा छोटे किसी को

हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर 7:55 हुए हैं। आइए अब आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम के बारे में। कार्यक्रम इनसे मिलिए का अनुप्रसारण रायपुर केंद्र से किया जाएगा 8:30 पर। अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा सुबह 9:00 से। सुगम संगीत का समय होगा 10:10 पर। फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश हम आपके लिए लेकर आएंगे 10:30 पर। विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण किया जाएगा दिल्ली केंद्र से सुबह 11:00 से।

प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट का प्रसारण होगा शाम 5 बजे। भजन संध्या का समय रहेगा 5:10 पर। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा 5:30 पर। फोन कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए का समय रहेगा शाम 6:20 पर। लीजिए फिर सुनिए का शेष भाग आप सुन सकेंगे शाम 7 बजे।

के लिए लेकर आएंगे। रात 8:20 पर फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 8:30 पर। विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण दिल्ली के अंदर से किया जाएगा रात 9 बजे से। संगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे रात 10 बजे। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम रजनीगंधा का समय होगा 10:30 पर। ये तौर पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम।

हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 107.7 मेगाहर्ट्ज पर 8 बजने को है। थोड़ी ही देर में समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
1: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। यूएई के सोवरेन वेल्थ फंड्स भारत के सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्टिवली निवेश कर रहे हैं। साथ ही भारत का शांडी एक्ट न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल रहा है। क्रूड ऑयल से एलएनजी तक, परंपरागत ऊर्जा से स्वच्छ ऊर्जा तक, इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व पर बल दिया है।
2: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का

0: 97.77 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 106.68 रुपए और डीजल 93.14 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा। कोलकाता में पेट्रोल 108.74 रुपए और डीजल 95.13 रुपए प्रति लीटर पर उपलब्ध होगा। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 103.77 रुपए और डीजल का मूल्य 95.35 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। एक रिपोर्ट।
1: ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, ताकि उसकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि दोबारा बिना शुल्क के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप और धनशोधन मामले में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में कल शांतनु से 10 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। शांतनु सिन्हा को आज अदालत में पेश किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने कालीघाट पुलिस स्टेशन के पूर्व प्रभारी शांतनु को सोना पप्पू उर्फ विश्वजीत पोद्दार द्वारा चलाए जा रहे कथित आपराधिक गिरोह से जुड़े धनशोधन मामले में कई बार पूछताछ के लिए तलब किया था। सूत्रों के अनुसार ईडी को शांतनु बिस्वास से जुड़े कुछ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन मिले हैं, जिनमें सोना पप्पू और उनके करीबी सहयोगी भी शामिल हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एडीए समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई है, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सीबीआई ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह के विरुद्ध विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एलआईसी द्वारा हजारों करोड़ रुपए के कथित धोखाधड़ी के 7 मामले दर्ज किए गए हैं। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केरलम में सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। सोमवार को नए यूडीएफ मंत्रालय का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस बीच नए मंत्रालय के सदस्यों को लेकर चर्चा जारी है। ब्यूरो हमारे संवाददाता से।
6: वीडी सतीश

0: सोमवार को केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यूडीएफ सूत्रों ने तिरुवनंतपुरम में बताया कि मुख्यमंत्री के साथ पूरी मंत्री परिषद भी शपथ लेगी। वहीं नए मंत्रियों और उनके विभागों को लेकर यूडीएफ के घटक दलों के बीच गहन चर्चा जारी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला 4 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद तिरुवनंतपुरम और नई दिल्ली में 10 दिन तक चली लगातार बैठकों और विचार विमर्श के बाद लिया गया। कांग्रेस और यूडीएफ के अन्य सहयोगी दल कल तक नई मंत्री परिषद को अंतिम रूप देने की कोशिश में जुटे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एस पुल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: केरलम के शबरीमला मंदिर में कल शाम से मासिक पूजा एडवम शुरू हो गई है। मंदिर में दर्शन सुबह 5 बजे से किए जा सकते हैं। श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध है। उधमपुर जिले के शिव पार्वती मंदिर में आयोजित होने वाला ऐतिहासिक 3 दिवसीय वार्षिक मुंगरी मेला आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसे शिव पार्वती मेले के नाम से भी जाना जाता है।
2: मेले में मोंगरी, पंचैरी, उधमपुर और जम्मू कश्मीर के अन्य क्षेत्रों तथा बाहर से भी भारी संख्या में लोग सरदब्बड़ आते हैं। वह यहाँ कुदरती गुफाओं में विराजमान भगवान शिव, देवी पार्वती और अन्य देवी देवताओं को नमन करते हैं। इन गुफाओं में प्राकृतिक रूप से बना 9.5 फीट का शिवलिंग है। युवा सेवा और खेल विभाग के सहयोग से कबड्डी, रस्साकशी, पत्थर उठाना और अन्य मनोरंजक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं एन गुलशन रन।
1: महाराष्ट्र के सतारा में आज प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों और महा आवास अभियान के राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान लाभार्थियों के लिए निर्मित 5 लाख घरों का आवंटन किया जाएगा। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में आयोजित समारोह के हिस्से के रूप में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित आकाशवाणी केंद्र द्वारा एक वॉकथन का आयोजन किया गया। ये आयोजन आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के सफर को यादगार बनाने के लिए किया जा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना 8 जून 1936 में हुई थी। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर कल रात नामची जिला पहुंचे। आज वे प्रस्तावित नामची पर्यटन सर्किट पीएम डिवाइन के तहत भालिंडुगा में स्काई वॉक परियोजना और गंगटोक के आर्किडियम जैसी कई पर्यटन स्थलों और विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने केरलम में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। राज्य के तटवर्ती इलाकों में आज 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। खेलों में भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुआंग गांगू को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशु को ताउलू और सांडा में 2 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
3: भारत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सवाल उठाए जाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति में मंत्री क्यों, तटस्थ हो तीसरा सदस्य। जनसत्ता के शब्द हैं ये, बहुमत की तानाशाही, चयन समिति में निष्पक्ष व्यक्ति क्यों नहीं। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया। अब दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में भी एसआईआर, दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है। दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए। सरकारी दफ्तरों का समय बदला, 2 दिन घर से काम, हिन्दुस्तान सहित सभी अखबारों की खबर है। नव भारत टाइम्स ने सीयूईटी यूजी में सुधार लाने पर लेख प्रकाशित किया है। अपने संपादकीय पन्ने पर पत्र लिखता है, एग्जाम पैटर्न में लगातार बदलाव और दूर सेंटर होने की वजह से परेशानी में स्टूडेंट्स, एनटीए का बोझ हट बांटा जाए। वहीं राजस्थान पत्रिका ने आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर एक शोध प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, समय बदला, दूरियां बढ़ी, लेकिन परिवार अब भी सबसे मजबूत सहारा। 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने की थी इस दिवस की शुरुआत।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to embark on a 6-day visit to UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy today. Prime Minister says BRICS under India's chairmanship will work together to build a more inclusive world order. Oil marketing companies hike petrol and diesel prices by 3 rupees per litre. Government caps duty-free gold imports at 100 kg under advance authorization scheme. ED arrests Kolkata Police DCP Shantanu Sinha Biswas for running an extortion syndicate. And in Wushu, Aparna Dahiya clinches gold medal in women's 52 kg category in Sandha World Cup in Macau. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will embark on a 6-day visit to UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy today. On the first leg of his 5-nation visit, Mr. Modi will reach UAE today, where he will meet President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest. They will also discuss ways to advance the bilateral comprehensive strategic partnership, underpinned by strong political, cultural, economic and people-to-people links. Energy security is expected to remain a central theme of the engagement. Briefing media prior to the visit, Additional Secretary West in the Ministry of External Affairs, Asim Mahajan, said, energy remains a key pillar of the relationship. He noted that the UAE was India's fourth largest source of crude oil last year, meeting around 11% of India's requirement. According to him, India is now the largest buyer of LNG from the UAE. The UAE also supplies nearly 40% of India's liquefied petroleum gas imports and remains a significant destination for Indian petroleum exports. Our correspondent has filed this report.
5: India and the UAE have moved far beyond the traditional crude oil trade that once defined their energy relationship. The UAE remains a key oil supplier to India, but the partnership has now expanded into natural gas, renewable energy and civil nuclear cooperation. Earlier this year, Hindustan Petroleum signed a 10-year deal with Abu Dhabi National Oil Company for 500,000 tons of LNG annually beginning 2028, giving India greater price stability by reducing its reliance on spot markets. Renewable energy and civil nuclear cooperation are also gaining ground. UAE saw wealth funds are actively investing in India's solar infrastructure, while India's Shanti Act, which opens the nuclear sector to private players, has created fresh scope for collaboration in reactors, including small modular reactors. Both sides are pushing to settle energy transactions in rupees and dirhams, reducing dollar dependencies in bilateral trade. From oil to LNG, clean energy to nuclear, the India-UAE energy partnership is being redrawn for a decarbonizing world. Vinod Kumar for Akashwani News from Abu Dhabi.
4: On the occasion of the Prime Minister's 8th visit to the Emirates, Indian Ambassador to the UAE, Deepak Mittal, said the visit of the Prime Minister is highly opportune.
6: UAE has emerged as a very close third largest trade partner for India. Our bilateral trade has crossed $100 billion after we have signed Comprehensive Economic Partnership Agreement in 2022. The visit of the Prime Minister is very opportune, happening at a time when the region is going through some unprecedented times. The Prime Minister has been in touch with the UAE leadership. So this is a moment when it will help and enable to express our solidarity.
4: Meanwhile, UAE's Minister of State for International Cooperation, Reem Bint Ibrahim Al-Hashmi, has said the government is looking forward to the occasion with great excitement. She said that Mr. Modi is a key figure of friendship, of long-standing partnership and a true treasure to the leadership and to the people of the UAE. Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience and build a more inclusive world order. Interacting with foreign ministers and heads of delegation of BRICS countries who called on Mr. Modi in New Delhi, the Prime Minister said BRICS has emerged as an important platform for advancing cooperation among emerging economies and giving voice to the aspirations of the Global South. Earlier in his opening remarks at the BRICS Foreign Ministers meeting, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that peace and security remain central to the global order.
7: There is a growing expectation, particularly from emerging markets and developing countries, that BRICS will play a constructive and stabilizing role. In this background, our discussions are an opportunity to reflect on global and regional developments and to consider practical ways to strengthen

0: दीपक हटवार का नमस्कार। श्रोताओं, प्रगति की बुनियादी है और शिक्षा की बात करते हैं तो हमारे देश के अनेक राज्य शिक्षा के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ चुके हैं। जहां तक साक्षरता और शिक्षा की बात है, शिक्षा के क्षेत्र ने विगत कुछ वर्षों में देश के अन्य राज्यों की तरह अपना एक स्थान बनाया है। तो हमारे प्रदेश का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा साक्षरता और शिक्षा की दृष्टि से काफी पीछे चल रहा था, लेकिन विभिन्न प्रयासों के साथ इस रेस में हम भी काफी आगे बढ़ चुके हैं। तो हमारे साक्षरता और शिक्षा की क्या स्थिति है और इस क्षेत्र में किए जा रहे काफी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमने किया है अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक राज्य शिक्षा एवं साक्षरता फोरम छत्तीसगढ़ श्री प्रशांत पांडे। ये जानना चाहेंगे कि आप और प्रारंभिक शिक्षा कहाँ की रही है।
1: जी, जो कि शासकीय से तो उनका वहां हम रहे। जैसे पहले प्रारंभिक शिक्षा हमारी बस्तर में हुई, रायपुर जिले में हुई, फिर तो अब अलग जिला बन गया। पहले वो विभाजित दुर्ग जिला हुआ करता था, वहां पर प्रारंभिक शिक्षा हुई।
0: उसके बाद शिक्षा आपकी कहाँ की रही?
1: शुरुआत वो रायपुर के उच्च शिक्षा हुई।
0: शिक्षा पूर्ण हुई तब क्या होगा कि किस क्षेत्र में जाया जाए?
1: अध्ययनरत था उस समय, प्रोग्राम चलता था प्रौढ़ सतत शिक्षा एवं विस्तार कार्यक्रम, उसमें साक्षरों को साक्षर करने के लिए पढ़ाई किए जाते थे। जब ये बनाया गया था उस समय वहां उन्होंने मुझे मेरी राष्ट्रीय सेवा योजना एनसीसी इत्यादि की रुचि को देखते हुए तो आप ये करें, तो मुझे लगा कि एक बहुत अच्छा साक्षर करना है अपने, तो ये सबसे पहले सौंपा गया था। ये 1986 की बात है लगभग, तो पहले जबकि तो बहुत है, तो ऐसे साक्षर की दिशा में कार्य करना चाहिए।
0: प्रशांत में की तो ये कितने बरस पहले की बात होगी?
1: ये 35 क्योंकि के दरमियान कॉलेज में ही था और उस समय किया और उसी जब अपनी पढ़ाई मेरी समाप्त उसी अभी मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल से चलकर ये अभियान हमारे अविभाजित दुर्ग जिले तक पहुंचा और पहले राज्य स्तर पर अधिक राज्य स्तर और
0: प्रशांत जी

0: स्थिति उस समय कैसी थी, फिर
1: साक्षर उस समय थे जब राज्य बना था 25 वर्ष पहले, अब तो 26वें वर्ष में हम प्रवेश कर लिए हैं। और आज स्थिति हमारे अब हम यदि तो हम लोग एक हमारी बनी ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि हम 47 के पहले तक हम 100% लिटरेसी को प्राप्त कर ले तो उसका प्राप्त कर सकते हैं।
0: तो करें तो छत्तीसगढ़ को आप कहां पाते हैं?
1: साक्षर छत्तीसगढ़ अभी का जो पैदा वो काफी नीचे, 10 से नीचे अभी आ गया है वो।
0: यहां पर साक्षरता अभियान चलाया तो उसके बाद ये रहे तो उसमें चलाने की जरूरत है अभियान को
1: ऐसे है, इसमें कुछ फैक्टर देखिए हमारी जो प्राथमिक शिक्षा जो बच्चे स्कूल आते हैं उन शाला त्यागी हो जाते हैं, अपने घर में खेत में या परिवार आने वाला नहीं होता, वो जानवर गाय भैंस चराने के लिए इसलिए जाता है, बहुत बावजूद भी वो हो जाता है और वो जाके आगे जाता है और वो टारगेट और वो भले लेकिन फिर से वो असाक्षर हो जाता है। तो निश्चित सबसे पहले कि हम एक तरह इसमें यदि हम नल चालू कर दें और पानी और हम इस कमरे से पानी को खाली करने के लिए हम एक बर्तन से पानी निकालते जा रहे हैं और जा रहे हैं, हमको यदि इसको हमें मेरी मान्यता है कि साक्षरता अभियान तो चलना ही नहीं चाहिए। यानी फिर हम पूरी पूरे साक्षरों को साक्षर कर दें, हमारा जो एडमिशन सबसे पहले तो 100 एडमिट और हम यदि उनको स्कूल का वातावरण हम ऐसा बनाएं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी कहती कि इस तरह लोगों को पाए रोचक तरीके से कि वो लोग और किसी कोई भी परिस्थितियां हो हम उनको इस तरह सपोर्ट किया जाए तो ये टारगेट पहुंच
0: बहुत बड़ा पक्ष है कि बच्चे स्कूल में आए, लेकिन कई होती है कि उसकी वजह से बहुत से परिवार वाले जो हैं अपने पूरी लिखने की स्थिति में नहीं होते हैं या फिर कई बार ड्रॉप करना पड़ता है उनको, तो आप क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए आपने देखा होगा कि आजकल लोग सबसे अपने फायदे के बारे में गलत बारे में सोचे, लेकिन दूसरों के फायदे के बारे में सोचेंगे तो निश्चित रूप से ऊपर सोचेगा, ये नहीं हो जाए तो हमको मतलब उच्च शिक्षा हमारे जो वार्ड तक के घर तक के है वहां पर हमको ऐसे सेवाभावी व्यक्तियों का चयन करना पड़ेगा नंबर एक, और उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, उनके साथ साथ जितने नेतृत्वकारी लोग हैं उनको विश्वास में लेना पड़ेगा, उनको इस अभियान की जिम्मेदारी देनी होगी कि आपको अपने क्षेत्र को अपूर्ण रूप से शिक्षित करना है, साक्षर करना है, 100% बच्चे स्कूल जाएं, 100% बच्चे बाहर बिल्कुल ना जा पाएं, यदि कोई बाहर जाता है उनके लिए उचित शिक्षकों की व्यवस्था हो, शिक्षक न केवल शिक्षकों की व्यवस्था है बल्कि वो पूरी दक्षता से पूरी क्षमता से उनको परिणाममूलक तरीके से पढ़ाएं, अध्ययन अध्यापन करें जिनका उनका मन लगे और रिजल्ट भी अच्छा है, परिणाम भी अच्छा है। और कोई भी यदि स्थितियां ऐसी निर्मित होती, कोई परेशानी आती है तो वो परेशानियों को दूर करें। और सामाजिक लोगों को भी आप विश्वास में लो जो समाज में बैठे हुए हैं, जो केवल अभी अन्य कार्यों में, यदि खाली दिमाग शैतान का होता है, उनको अच्छे कामों में आदमी व्यस्त कर लेंगे ना तो आपको दुर्घटना भी नहीं होंगी और उनका भी मन लगेगा। जो वातावरण बनाए जाने की जरूरत है और इसके लिए इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। यदि अच्छी इच्छा शक्ति आपकी होगी तो हम बहुत बेहतर परिणाम दे सकते हैं। और आपको बताना चाहूँगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो आया है अभी, जो मुझे नई जिम्मेदारी मिली है वो इसीलिए मिली है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बाल्यकाल से लेकर उच्चतर शिक्षा के लिए जो नीति बनाई गई है, उन नीति का बेहतर तरीके से कैसे क्रियान्वयन हो, ये बहुत जरूरी।
0: श्रोताओं, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े श्री प्रशांत कुमार पांडे, और इनसे हम विस्तार से आगे और बातचीत करेंगे। तो उससे पहले प्रशांत जी, इस बातचीत को थोड़ा सा हम मनोरंजन की ओर मोड़ना चाहेंगे और आपकी पसंद का कोई फिल्मी गीत हमारे श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे।
1: वाह वाह वाह, फिल्म और ये सब तो नहीं बता पाऊंगा लेकिन गाने के बोल जरूर
0: बिल्कुल बताएं।
1: जब कोई बात बिगड़ जाए,
0: बिल्कुल
1: मुश्किल गीत है, हाँ मुश्किल पड़ जाए।
0: हाँ, तो सुनते हैं आपकी पसंद पर फिल्म जुर्म का ये गीत।

0: क्या बात है प्रशांत जी, बहुत अच्छा गीत आपने सुनाया। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, और मुश्किल की घड़ी तब होती है जब इंसान के जीवन में अशिक्षा का अंधकार होता है, और आप उसी अंधकार को दूर करने के लिए चल पड़े हैं। प्रशांत जी, हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर आपको जो एक जिम्मेदारी सौंपी गई है शिक्षा के क्षेत्र में, उसके बारे में बताएं।
1: देखिए, मैंने पहले महाविद्यालय में 1990 तक और उसके बाद 1990 से 2003 तक जिले में, 2003 से 2025 तक राज्य में काम किया, और इस दौरान अलग अलग क्षेत्रों में जब मैं गया तो मेरा जुड़ाव राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हुआ तो ये महसूस किया गया कि अब पूरे प्रदेश में कुछ नया किया जाए, और संभवतः जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के लोग हैं उन्होंने महसूस किया कि छत्तीसगढ़ में एक ऐसे व्यक्ति की उनको तलाश थी कि जो व्यक्ति लंबे समय से जुड़ा हुआ हो, जिसमें कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो, और जो परिणाम मूलक कार्य करता हो, यानी परिणाम दे सकता हो। उनको जब ये पता चला कि 25 जो साल हुए हैं और 25 साल में हमको 25 राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं, उसमें से हम जिस विभाग में कार्य किया है उसमें दो और बाकी जिलों को मिले हैं, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा ये दायित्व होगा। उनके पीछे उद्देश्य ये है, इस जो स्वायत्त शासी जो संस्थान है उसका उद्देश्य ये है कि हम इस कार्य के लिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी जो लागू है उसका कैसे बेहतर तरीके से हम क्रियान्वयन कर सकें, इसमें हम माननीय जनप्रतिनिधियों को कैसे कन्विंस कर सकें, हम इसमें सामाजिक क्षेत्र के लोगों को कैसे जोड़ सकें, हम इसमें जो अभी वर्तमान में सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सारे मीडिया का कैसे हम समावेश इसमें कर सकें, और सबसे बड़ी बात है शिक्षा गुणवत्ता पर इसमें फोकस किया गया है। शिक्षा गुणवत्ता भी यदि हम बोलेंगे तो टॉप टू बॉटम, और उसमें ऐसी शिक्षा नहीं जो केवल हमें नौकरी तक पहुंचाती हो, बल्कि ऐसी शिक्षा जो एक बेहतर इंसान बनाती हो। इसमें मूल रूप से भारतीय ज्ञान परंपरा को विशेष रूप से हमें जोड़ा जाना होगा, क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा के बिना कोई भी यदि शिक्षा दी जाए वह अधूरी है। उसको जब तक हम नहीं डालेंगे तब तक के ये हम उसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये सारी चीज़ें इसमें डालनी होंगी। नैतिकता की बातें तो छूटी गई हैं आजकल, और जो गंभीर उसके दुष्परिणाम निकल रहे हैं उसको भी इसमें शामिल करना होगा। तो शिक्षा गुणवत्ता मेन है। शिक्षा गुणवत्ता तभी हो सकती है जब बालक, पालक, शिक्षक, ये तीनों मिलकर शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान दें। हम क्या करते हैं, हम बच्चों के स्कूल में डाल देते हैं और उनको शिक्षक के भरोसे छोड़ सकते हैं, शिक्षक पालक के भरोसे रहते हैं, वो तो पढ़ के आ गई, वो किसी अन्य कार्य में बिजी रहते थे। ये देखना होगा कि वो शिक्षकों को शिक्षकीय कार्य में ही रखा जाए, ये प्रयास होना चाहिए, और घर में भी शिक्षा के लिए वातावरण हो, माता पिता हों, बाप भाई हों, और जो उसके सारे जो रिश्तेदार हैं वो घर पर भी उसको एक वातावरण हो, ये हम प्रयास करेंगे। और दूसरा उसकी पेरेंटिंग अच्छी हो, गुड पेरेंटिंग भी एक सब्जेक्ट होगा इसमें कि कैसे पेरेंटिंग हो बचपन से लेकर उसको, और उसको उस पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए उसको पढ़ाई के लिए। सबसे बड़ा दबाव जो बहुत सारी घटनाएं घटती हैं कि अभी रिजल्ट का दौर चल रहा है, और रिजल्ट में आपने देखा होगा हम अपने बच्चों पर दबाव डालते हैं कि इतने परसेंट लाना, इतने परसेंट लाना। अब बहुत सारे लोगों का उदाहरण देखिए, देश में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सफल हुए हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा अंक पाए हों, गढ़ना जरूरी है। और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर ध्यान देंगे, जब तक प्रशिक्षण में ध्यान नहीं देंगे तब तक कक्षा का वातावरण नहीं बदल सकता।
0: प्रशांत जी, आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है हमारे पूरे प्रदेश के लिए, अगर हम आपकी इस जिम्मेदारी के साथ में हमारे प्रदेश में शासन की ओर से स्कूल स्तर की शिक्षा की अभी जो व्यवस्था है उसको अगर देखा जाए तो उसमें उसको सुधार करने के लिए आपकी उपस्थिति कितनी महत्वपूर्ण है?
1: देखिए, हम तो अभी पूरे प्रदेश में संभागीय स्तर पर, जिला स्तर पर, आपके ब्लॉक स्तर पर, ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर हम अपनी इकाई का गठन करेंगे। उसमें हमको ये स्वायत्तता दी गई है सेंट्रल के द्वारा, केंद्र के द्वारा, कि हम इसमें शासकीय और अशासकीय दोनों लोगों को इसमें शामिल कर सकें, और इनको जब हम जोड़ लेंगे, एक हमारी कमेटी गठित हो जाएगी, तो फिर हम माननीय जनप्रतिनिधियों के लिए, पंचायती राज प्रतिनिधियों के लिए जिसमें नगरीय निकाय भी, नगरीय निकाय के जो प्रतिनिधि हैं उनको, और जो हमारे सामाजिक क्षेत्र के लोग हैं ऐसे लोगों को प्रशिक्षित करेंगे, और फिर टॉप टू बॉटम हमारे जो ऑफिशियल्स हैं उनको प्रशिक्षित करेंगे, फिर हम गांव-गांव में स्वयंसेवी व्यक्ति तैयार करेंगे। वो स्वयंसेवी व्यक्ति जो है वो न केवल बच्चों की शिक्षा से लेकर बड़ों की शिक्षा तक ध्यान देगा। यही न केवल ये प्रक्रिया हमारे स्कूली शिक्षा में होगी बल्कि यह प्रक्रिया हमारे उच्च शिक्षा के लिए भी रहेगी। तो बहुत व्यापक क्षेत्र है। पहले तो हमने केवल शिक्षा नीति के चैप्टर नंबर 21 जो प्रौढ़ शिक्षा थे उस पर काम किया था, और ये जो दायित्व बहुत बड़ा दायित्व है, इसमें हमको बच्चों की शिक्षा से, बाल्यावस्था की शिक्षा से, आंगनबाड़ी और बालवाड़ी और बालवाटिका आपने सुना होगा, वहाँ से इनकी शिक्षा से लेकर हायर एजुकेशन तक की शिक्षा पर हमको काम करना होगा। और केंद्र और राज्य के सारे लोग हम रिसर्च भी करेंगे, सर्वे भी करेंगे और रिपोर्ट सेंट्रल को और स्टेट को देंगे और उसके साथ सबके साथ समन्वय के साथ काम करेंगे।
0: हमने यह सुना है कि आपने विदेश की भी यात्राएं की हैं। विदेश की यात्राओं में क्या शिक्षा ही आपकी यात्रा का उद्देश्य रहा है, या विदेश की शिक्षा और भारत की शिक्षा को आपने नज़दीक से देखा है, तो उसमें आपका अनुभव कैसा रहा है?
1: निश्चित रूप से मुझे कई बार विदेश यात्रा अल्प समय के लिए जाने का मौका मिला, लेकिन मैं ज़्यादा समय के लिए जो मैं गया हूँ वो लंबे समय के लिए बोलना चाहिए, वो मैं गया हूँ थाईलैंड और जापान। पहले एक स्टडी टूर में मैं थाईलैंड गया और उसके बाद मैं जापान गया। जापान में मैंने महसूस किया यूनेस्को और जाइका, मतलब जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन सोसाइटी, इसके सहयोग से हमारा वहाँ जाना हुआ था। एशियाई कंट्रीज के जो लोग हैं, 11 लोग 11 देश से चयन किए गए थे। हमारे यहाँ भी मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हुई थी कि हर राज्यों से पहले तो नाम का चयन हुआ था, फिर अंत में पूरे देश से एक व्यक्ति का चयन हुआ और संयोग से उस एक व्यक्ति में मुझे अवसर मिला। मैं वहाँ पर जब गया तो मैंने देखा कि शिक्षा ही वहाँ के विकास का मूल मंत्र है, लेकिन शिक्षा को वो लोग बहुत ज़्यादा बेसिक शिक्षा को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। वहाँ की शिक्षा में मुझे महसूस किया, सबसे ज़्यादा मैंने जो उस देश में महसूस किया जापान में खासतौर पर, मुझे अनुशासन बहुत देखने को मिला। सबसे ज़्यादा वो अनुशासन पर ध्यान देते हैं, पंक्चुअलिटी जिसको बोलते हैं, टाइम बहुत बढ़िया वहाँ पर मैंने को देखने को मिला। जैसे हम तो कोई डेलीगेशन कहीं पर जाता है तो हम लोग उनके लिए VIP व्यवस्था करते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और वो आगे आने, उन्होंने भी हमारे शहर से दूर जाने के लिए स्पेशली, जैसे यहाँ पर स्पेशल प्लेन होते हैं तो हम लोग जितने लोग थे उतने सीटर, 25 सीटर हमको एक प्लेन दी गई थी इधर वो जाने के लिए, हमारे लिए खड़े रहती थे हमेशा जैसे जो सुविधाएँ मिलती। लेकिन ट्रेन में भी, बुलेट ट्रेन में भी हम लोग को उन्होंने कराया। मेरे को बताने का मतलब ये नहीं कि मैं वहाँ स्पेशल प्लेन या बुलेट ट्रेन और इसमें बैठा, बल्कि वो सब में सिखाते हैं। ऐसा नहीं कि बुलेट ट्रेन में बैठे हैं और हम आनंद लेने जा रहे हैं, वहाँ पर भी क्लास हमारी चलती थी, क्या सीख रहे हैं, क्या तो कैसा महसूस कर रहे हैं। और खाली वही नहीं, साइकिल भी चलवाते हैं हमको और पैदल भी चलवाते हैं। ऐसा नहीं कि हमने उतरे ट्रेन से और बस तक के हमको कोई ऑटो रिक्शा ये आएगा, वहाँ से पैदल चलना है आपको, यानी पैदल भी जितना आपने खाना खाया है वो आपको पचाना भी, और हेल्थ के लिए जितने कदम चलना जरूरी है उतना कदम चलना। तो अनुशासन, टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें हमको सीखने को मिली। और एक क्लास में मैंने एक बहुत अच्छा वातावरण वहाँ पर देखा। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि क्लास में हम पढ़ा रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, सारे लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। वहाँ जैसे हम लोग एक टेबल पर बैठे हैं, वहाँ गोल में अलग अलग टेबल पर, जैसे आज कॉन्फ्रेंस होती है नेशनल इंटरनेशनल, हम लोग भी वर्कशॉप करते हैं टेबल गोल मेज कॉन्फ्रेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, अलग अलग टेबल पर ग्रुप बैठते हैं, पीयर लर्निंग जिसको बोलते हैं, आपने कई बार इंटरव्यू लिया है तो उसमें आपने देखा होगा सुना होगा। तो उस तरह के ग्रुप एक्टिविटी वहाँ पर होती है, एक्टिविटी बेस्ड, आपको क्लासरूम लगेगा ही नहीं जब क्लास आप जाएंगे तो। और एक क्लास में एक टीचर नहीं होता, दो टीचर होता है, एक पढ़ाता है और एक ऑब्जर्व करता है। और जैसे स्टूडियो बना हुआ है, स्टूडियो में बाजू में रिकॉर्डिंग के लिए एक रूम बना हुआ है, वैसा ही वहाँ पर एक दूसरा कमरा होता है, वहाँ पर उन ऐसे बच्चे जो पढ़ाई से थोड़े पीछे जा रहे हैं। कभी फिल्म पहले आई थी आपको याद होगा तारे जमीन, तो तारे जमीन पर में जिस तरह से टीचर ऑब्जर्व करता है उस तरह से वो टीचर ऑब्जर्व करते हैं, और वो टीचर ऑब्जर्व करने के बाद उनको अलग कमरे में रखा जाता है और उनके लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उपकरण होते हैं, लर्निंग उनके मटेरियल होते हैं, वो वहाँ उनके लिए उस तरीके से रखे जाते हैं, और जब उस लेवल को अचीव कर लेते हैं तब उनको इसमें शामिल कर दिया जाता है। तो जो देश, जो कंट्री एक एक बच्चे के लिए ध्यान देता है, और जैसे हम स्टूडियो में अपने जूते चप्पल बाहर रख के आते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं या मंदिर जाते हैं तो हम जूते चप्पल बाहर रखते हैं, वैसा ही सिस्टम वहाँ स्कूलों में है कि वहाँ आप जाइए और जूते चप्पल सब बाहर रखने का सिस्टम है। शिक्षा एक मंदिर की तरह है, ये बड़ी बात हमने देखी वहाँ पर। और टाइम मैनेजमेंट और पढ़ाने का तरीका और दिखाने का तरीका, अभी तक क्या होता है, आपको हम यदि पढ़ा रहे हैं, जैसे यहाँ पर बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, पोस्ट ऑफिस है, ये अस्पताल है, ये बैंक है, ये ऑल इंडिया रेडियो है, ये दूरदर्शन है, या हम इस तरह से बताएंगे तो वहाँ का सिस्टम क्या है वो उनको वहाँ ले जाकर दिखाते हैं, वहाँ ये अंदर ले जाकर दिखाएंगे बच्चों को। यहाँ तो कभी कभी हम किसी किसी जगह दिखाते हैं ना, आपने देखा होगा विधानसभा लोकसभा बच्चों को दिखाया जाता है, लेकिन वहाँ तो अनिवार्य है ये सब चीज़ें कि पोस्ट ऑफिस है, ये बैंक है, ये एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है ना, ये आकाशवाणी है, ये दूरदर्शन है, ये सारी चीज़ें ले जाके कंपलसरी दिखाने का, ये बहुत अच्छा हमको सीखने को मिला और उसको हमने यहाँ पर आने के बाद अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लागू किया और उसका ही परिणाम है कि हमको जो अवार्ड मिला है। यदि छत्तीसगढ़ की द्वारा या वहाँ से हमको चयन नहीं होता तो ये उसके परिणाम भी हमने दिखाए, परिणाम भी हमने दिया कि कई लोग तो विदेश घूम के आ जाते हैं और स्टडी तक रह जाती है।
0: तो प्रशांत जी, आपने अवार्ड का जिक्र किया तो हमारे श्रोताओं को बताएंगे कि इसी क्षेत्र में कौन कौन से अवार्ड हैं जो आपके हिस्से में आए हैं।
1: बहुत अच्छा प्रश्न किया कि जब शुरू में हम यहाँ पर आए थे तो छत्तीसगढ़ के जिलों की स्थिति अच्छी नहीं थी, सभी जिले अलग अलग तरीके से परेशानियों में व्यस्त थे, उनके अकाउंट सब बंद थे और उनको ऐड मतलब वहाँ से अनुदान नहीं मिल रहा था, उसके बहुत सारे कारण थे। उन सब कारणों को हमने ठीक किया, ज़िलों में जा जा के दौरा किया, ज़िलों के जो कलेक्टर्स थे जो अध्यक्ष हुआ करते थे उनसे सौजन्य भेंट करके उनसे रिक्वेस्ट की, उनके टीएल की जो मीटिंग है उसमें शामिल हुए, अपने प्रोग्राम को हमने दिखाया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए। जब एक एक को जा जा के हमने सबसे बात की पूरे उस समय जो 18 ज़िले थे जब शुरुआती दौर पर, तो उन सारे ज़िलों में जाके हमने बताया, धीरे धीरे चीज़ों को ठीक करते गए तो हमने देखा कि नेशनल लेवल पर बहुत सारे, पहले सत्यन मेहता साक्षरता पुरस्कार मिलता था, उससे हम लोगों ने शुरुआत की। जो भी हम करते गए नया चीज़, हम जो भी नया नवाचारी हम कार्यक्रम करते गए जो हमने बाहर जाके सीखा था, तो वो दूसरे राज्यों का पहले हमने दौरा किया, हम दूसरे राज्यों को देखा ये क्या अच्छा कर रहे हैं, तो हमने लगा कि छत्तीसगढ़ में हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। हमने कलाकारों को जोड़ा, हमने यहाँ साहित्यकारों को जोड़ा, हमने यहाँ पर कुछ नवाचारी शिक्षकों को जोड़ा, इस तरह से हम लोगों को हम जोड़ते गए और हर जगह की साक्षरता की बात हम करते गए, तो एक सत्यन मेहता अवार्ड उस समय मिला, फिर आगे जाके सतत शिक्षा में अवार्ड मिला, फिर साक्षर भारत पुरस्कार को बताना चाहूँगा। 2013 में हमें हमारे जो हमारा जो यहाँ स्टेट लेवल की जो बॉडी है उसको केवल सेवाभावी बहुत कम लोग थे, सीमित संसाधन में हमने उस काम को शुरू किया था, तो उसको राष्ट्रपति अवार्ड मिला था साक्षर भारत का पुरस्कार, और उसके बाद 2016 में भी हमें पुरस्कार मिला राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, और ऐसे ही जिलों को ग्राम पंचायतों को मिलाकर कई जिलों को मैं यहाँ पर नाम लूंगा तो लंबी फहरिस्त है इसकी, तो 25 वर्ष में 25 अवार्ड, 25 से अधिक अवार्ड हमको अब तक राष्ट्रीय स्तर के मिल चुके हैं जो राष्ट्रपति महोदय द्वारा केंद्रीय मंत्री की उपस्थिति में दिए।
0: तो प्रशांत जी, ये हमारे लिए प्रदेशवासियों के लिए भी बड़े गर्व की बात है कि आपके द्वारा किए जा रहे प्रयासों को इस स्तर पर इसका आकलन किया गया। तो प्रशांत जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि शिक्षा को लेकर आपका जो स्वप्न है और आपके जो प्रयास हैं उन प्रयासों को सफलता मिले और हमारा प्रदेश इस क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति करे और हम भी भारत के नक्शे में एक पूर्ण साक्षर, पूर्ण शिक्षित और विकसित राज्यों की श्रेणी में दिखाई दें। इस बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: इनसे मिलिए इस कार्यक्रम में अभी आप अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक राज्य शिक्षा एवं साक्षरता फोरम छत्तीसगढ़ श्री प्रशांत कुमार पांडे से ली गई भेंटवार्ता सुन रहे थे। भेंटकर्ता थे दीपक हटवार। हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से बोल रहे थे। अभी आप सुन रहे थे नेशंस और दुश्मन 7 MHz पर विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।
3: चित्रलोक कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गाना भूल भुलैया 3 फिल्म से। आदित्य रिखारी और तुलसी कुमार की आवाजों में आदित्य रिखारी के बोल, संगीत है लियो जॉर्ज का, डीजे चेतस और आदित्य रिखारी का।

आज का वादा तो सब करते हैं, लेकिन जो खुशियां आज के बाद तक बरकरार रखे वही वादे सच्चे हैं। सत्य प्रेम की कथा फिल्म से सुनिए ये गाना मनन भरद्वाज और तुलसी कुमार की आवाजों में, मनन भरद्वाज के बोल और इन्हीं का संगीत।

और जब आपको कोई ऐसा मिल जाए जो आज के बाद के वादों को भी संभाल के रखे, तो आपका दिल तो भर ही जाएगा बहारा से। आई हेट लव स्टोरीज फिल्म से सुनिए श्रेया घोषाल, सोना मोहापात्रा की आवाजों में ये गाना, कुमार के बोल, विशाल शेखर का संगीत।

0: आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार
1: कि हम लोग उनके लिए हैं, आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए।
0: अपनी यादें बांटेंगे कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर
1: और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आप हमारे जितने भी कलाकार

0: हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स हैं, उन सबके नाम उनके जवान पे क्यों है? क्योंकि उनका प्यार है।
1: 18 मई शाम 7:45 पर
2: चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने इस अंतराल के बाद।

चित्रलो कार्यक्रम का अगला गाना कार्तिक कॉलिंग कार्तिक फिल्म से शंकर महादेवन, लॉय मेंडोसा और क्लिंटन सेरेओ की आवाजों में जावेद अख्तर के बोल, शंकर एहसान लॉय का संगीत।

कार्यक्रम का अगला गाना टू स्टेट्स फिल्म से अरिजीत सिंह, चिन्मय श्रीपदा की आवाजों में अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और म्यूजिक है शंकर एहसान लॉय का।

का अगला गाना हमारे सभी बड़े दिल वालों के लिए, 30 मार्क हां फिल्म से सुखविंदर सिंह की आवाज में और इनके साथ दिया है श्रेया घोषाल ने। अन्विता दत्त के बोल, विशाल शेखर का संगीत।

इस हाई नोट पे समाप्त करते हैं आज का चित्रलोक कार्यक्रम। दीजिए सुदक्षिणा को इजाजत, लेकिन जाते जाते मैं आपको याद दिला दूं कि 9:30 पर आप सुनेंगे आज के फनकार, जो आधारित होगा माधुरी दीक्षित पर, तो सुनना ना भूलिए।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललिता मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल स्वर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

नमस्कार, कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के फनकार उस जगमगाती स्माइल के नाम जिसके जादू से बचना मुश्किल है।

0: अलग ही है उनका हर अंदाज।
1: ये निगाहें नश्तर, ये होंठ कौसर, मेरी आगोश में होश भी बेहोश होगा।
0: तो आइए मिलते हैं द गॉर्जियस सुपर टैलेंटेड डांसिंग जीवा माधुरी दीक्षित से।

की लाडली और घर में सबसे छोटी सबकी दुलारी माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई 1967 को मुंबई में हुआ। नृत्य के प्रति जन्मजात रुझान का असर था जो नन्ही माधुरी संगीत सुनते ही ठुमकने लगती। 3 साल की उम्र से ही उन्होंने कथक सीखना आरंभ किया। कुछ ही वर्षों में कथक की बारीकियां उनके नृत्य में नजर आने लगी। जल्दी उनकी डांस परफॉर्मेंस सराही जाने लगी और बतौर कथक नृत्यांगना उन्हें स्कॉलरशिप मिली। उस वक्त वो सिर्फ 9 साल की थी।

पढ़ाई के साथ साथ माधुरी दीक्षित कल्चरल एक्टिविटीज में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करती। स्कूली शिक्षा के बाद माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनने के उद्देश्य से उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया। कुछ ऐसे संयोग बने कि उन्होंने हिंदी फिल्मों के रुपहले संसार में किस्मत आजमाने का मन बना लिया। वो साल था 1984 जब राजश्री प्रोडक्शंस के बैनर तले उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई, अबोध। इस फिल्म में उनके साथ थे बंगाल के अभिनेता तापस।

अबोध को दर्शकों का प्यार तो नहीं मिल सका, लेकिन माधुरी दीक्षित को मिली आलोचकों की प्रशंसा। आने वाले समय में माधुरी दीक्षित की कई फिल्में आईं। आवारा बाप 1985 में, स्वाति, हिफाजत और उत्तर दक्षिण 1987 में, 1988 में उनकी एक साथ चार फिल्में रिलीज हुईं, मोहरे, खतरों के खिलाड़ी, दयावान और तेजाब। फिल्म तेजाब में फिल्म हिफाजत के बाद एक बार फिर उनके साथ नजर आए अनिल कपूर। तेजाब की मोहिनी ने माधुरी दीक्षित को रातों रात स्टार बना दिया।

1989 में कई सितारों से सजी फिल्म वर्दी में उनकी जोड़ी जैकी श्रॉफ के साथ जमी। इसी साल आई सुभाष घई की फिल्म राम लखन में एक बार फिर अनिल कपूर के साथ उनकी जोड़ी खूब पसंद की गई।

वक्त के साथ सफलता की सीढ़ियां चढ़ती माधुरी दीक्षित अलग अलग फिल्मों में अलग अलग किरदारों में फैंस के दिल में अपनी जगह बनाती गईं। मल्टी स्टारर फिल्म त्रिदेव की जया माथुर हो या प्रेम प्रतिज्ञा की भोली भाली लक्ष्मी राव या फिर परिंदा की पारो, रोल छोटा हो या बड़ा, माधुरी दीक्षित के अभिनय की छाप गहरी होती गयी।

90 के दशक में माधुरी दीक्षित के करियर का एक नया दौर शुरू हुआ। 1990 में आई फिल्म कृष्ण कन्हैया के बाद फिल्म दिल की जबरदस्त कामयाबी ने उन्हें शिखर पर पहुंचा दिया। आमिर खान के साथ उनकी इस फिल्म के लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला।

अपनी फिल्मों के जरिए माधुरी दीक्षित उस नए जमाने की लड़की की पहचान बन गई, जो खूबसूरत और स्टाइलिश होने के साथ अकलमंद भी है, आजाद ख्याल है और उसूलों की पक्की है। थानेदार, 100 डेज, साजन जैसी फिल्मों ने ये साबित कर दिया कि परफेक्ट डांसिंग मूव्स और खूबसूरती के अलावा माधुरी दीक्षित में कमाल की अभिनय

1992 में आई फिल्म बेटा, जिसमें एक बार फिर माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर की जोड़ी नजर आई। फिल्म जबरदस्त हिट हुई और माधुरी दीक्षित को मिला दूसरा फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड।

0: अपने अभिनय से हर किरदार को यादगार बनाने वाली माधुरी दीक्षित 90s की बॉक्स ऑफिस क्वीन बन गईं। फिल्म थिएटर से उतरने के बावजूद उनका रोल जहन में हमेशा ताजा रहा। भला कौन भूल सकता है फिल्म खलनायक की जाबाज पुलिस ऑफिसर गंगा को, या फिल्म अंजाम की सताई हुई शिवानी चोपड़ा को, या फिल्म मृत्युदंड की केतकी सिंह को, जो अपराध और अत्याचार के खिलाफ चुनौती बनकर खड़ी हो जाती है।
1: हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे।
2: देखिए, जाने दीजिए हमको, दीदी का तबीयत ज्यादा खराब है।
1: हमको भी कुछ बात करना है।
2: वो हम बाद में भी कर सकते हैं।
1: बाद में नहीं, अभी।
2: भगवान के लिए अभी ये बहस मत उठाइए, दीदी को जरूरत है हमारा।
3: देखिए श्रीमती जी, अपना औकात में रहिए, हमरा मरद बनने का कोशिश मत कीजिए।
2: औकात को ताकत का तराजू में तोलने का कोशिश मत कीजिए। आप हमारे पति हैं, परमेश्वर बनने का फूल मत कीजिए।
0: 1994 में माधुरी दीक्षित ने एक बार फिर राशि प्रोडक्शंस की फिल्म की हम आपके हैं कौन। सलमान खान के साथ ये उनकी एक और हिट मूवी थी, जिसके लिए उन्हें मिला तीसरा फिल्म फेयर

साल 1997 लेकर आया भावनात्मक उथल पुथल से जूझते तीन किरदारों की फिल्म दिल तो पागल है। इस फिल्म में माधुरी दीक्षित के साथ शाहरुख खान और करिश्मा कपूर थे। फिल्म जबरदस्त हिट हुई और माधुरी दीक्षित ने जीता 4th फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड।

प्रेम त्रिकोण पर आधारित माधुरी दीक्षित की फिल्मों में सन 2000 की फिल्म पुकार का जिक्र भी आता है, जिसमें प्रेम में हारी ईर्ष्या दग्ध अंजलि के रूप में उनकी जमकर प्रशंसा हुई।

माधुरी दीक्षित एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो हर उम्र हर वर्ग के दर्शकों की फेवरेट रही हैं। 2001 में मशहूर चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन साहब ने उन्हें लेकर फिल्म गजगामिनी का निर्माण किया। इसी साल रिलीज हुई राजकुमार संतोषी की फिल्म लज्जा, जिसमें जानकी के रोल में उन्हें बहुत सराहा गया।

0: देश हो या विदेश, माधुरी दीक्षित की फिल्मों का जबरदस्त क्रेज रहा है। 2002 में फिल्म देवदास आई, जिसमें माधुरी दीक्षित ने चंद्रमुखी की भूमिका निभाई। इस फिल्म में कथक नृत्यांगना माधुरी दीक्षित के अभिनय को भी बहुत प्रशंसा मिली। उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा गया।
1: ढाई शाम रोक लई, रोक लई, रोक लई, ढाई शाम रोक लई और चकमुख चूम लई, मुख चूम लई, मुख चूम लई, सर से मोरी चुनरी गई, गई, गई, सर से मोरी चुनरी गई, सरक सरक सरक, सरक सरक सरक, सरक सरक।
0: फिल्म देवदास के बाद माधुरी दीक्षित अपने परिवार के साथ अमेरिका चली गईं। वहीं रहते हुए उन्होंने एक फिल्म साइन की। खबर मिलते ही एक बार फिर रुपहले पर्दे पर उन्हें देखने के लिए फैंस बेकरार हो गए और सन 2007 में उनकी बेकरारी को करार देते हुए रिलीज हुई फिल्म आजा नच ले।

2012 में वो वापस भारत लौटी और 2014 में रिलीज हुई आलोचकों द्वारा प्रशंसित फिल्म डेढ़ इश्किया, जिसमें माधुरी दीक्षित के साथ नसीरुद्दीन शाह, अरशद वारसी और हुमा कुरैशी नजर आए।

0: साल अभिनेत्री जूही चावला के साथ माधुरी की फिल्म आई गुलाब गैंग, जिसमें वुमन एक्टिविस्ट के रोल में उनके सशक्त अभिनय की बहुत सराहना हुई।
1: जैसे तिल में तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साइन तुझ में है, तू जाग सके तो जाग।
2: केंद्रों से बोल रहे हैं, 9:55 होने को है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
3: आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से कहा कि पेट्रोल डीजल की उपलब्धता को लेकर चिंता नहीं करें, प्रदेश में पर्याप्त भंडार उपलब्ध हैं। और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज रायपुर में वॉकथन का आयोजन किया गया। और अब समाचार विस्तार से। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रम के बीच केंद्र सरकार ने देश में घरेलू एलपीजी, घरेलू पीएनजी और परिवहन के लिए सीएनजी की शत प्रतिशत आपूर्ति सुनिश्चित करने की जानकारी दी है। नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयीन ब्रीफिंग में बताया गया कि पिछले 3 दिनों में लगभग 1,40,00,000 घरेलू एलपीजी सिलेंडर बुक किए गए, जिनमें से करीब 1,39,00,000 सिलेंडर वितरित किए जा चुके हैं। सरकार ने कहा है कि देश के सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और इनके खुदरा मूल्यों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। ब्रीफिंग में यह भी बताया गया है कि भारत के लिए एलपीजी लेकर आ रहे 2 जहाज सुरक्षित रूप से होर्मुज जलडमरू मध्य पार कर चुके हैं। इनमें एक जहाज करीब 19,965 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर 16 मई को कांडला पहुंचने की संभावना है, जबकि दूसरा जहाज 46,427 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर 18 मई को न्यू मैंगलोर पहुंच सकता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों से पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को लेकर चिंता नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडारण उपलब्ध है और प्रदेश के सभी ऑयल डिपो में नियमित रूप से ईंधन की आपूर्ति की जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार और ऑयल कंपनियां आपसी समन्वय के साथ स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने भी ईंधन आपूर्ति को लेकर जरूरी तैयारियां की हैं और किसी तरह की समस्या नहीं है। श्री साय ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और जरूरत के अनुसार ही ईंधन लेने की अपील की है। इस बीच राज्य की खाद्य सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले ने कहा कि आम लोगों द्वारा पिछले 2 दिनों में पेट्रोल डीजल की पैनिक खरीदी की गई है, जिससे इसकी खपत में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज हुई है। इस कारण कुछ स्थानों पर कृत्रिम अभाव की स्थिति निर्मित हो गई। उन्होंने लोगों से किसी भी तरह की अफवाह या घबराहट की स्थिति में पेट्रोल डीजल की खरीदी नहीं करने की अपील की है। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आकाशवाणी केंद्र द्वारा वॉकथन का आयोजन किया गया। इसमें आकाशवाणी के कर्मचारी, सेवानिवृत्त अधिकारी, समाचार वाचक, श्रोता और शहर के प्रमुख नागरिक शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दूरदर्शन रायपुर के उप महानिदेशक संजय कुमार मिश्रा थे। विशेष अतिथि के रूप में पत्र सूचना कार्यालय रायपुर के उप निदेशक रमेश जयभाय और माय भारत के क्षेत्रीय प्रमुख अर्पित तिवारी शामिल हुए। वॉकथन आज सुबह लगभग 7 बजे सिविल लाइन्स स्थित आकाशवाणी भवन से शुरू हुआ। यह शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए आकाशवाणी परिसर में ही समाप्त हुआ। आकाशवाणी केंद्र रायपुर के उप महानिदेशक वी राजेश्वर ने बताया कि यह आयोजन आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के सफर को यादगार बनाने के लिए किया गया है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना 8 जून 1936 में हुई थी। यह देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है, जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन, प्रेरक और जनोपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। आज अनेक जगह मौसम का मिजाज फिर से बदल गया। राजधानी रायपुर और राजनांदगांव सहित कुछ जिलों में तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने महासमुंद, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा सहित राज्य के 17 जिलों में आज अचानक तेज हवा और मेघ गर्जन के साथ वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। राज्य के दक्षिणी इलाकों में भी आकाशीय बिजली गिरने और वर्षा होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद और जशपुर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया जाएगा। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल रमेश डेका करेंगे, वहीं मुख्यमंत्री विष्णु देसाई समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। अंतिम में मुख्य समाचार एक बार फिर। तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3 रूपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से कहा कि पेट्रोल डीजल की उपलब्धता को लेकर चिंता नहीं करें, प्रदेश में पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज रायपुर में वाकाथन का आयोजन किया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
4: हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर 10 बजे है। आइए अब आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम के बारे में। अब से थोड़ी ही देर बाद 10:10 पर सुनेगा सुगम संगीत। फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश हम आपके लिए लेकर आएंगे 10:30 पर। अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा सुबह 11 बजे से। विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण फिर से आप सुनेंगे दोपहर 12 बजे से।

साथ ही हमरकोट का प्रसारण होगा शाम 5 बजे। भजन संध्या आप सुन सकेंगे 5:10 पर, 5:30 पर। फोन कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए का समय होगा शाम 6:20 पर। लीजिए तब आप सुन सकेंगे शाम 7 बजे। किसान 7:20 पर, जिसमें आज की बात का विषय है पोटेशियम का फसल उत्पादन पर प्रभाव। आज की नसीहत में सुनिएगा बतख पालन एक लाभकारी व्यवसाय, आज का टिप कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव, आज का मौसम।

गैर फिल्मी गीत हम आपके लिए लेकर आएंगे रात्रि 8:20 पर, फिल्म 8:30 पर। विभिन्न का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा रात 9:00। विविध संगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे रात 10:00। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा का समय होगा 10:30 पर। ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रम।

0: अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
1: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
2: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
1: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
2: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
2: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
0: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

हम पर प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत सुनवाने जा रहे हैं जगजीत सिंह चित्ता सिंह की आवाज में गाई ये गजल जिसे लिखा जावेद अख्तर ने तर्ज बनाई है कुलदीप सिंह ने।

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन की क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: कार्यक्रम सुगम संगीत में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं जगजीत सिंह चित्रा सिंह की गाई ये गजल, जिसे लिखा है राणा सहरी ने, तर्ज बनाई है जगजीत सिंह ने।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: अब यानी खबर आपकी दुकान जैसे ट्यूशन तो जल्दी कीजिए, संपर्क करें आकाशवाणी के छोटेगढ़।
2: कार्यक्रम सुगम संगीत में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं गुलाम अली की आवाज में गाई ये गजल, जिसे लिखा है मसरूर अनवर ने, तर्ज बनाई है गुलाम अली ने।

गुलाम अली की गाई इस गजल के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब संपन्न होता है। हम केंद्र से बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर मेट हुए हैं। अपने गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम, आपकी फरमाइश।

पहले सुनवाने जा रहे लता मंगेशकर की आवाज में दिल फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है हंसरत जयपुरी ने, तर्ज बनाई है शंकर जयकिशन ने। इस गीत को सुनना चाहते हैं झूलेलाल कॉलोनी रायगढ़ से लक्ष्मण, विमला, मास्टर हर्ष, खुशी, शुभम बाधवानी, कन्हैया लाल। साथ ही इस गीत को सुनने की फरमाइश की है गौशाला पारा से विनोद कुमार गुप्ता, नेहा, यशु, अंशु, रीना गुप्ता। मोरवा से इस गीत को सुनना चाहते हैं कारी राय, मीना, पुंजराज, आर्यन, आरती, आकर्षण, जयश्री, पिंकी, रिंकी, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा। साकरा से जयंत कुमार बैरागी। सुनते आप सबकी पसंद का ये गीत।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे,
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन की क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
4: आकाशवाणी प्रसारण के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में श्रोता प्रतिक्रिया में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं नीतू साहू की प्रतिक्रिया।

गीत संगीत उस नहीं आता था, लेकिन सोनी ने हमारे जीवन के कितने बनाया है। शहर की व्यस्त जिंदगी आकाशवाणी ने हमें हर जगह अपनी एक खास पहचान बनाई है। जब काम नहीं थे तब नए विचार देता था, और संरक्षित करने में

एक अपन एक ऐसी जैसे घर के किसी अपने की बात सुन रहे हो। आज

कार्यक्रम आपकी फरमाइश में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर मनोहर की आवाज में हीरो फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा बख्शी ने, तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है भाटापारा दत्तरंगी से किशोर कुमार, दीपक कुमार, झावेंद्र कुमार वर्मा, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन, सुमन, मिथलेश, तानी, सूरज, सुजला, ज्योति, रियांश ठाकुर, दत्तरंगीश्याम, पार्वती, प्रतिमा, रीना, लक्ष्मी, मीमा, यदु। सुनते आप सबकी पसंद का ये गीत।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश में हम आपको सुनवाने जा रहे लता मंगेशकर मनमोहन सिंह की आवाज में बारिश फिल्म का ये गीत, जैसे मालिक ने तर्ज बनाई है उत्तम जगदीश ने। इस गीत को सुनने की फरमाइश की छत्रपति संभाजी नगर से राजेश, राजदीप, राशि, शीतल, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव, बलविंदर, जयतक, मीका, बैरक। साथ ही इस गीत को सुनना चाहते हैं नांदुरा महाराष्ट्र से रक्षा ताई, ललिता, संजना, गणेश, कार्तिक, मालती चौधरी, स्वाति, प्रयाग चौधरी। सुनते आप सबकी पसंद का ये गीत।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं एसपी बाल सुब्रमण्यम की आवाज में मैंने प्यार किया फिल्म का ये गीत, जिसे लेकर असद भोपाली ने तर्ज बनाई राम लक्ष्मण ने। इस गीत को सुनना चाहते हैं नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा दामिनी, बेमित्रा से सुरेश कुमार, कमलकांत, वीरेंद्र ब्रजकांत सारथी, इंद्रनगर रायगढ़ से शेख अब्दुल सलीम बेगम, परवीन बानो, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अलीम, आसिफ नईम राजा। साथ ही इस गीत को सुनने की फरमाइश की है बेलरगांव से मिथलेश, मधु, हिमांशु, अंकित देवांगन, किशनपुर से आलम दिलकर, सबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम से एक सवाना आलम, चांदनी राज, औरंगाबाद से राजेश, शीतल, राजदीप, राशि। सुनते आप सबकी पसंद का ये गीत।

यानी कि रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर 11 बजे है। अभिव्यक्त भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।

विविध भारती पर कार्यक्रम रंग तरंग के साथ हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

गांधीज फेवरेट भजन बाय लता मंगेशकर। इस एल्बम से लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे नरसिंह मेहता का लिखा ये भजन, संगीत हृदयनाथ मंगेशकर का। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर सुन रहे हैं।

0: माजिद शोला कवाली की आवाज में सुन रहे थे आप ये कवाली। पायम सिद्दीकी सईदी ने इसे लिखा, मामी बाचू का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और आइए सुनते हैं ये जरूरी संदेश।
1: जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

कुसैर अल जाफरी के ये कलाम आप सुन रहे थे अशोक खोसला की आवाज में, कुलदीप सिंह का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आपको बता दें कि आज दोपहर 3 बजे से आप सुन सकते हैं हेलो सहेली कार्यक्रम, जिसमें सखियों की फोन इन फरमाइशें पूरी होंगी।

अनूप जलोटा की आवाज में सबा अफगानी का कलाम आपने सुना, अनूप जलोटा का संगीत। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आपको याद दिला दें कि आज दोपहर 2 बजे वंदे मातरम एक जय घोष, ये श्रृंखला आप सुन सकते हैं। श्रृंखला की 28वीं कड़ी आज आपको सुनाई जाएगी। और हेलो सहेली कार्यक्रम 3 बजे से सुनेगा, जिसमें सखियों की फोन इन फरमाइशें होंगी पूरी। शाम 4 बजे होगा पिटारा में गीतों भरी कहानी का सिलसिला, कहानी जीवन एक सरल रेखा, जिसे लिखा है श्वेता उपाध्याय ने। और अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगली गजल है ये, जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल सुनिए, द लेटेस्ट जगजीत सिंह चित्रा सिंह गजल इस एल्बम से, और इसे लिखा है सुदर्शन फकीर ने।

सुदर्शन फकीर का लिखा यह कलाम आप सुन रहे थे जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में। जगजीत सिंह का संगीत कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

राहत इंदौरी का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे रूप कुमार राठौर और संजीवनी की आवाजें करीब फिल्म के इस गीत में, संगीत अनु मलिक का। आप सुन रहे कार्यक्रम रंग तरंग और आपको ये बताते चलें कि रोजाना शाम 6:35 से संध्या रंजन इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन सकते हैं भक्ति संगीत और संगीत सरिता में। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ऐसी लागी लगन। कलाकार हैं गायक अनूप जलोटा। चौथी कड़ी आज सुन सकते हैं शाम 6:45 से और रोजाना इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं सुबह और शाम 6:45 से। रंग तरंग कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। मोहित चौहान, केम त्रिवेदी और अतुल मित्तल की आवाजें, उन्हीं के बोल उन्हीं का शब्द और एल्बम है सिल्क रूट बूंदे।

सिल्क रूट बूंदे इस फिल्म इस एल्बम से गीत आप सुन रहे थे। मोहित चौहान, केम त्रिवेदी और अतुल मित्तल की आवाजें, उन्हीं के बोल, उन्हीं का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग आप सुन रहे हैं विविध भारती पर

गहरा गहरा नथु खेरा। इस एल्बम से सुनिधि चौहान की आवाज में समीर के बोल आप सुन रहे थे। राजू सिंह का संगीत कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में कुछ गजलें भी आपको सुनवाई गई, क्योंकि एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें गजल, कवाली, पॉप गीत और लोकगीतों का संगम होता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ और गजलें सुनने का आपका मन है, तो आज शाम 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत आप सुन सकते हैं गुलदस्ता में गजलें, जो कि नॉन फिल्मी गजलें हैं। और इसके साथ ही 8 बजे हवा महल में सुनिए हास्य नाटिका बुखार, जिसे लिखा है वीरेंद्र कश्यप ने, निर्देशन गंगा प्रसाद माथुर का। फिलहाल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रंग तरंग विविध भारती पर।

बाबा सहगल की आवाज में आप सुन रहे थे जुगनी मस्त कलंदर एल्बम से ये गीत, और इसे लिखा बाबा सहगल और देव कोहली ने, बाबा सहगल का संगीत। आपको बता दें कि आज रात 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर, और इस वक्त रंग दरंग कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं रेमो डिसूजा की आवाज में, माफ कीजिएगा, रेमो फर्नांडिस की आवाज में ये गीत ओ मेरी मुन्नी एल्बम से।

0: को हैं। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से कहा कि पेट्रोल डीजल की उपलब्धता को लेकर चिंता नहीं करें, प्रदेश में पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज रायपुर में वॉकथन का आयोजन किया गया। और अब समाचार विस्तार से। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रम के बीच केंद्र सरकार ने देश में घरेलू एलपीजी, घरेलू पीएनजी और परिवहन के लिए सीएनजी की 100% आपूर्ति सुनिश्चित होने की जानकारी दी है। नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयी ब्रीफिंग में बताया गया कि पिछले 3 दिनों में लगभग 1,40,00,000 घरेलू एलपीजी सिलेंडर बुक किए गए, जिनमें से करीब 1,39,00,000 सिलेंडर वितरित किए जा चुके हैं। सरकार ने कहा है कि देश के सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। ब्रीफिंग में यह भी बताया गया कि भारत के लिए एलपीजी लेकर आ रहे 2 जहाज सुरक्षित रूप से होर्मुज जल डमरू मध्य पार कर चुके हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों से पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को लेकर चिंता नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडारण उपलब्ध है और प्रदेश के सभी ऑयल डिपो में नियमित रूप से ईंधन की आपूर्ति की जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार और ऑयल कंपनियां आपसी समन्वय के साथ स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने भी ईंधन आपूर्ति को लेकर जरूरी तैयारियां की हैं और किसी तरह की समस्या नहीं है। श्री साय ने लोगों से अफवाह पर ध्यान नहीं देने और जरूरत के अनुसार ही ईंधन लेने की अपील की है। इस बीच राज्य की खाद्य सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले ने कहा है कि आम लोगों द्वारा पिछले 2 दिनों में पेट्रोल डीजल की पैनिक खरीदी की गई है, जिससे इसकी खपत में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज हुई है। इस कारण कुछ स्थानों पर कृत्रिम अभाव की स्थिति निर्मित हो गई है। उन्होंने लोगों से किसी भी तरह की अफवाह या घबराहट की स्थिति में पेट्रोल डीजल की खरीदी नहीं करने की अपील की है। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आकाशवाणी केंद्र द्वारा वॉकथन का आयोजन किया गया। इसमें आकाशवाणी के कर्मचारी, सेवानिवृत्त अधिकारी, समाचार वाचक, श्रोता और शहर के प्रमुख नागरिक शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दूरदर्शन रायपुर के उप महानिदेशक संजय कुमार मिश्रा थे। विशेष अतिथि के रूप में पत्र सूचना कार्यालय रायपुर के उप निदेशक रमेश जयभाय और माई भारत के क्षेत्रीय प्रमुख अर्पित तिवारी शामिल हुए। वॉकथन सुबह लगभग 7 बजे सिविल लाइन्स स्थित आकाशवाणी भवन से शुरू हुआ या शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए आकाशवाणी परिसर में ही समाप्त हुआ। आकाशवाणी केंद्र रायपुर के उप महानिदेशक वी राजेश्वर ने बताया कि ये आयोजन आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के सफर को यादगार बनाने के लिए किया गया है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना 8 जून 1936 में हुई थी। ये देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है, जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन, प्रेरक और जन उपयोगी कार्यक्रम का प्रसारण करता है। प्रदेश में आज अनेक जगह मौसम का मिजाज फिर बदल गया। राजधानी रायपुर और राजनांदगांव सहित कुछ जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने महासमुंद, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा सहित राज्य के 17 जिलों में आज अचानक तेज हवा और मेघ गर्जन के साथ वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से कहा कि पेट्रोल डीजल की उपलब्धता को लेकर चिंता नहीं करें, प्रदेश में पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज रायपुर में वॉकथन का आयोजन किया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये रायपुर के

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है।
1: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने त्वरित एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं। 2 से शुरू होगा 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
0: श्री प्रधान ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक चैनलों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। इससे पहले इस महीने की 3 तारीख को भी परीक्षा कथित पेपर लीक के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। प्रधानमंत्री आज सुबह संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, साथ ही पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्रालय के अपर सचिव पश्चिम असीम महाजन ने कहा कि ऊर्जा दोनों देशों के संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है। एक रिपोर्ट।
2: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्चे से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। उन्होंने आपसी हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। डॉक्टर जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराक्चे की भागीदारी की सराहना भी की। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी गैस की कीमतों में 2 रुपये की वृद्धि की है। इसके साथ ही दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की कीमत 79.09, गाजियाबाद और नोएडा में 87.70 और गुरुग्राम में इसकी दर 84.12 हो गई है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से राजधानी में ईंधन की खपत कम करने और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा शुरू की। ये केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशनों तथा सेंट्रल विस्टा क्षेत्र के प्रमुख सरकारी प्रतिष्ठानों के बीच निर्बाध और पर्यावरण अनुकूल अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 82 अंक बढ़कर 75,481 पर, जबकि निफ्टी 29 अंक की वृद्धि के साथ 23,719 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर ऐसे गीत चुने गए हैं जिनमें पारिवारिक रिश्तों की भी बातें हैं और परिवार का आपसी संगठन, आपसी प्रेम भी दर्शाया गया है। तो चलिए सुनते हैं ये गीत।
4: बम चिक चिक बम, चिक बम बम बम चिक चिक बम।

बिल्कुल कुछ ऐसा ही तो होता है हमारा परिवार। हम फिल्म से गीत आपने सुना सुदेश भोसले, मोहम्मद अजीज, उदित नारायण और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर आज यादों की महफिल कार्यक्रम में कुछ ऐसे गीत जिनमें परिवार की एकजुटता के बारे में बताया जाता है या पारिवारिक रिश्तों की बातें हैं।

दादी माँ फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मन्ना डे और महेंद्र कपूर की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, रोशन का संगीत। आपको याद दिला दें कि दोपहर 3 बजे सखियों की फोन इन फरमाइशें पूरी होंगी हेलो सहेली कार्यक्रम में। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। और दोपहर 2 बजे से सुन सकते हैं वंदे मातरम एक जय घोष, इस श्रृंखला की 28वीं कड़ी। शाम 4 बजे गीतों भरी कहानी में आज सुनेंगे सुनिएगा जीवन एक सरल रेखा, ये कहानी जिसे लिखा है श्वेता उपाध्याय ने। और कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से अंतराल का।

घर घर की कहानी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। शब्बीर कुमार, चंद्राणी मुखर्जी, उत्तारा केलकर और साथियों की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल बप्पी लाहिरी का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर ऐसे गीत जिनमें पारिवारिक रिश्तों की बातें हैं और साथ ही है पारिवारिक एकजुटता का संदेश।

किशोर कुमार की आवाज में ढोंगी फिल्म का गीत आपने सुना, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर आपको सुनवा रहे हैं ऐसे गीत जिसमें पारिवारिक एकजुटता की बातें तो है ही, साथ ही पारिवारिक रिश्तों का उल्लेख भी। कुछ ऐसा ही गीत आपको अब सुनवाने वाले हैं। साधना सरगम और साथियों की आवाजें हैं, महबूब के बोल, AR रहमान का संगीत, फिल्म डोली सजा के रखना। सुनिए ये गीत।

0: जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

चाचा जिंदाबाद फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, राजेंद्र कृष्ण के बोल, मदन मोहन का संगीत। रोजाना दोपहर 2:30 से आप सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर, और रोज रात छाया गीत होता है 10 बजे। अगर आप किसी दिन छाया गीत सुनने से रह जाएं तो चिंता ना कीजिएगा, सुन सकते हैं रोजाना शाम 5 बजे से छाया गीत का पुनः प्रसारण। विविध भारती पर इन दिनों आप कई कार्यक्रम सुन रहे हैं, और इस वक्त आप सुन रहे हैं यादों की महफिल कार्यक्रम, जिसमें आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर पारिवारिक रिश्तों को बताते गीत या पारिवारिक एकजुटता को दर्शाते गीत हमने शामिल किए हैं।

वो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एस नो मचा के गिट पिट का शोर वो छुड़ा ही लेगा हर एक को बहस करेगा वो जोर की नो नो नो मिलान बेकसूर छोड़ दो बहस करेगा वो जोर की कहेगा जज ऑर्डर सुनो ऑर्डर ऑर्डर

0: जो असली है कभी उससे खताएं हो नहीं सकती, जो नकली है कभी उससे वफाएं हो नहीं सकती।
1: अरे नहीं भाई नहीं, हाँ बुरा हो वक्त तो साया भी अपना दूर रहता है, वफादारी का शिकवा क्या जमाना ये ही कहता है, जमाना ये ही कहता है, जमाना ये ही कहता है।
2: अरे क्या

0: सच भाई हुए हैं आज बेगाने, हम ही पर ताने कसते हैं, हम ही पर ताने कसते हैं, हम ही पर ताने कसते हैं।
1: अरे कैसे।

परवरिश फिल्म के इस गीत को आप सुन रहे थे मन्ना डे और मोहम्मद रफी की आवाजों में हसरत जयपुरी के बोल दत्ताराम वाडकर का संगीत। आपको याद दिला दें कि 10 बजे रोजाना आप सुन सकते हैं छाया गीत कार्यक्रम, और अगर आपसे सुनना रह जाए या आप दोबारा सुनना चाहें तो हर शाम 5 बजे आप पहले दिन के छाया गीत का पुनः प्रसारण सुन सकते हैं। आपके लिए ये कार्यक्रम रोजाना 9 बजे होता है और 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर। तो अब इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर, और आज इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर पारिवारिक संबंधों को दर्शाते गीत हमने शामिल किए हैं।

क्या कहना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। कविता कृष्णमूर्ति और हरिहरन के साथ साथियों की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राजेश रोशन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर याद कर रहे हैं वो गीत जिनमें परिवार के सदस्यों की बातें हों या पारिवारिक एकजुटता के बात हों।

एनिमल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे सोनू निगम की आवाज, राजशेखर की बोल, हर्षवर्धन रामेश्वरम का संगीत था इस गीत में। अगर आप नए गानों के शौकीन हैं तो सुनिए हमारा कार्यक्रम चित्रलोक रोजाना रात 8:15 से, और ये कार्यक्रम सुबह 8:30 पर भी आता है। दोनों ही समय आप सुन सकते हैं नए फिल्मी गीत विविध भारती पर। और इस वक्त विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिसमें आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर पारिवारिक रिश्तों को दर्शाते गीत आपको सुनवा रहे हैं।

इस गीत के साथ ही यादों के महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। और इससे पहले आपको बता दें, सत्य पे सत्ता फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार, भूपिंदर, सपन चक्रवर्ती और राहुल देवबर्मन की आवाजों में। राहुल देवबर्मन का संगीत, गुलशन बावरा के बोल। और अब कार्यक्रम से इजाजत लेते हैं। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

भी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि इस कार्यक्रम के बारे में आप जानते हैं कि रोजाना हमारी फेसबुक पेज पर हम पोस्ट करते हैं एक इबारत या टेक्स्ट जिसमें छुपे होते हैं आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले गीत। यानी रोजाना कार्यक्रम में जो भी गीत शामिल होते हैं वो उसी टेक्स्ट से आते हैं और उनमें कुछ शब्द ऐसे समाये होते हैं जिन पर आधारित गीत कार्यक्रम में शामिल किए जाते हैं। तो ये अंदाजा लगाना होता है हमारे श्रोताओं को कि आज के कार्यक्रम में कौन कौन से शब्दों पर गाने शामिल हो सकते हैं। और कार्यक्रम का मजा तो इसी बात में है कि आपके गानों की लिस्ट और हमारे गानों की लिस्ट किसी तरह से मैच हो जाए। और अगर आपके कुछ गीत अलग भी हैं तो भी आप उसे हमारी पोस्ट पर कमेंट के जरिए बता सकते हैं, क्या पता शायद वो गीत शामिल हो जाए कार्यक्रम में। और आज की जो इबारत है या टेक्स्ट है वो हम आपके लिए एक बार पढ़ देते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। और हमारे जो साथी अब तक फेसबुक पेज से नहीं जुड़ पाए हैं वो जा सकते हैं www.facebook.com/vbsmumbai। इस पते पर जाकर आपको विविध भारती राष्ट्रीय सेवा का पेज मिल जाएगा। बहुत से साथी पूछते हैं कि कौन सा असली पेज है, तो विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देवनागरी हिंदी में लिखा हुआ है और उसके बाजू में एक नीले कलर का टिक बना हुआ है और इसके साथ ही आप देख सकते हैं फॉलोअर्स 1000K लिखा होगा, यानी माफ कीजिएगा 100K लिखा होगा, यानी कि 100,000 फॉलोअर हैं। और यही पेज विविध भारती का आधिकारिक पेज है, इसे आप फॉलो कर सकते हैं और इस पर ही आपको ये पोस्ट नजर आएगी। तो आज की इबारत मैं एक बार आपके सामने पढ़ दूं। गर्मी जहां झुलसाती है वहीं इससे जुड़ी यादें हमारे मन पर मीठे नर्म फाहे रख जाती हैं। गर्मियों की छुट्टियां, रेलगाड़ी का सफर, कभी नानी की कहानी तो कभी दादी का दुलार, गिल्ली डंडा, छुपन छुपाई, खेल खेल में दिन बीत जाते थे भाई, सैर सपाटे, पिकनिक, बाग बगीचे और मस्ती, वो दिन भी क्या दिन थे। तो इस इबारत से अंदाजा तो हमारे बहुत से साथियों ने लगाया है कि आज बातें बचपन में मिलने वाली गर्मियों की छुट्टी की है। और साथ ही बहुत सी बातें होंगी जहां हम घूमने जाते थे, रेलगाड़ी के सफर की बातें होंगी, ऐसा हमारे साथियों ने कुछ अंदाजा लगाया है और शब्द भी हमारे साथियों ने लिख भेजे हैं। लेकिन कार्यक्रम का पहला गीत सुनवाने से पहले हम आपसे कुछ और भी पूछना चाहते हैं। तो आपकी गर्मियों की छुट्टियों की यादें हमसे साझा कर सकते हैं और साथ ही ये भी बताइए कि बचपन में आपने कौन कौन से खेल खेले हैं, क्योंकि इसमें तो हमने 2-3 खेलों के ही नाम बताए, लेकिन आप कौन कौन से खेल खेला करते थे ये बता सकते हैं। क्या गर्मियों की छुट्टियाँ आपके लिए फिल्में ज़्यादा देखने का मौका लेकर आती थी या कुछ नहीं, और क्या गर्मियों में आप पिकनिक का प्लान बनाते थे, या जब बत्ती गुल हो जाती थी तो गर्मी से निजात पाने के लिए क्या आपने हाथ वाला पंखा झरा है, या अंताक्षरी खेली है अपने साथियों के साथ, कौन सा हुआ आपका पसंदीदा गाना, ये सब हमें बताइए। और साथ ही ये भी बताइए कि नानी और दादी से आपको डांट ज़्यादा पड़ती थी या दुलार ज़्यादा मिलता था, क्योंकि हम पूछना चाह रहे हैं कि आप बचपन में थे शरारती या शरीफ, या बचपन की इन यादों को सुनकर आप भी भरते हैं ठंडी ठंडी आहें, या आपके अंदर अब भी आप अपने इस बचपन को जीते हैं। ये सारी बातें हम तक पहुंचाइए। हमारे बहुत से साथियों ने बहुत से कमेंट्स लिखे हैं, लेकिन हम आपको सुनवाते हैं पहले कार्यक्रम का पहला गीत।

मुकेश की आवाज़ में देवर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और याद किया जा रहा था बचपन को, क्योंकि आज हम भी कुछ याद ही कर रहे हैं क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों की बातें हो रही है। हमारे एक साथी ने लिखा कि सुरीला सफ़र में आज अपने पुराने दिनों को याद करेंगे, बचपन की गलियारों में झांकेंगे। तो आज की इबारत में से याद शब्द तो हमने ले लिया एक गीत में, और कौन से शब्द हो सकते हैं जिनके गीत आज के कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं आप हमें बताइए। हमारे साथी ने बताया, हमने पूछा था कि कौन कौन से और खेल आप खेलते हैं, क्योंकि हमारे इस इबारत में तो सिर्फ दो खेल का नाम है। तो उन्होंने बताया कि पकड़ दांव, लंगड़ी, खो खो, रुमाल दांव, कबड्डी जैसे कई खेल खेला करते थे। वेकेशन में दोस्तों के साथ उनके खेतों में जाते थे, नहाते थे, कच्चे आम, इमली, शहतूत जैसे फल खाने का आनंद भी खूब उठाया है। बचपन अनमोल था, कोई भी कीमत से उसे नहीं खरीदा जा सकता। हमारे एक और साथी ने बताया कि बचपन में पढ़ता था तब दोस्त फिल्म दिखाने हमें काका जी सभी कजन भाई को लेकर लेके गए थे। बचपन में छोटे धर्मेंद्र होते हैं तो पिताजी उन्हें आती जाती रेल दिखाते हैं, गाना बजता है, हम उसे आकाशवाणी गीत कहते थे। फिल्म में फिर कई बार गाना बजता है, जब धर्मेंद्र बड़े हो जाते हैं, रेलगाड़ी में बैठते हैं तब भी गाना बजता है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। और हमारे एक और साथी ने कहा कि बचपन में गर्मियों की छुट्टियां पड़ते ही हम सुबह का खाना लेकर अपने परिवार के साथ खेत पर चले जाते थे। वहीं वटवृक्ष की छांव में बैठकर ठंडी ठंडी हवा के साथ हम खेलते थे, अंताक्षरी खेलते थे, खाना खाते थे, थोड़ी देर सुस्ताकर पेड़ के कैरियां तोड़कर लाते थे। जब गन्ने से गुड़ बनाया जाता था तो हम पहले उसका रस पी लेते थे, कितना सुकून मिलता था, काश वो बचपन के दिन वापस लौट कर आ जाएं। भाई ऐसा तो नहीं हो सकता है, लेकिन आज गीतों के ज़रिए ज़रूर आपको कुछ यादें ताज़ा हो सकती हैं। हमें ये भी बताइए कि क्या आप बचपन को जीते हैं अब भी, क्या पिकनिक वगैरह पर कहीं जाते थे गर्मियों की छुट्टियों में। और ये सारी बातें बताते बताते हमारे साथी जब गर्मियों की बात कर रहे हैं तो वो पसीने की बात बहुत कर रहे हैं कि भाई बड़े पसीना छूटता है, गर्मी बड़ी तपती है। तो एक गीत वैसा ही सुना दें आपको, बताइए कौन से फिल्म का ये गीत है।

0: हुस्न का गुलाम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। गीता दत्त और उषा मंगेशकर की आवाजें, योगेश के बोल, रॉबिन बनर्जी का संगीत। फिलहाल तो हमें नहीं दिखा है कि किसी ने सही जवाब हमें भेजा हो, पर हो सकता है नेटवर्क के इश्यू की वजह से कभी कभी लेट भी जवाब मिल जाता है। हालांकि हमारी एक साथी कहती है कि गर्मी की छुट्टियां यानी ननिहाल या दूर गाँव में सफर पर जाने का मौज मस्ती का सुहाना मौसम। आपने सभी के बचपन वाले से मनभावन यादों को आज हम याद करने वाले हैं और उन्होंने बहुत से गीत भी भेजे हैं जिन शब्दों से आज के कार्यक्रम में गीत हो सकते हैं। अब उन्हें ये देखना होगा कि भाई उनके गीत आज के कार्यक्रम के गीतों के लिस्ट से मैच होते हैं या नहीं। हालांकि हमें लगता है कि कोई ना कोई गीत तो ज़रूर सबकी लिस्ट से मैच हो ही जाएगा। हमारे एक और साथी बता रहे कि हमने पूछा था ना कि नानी और दादी से डांट पड़ती है कि प्यार मिला हमेशा, यानी शरारती थे या शरीफ। तो हमारे एक साथी कह रहे हैं, बहुत से साथियों ने तो कह दिया वो शरीफ थे भाई। और एक और साथी कहते हैं कि दादी नानी से ढेर सारा प्यार और डांट भी मिली। मेरी दादी हमें लेकर सब्जी भाजी लेने जाती, लौटते समय कुछ ना कुछ खाने को पक्का मिलता। और नानी तो जब भी घर आती तो बच्चों के लिए चीज़ी और खिलौने की प्रतीक्षा रहती थी कि इस बार क्या लाएंगी। हमने तो अभी भी उनके खिलौने बहुत संभाल कर रखे हैं। नानी दादी नाना दादाजी सभी बहुत याद आते हैं और हर वर्ष गर्मियों की छुट्टियों में अधिक ही याद आते हैं। हमारे साथी कह रहे हैं कि बचपन में उन्होंने साथियों के साथ गिल्ली डंडा, चुपम चुपाई, पोसंपा, लड्डू कंचे, माफ़ कीजिएगा, लट्टू कंचे, आम डंडी और चोल पुलिस कैरम, ये सारे खेल खेले हैं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि नानी के गांव की बात हो तो गर्मी हालांकि सभी हदें पार कर रही है, लेकिन अगर नानी के घर की बात हो तो सर्दी हो गर्मी हो सभी फुर हो जाती है। पिछले एक दशक से हमारे इंदौर से रेल मार्ग बंद है तो सफ़र में पहले जैसा उतना आनंद नहीं आता, लेकिन वो मज़ा नहीं आता जो रेल की गाड़ी पे यात्रा करते हुए आता है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि दादी माँ बहुत ज़्यादा डरा के रखती थी, हम लोगों को उनकी आँख से डर लगता था, हम लोग बहुत बदमाशी करते थे इसलिए। और नानी भी के घर में नानी को ज़्यादा डांटने का मौका नहीं मिलता था, पर डर डर के हम लोग रहे बचपन में भाई। लेकिन आप साथ में तो बता रहे हैं ना कि इतनी शरारतें करते थे, थोड़ा डराना तो ज़रूरी पड़ता है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि गर्मियों में जब घर से बाहर निकलना बंद हो जाता था तो समय बिताने के लिए हम घरेलू इंडोर खेल खेलते थे, जिसमें चूड़ियों के टुकड़े और इमली के बीज के साथ खेलने वाला खेल जो कि लूडो से मिलता जुलता खेल था। ज़मीन पर चौक से कुछ ब्लॉक ड्रॉ करके चार अलग अलग रंग की चूड़ियों को रख कर इमली के बीज बनते थे हमारे पास और हम इसे खेलते थे। इसे चाई चूड़ी कहते थे स्थानीय भाषा में। भाई इस तरह का खेल हमने भी कुछ खेला है और बड़ा ही आनंद आता है उस खेल को देखकर। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि भाई हम कार्यक्रम में बैडमिंटन वगैरह उन्होंने बहुत खेला है, अंताक्षरी खेली है, ऐसा वो बता रही हैं। बचपन में पकड़म पकड़ाई, बर्फ पानी और लुका छुपी छुपाई बहुत हम खेला करते थे बचपन के टाइम से। हमारे साथियों ने कहा बहुत सारे खेलों के बारे में बता रहे हैं। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जुलस्ती हुई तेज़ गर्मी में रेलगाड़ियों का लंबा सफ़र करीब 1500 किलोमीटर तय करके हम अजमेर से पश्चिम छोर गुजरात के सोमनाथ तीर्थ पर आज दोपहर पहुंच गए हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। तो भाई आपके साथ आपका ये सफ़र सुहाना हो हम यही कह सकते हैं। और एक गीत क्यों ना बताया जाए, क्यों ना सुनाया जाए आपको, क्योंकि बात हो रही है छुट्टियों की, तो ऐसा ही एक गीत आपके लिए भेज रहे हैं। बताइए कौन सी फिल्म का गाना है।
1: तूने मुस्कुरा के देखा मेरी छुट्टी हो गई, तूने मुस्कुरा के देखा मेरी छुट्टी हो गई, मेरी छुट्टी हो गई कि मेरी छुट्टी हो गई, जान किस अदा से, जान किस अदा

0: छुट्टी हो गई,
1: दूसरी ढूंढ ले लुगाई।
0: मेरी छुट्टी हो गई, तूने मुस्कुरा के देखा, मेरी छुट्टी हो गई, मेरी छुट्टी हो गई, मेरी छुट्टी हो गई। जान किस अदा से, जान किस अदा।

0: अपनी हो गई सगाई सबके छुट्टी हो गई, अपनी हो गई सगाई सबके छुट्टी हो गई, तूने मुस्कुरा के देखा मेरी छुट्टी हो गई, मेरी छुट्टी हो गई क्या मेरी छुट्टी हो गई, जाने किस अदा से देखा सबकी छुट्टी हो गई, जाने किस अदा से देखा सबकी छुट्टी हो गई।
1: मोहम्मद रफी और कृष्णा कल्ले की आवाज में आप सुन रहे थे शंकर खान फिल्म का ये गीत। फिल्म का नाम ही हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, बल्कि इससे पहले वाली जो फिल्म का नाम हमने पूछा था हुस्न का गुलाम, वो जवाब भी आपने हमें दिया, आपका जवाब हमें मिल गया। हमारे साथ ही आप सुन रहे हैं मिलकर हम सभी सुरीला सफर, जिसमें आज इस इबारत जो हमने भेजी है जिसमें गर्मियों की छुट्टियों की बातें हैं और दादी नानी के घर की बातें हैं, वो सारी बातें हम कर रहे हैं, वो अनुभव हम आपस में बांट रहे हैं और साथ ही उनमें कुछ शब्द हैं जिनसे गीत आपको सुनवा रहे हैं और आपकी लिस्ट और हमारी लिस्ट मैच हो जाए इसका तो बड़ा ख्याल रखा जा रहा है। देखते हैं कहां कहां तक हमारी और आपकी लिस्ट मिलती है। हमारे साथी कहते हैं कि नानी दादी की संगत तो नसीब नहीं हुई, मगर ये कमी अपने नातिन और पोतों को दुलार करके हम पूरी कर रहे हैं। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि आज भी बचपन में जीता हूँ, एरोप्लेन की आवाज़ आती है तो ऊपर देखता हूँ, रेलवे स्टेशन से गुजरती गाड़ी के डिब्बे गिनता हूँ, बच्चों के साथ खेल खेल में जुड़ जाता हूँ। एक साथी ने बताया कि बचपन में पकड़म पकड़ाई, बर्फ पानी और लुका छुपी खेला करते थे। और हमारे एक साथी बोल रहे हैं कि उन्होंने बताया कि छुपन छुपाई, कोकोनट, रंग पूछने वाला खेल, चोर सिपाही, खो खो आदि खेलते थे। एक और साथी ने बताया कि दादी घर में सब मोहल्ले के बच्चे लड़कियां मिलकर 7x7 स्टोन्स वाला गेम होता था, जिसको बॉल से गिरा के वापस से लगाना होता था, ये बहुत खेला करते थे हम सड़क पर। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि गर्मियों के मौसम में अपने दोस्तों के साथ सितोलिया, कबड्डी, लुका छुपी, मार दड़ी, क्रिकेट, फुटबॉल और वॉलीबॉल जैसे अनेक प्रकार के खेल खेले हैं। और हाथ से जलने वाले पंखे याद करें हमारे एक साथी जो उसके बारे में बता रही हैं। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि जब छोटे थे तो नानी के घर में ही रहा करते

थे। और एक और साथी कह रहे हैं कि नानी के यहाँ तो साल में 10-15 दिन जाते थे, लेकिन दादी तो हमेशा साथ रहती थी, बहुत अच्छी थी, हम उन्हें हाथ से खाना खिलाते थे, उनको बहुत मिस करते हैं। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जाए, उसके दिल के एक कोने में बचपना हमेशा जिंदा रहता है। कुछ लोग उम्र के साथ उसे छिपा देते हैं, पर कुछ लोग बचपना खुलकर जीते हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं, तनाव से दूर रहते हैं। अब दादी और नानी की बात हो गई है, तो उन पर जो उनके संबंधित जो गीत हैं वो सुनवा दिए जाएं। भाई दादी वाला गीत तो हमने चुन लिया है, हो सकता है आपके लिस्ट से वो मैच करे, लेकिन नानी पर आधारित दो गीत हमारे पास हैं। अब आपको ये बताना है कि नानी की नाव आज चलेगी या नानी की मोरनी को मोरों के साथ भेजा जाए, तो आप हमें बताइए। तब तक हम दादी वाला गीत आपको सुनवा रहे हैं, किस फिल्म का ये गीत है ये भी बताइए।

0: घराना फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और फिल्म का नाम ही हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही नाम बताया। हमारे साथी कह रहे हैं कि आज की इबारत प्रासंगिक और रोचक है और बचपन की स्वर्णिम यादों संग पारिवारिक मनोरंजन के विभिन्न आयाम को दर्शाती है। रेलगाड़ी का सफर हो या सैर सपाटे का जिक्र, बच्चे से लेकर हम उम्र वालों को रोमांचित करता है। इतनी रोमांच होता है, गर्मियों का कोई असर इस सफर को निरुत्साहित नहीं कर पाता। गांव की गलियों में वो गिल्ली डंडा, लट्टू खेलना, चोर सिपाही खेल याद आते हैं तो आंखें सजल हो जाती हैं। और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें याद की। हमारे एक साथी कहते हैं कि हम झरने के पास समंदर के किनारे पश्चिमी घाट के सैरगाहों पर जहाँ सुकून और शांति दोनों मिलते हैं वहाँ जाएँ। और गर्मी की छुट्टियाँ हो रही हैं तो बच्चों को नानी के घर भेजने के बजाय सबको सिक्किम जैसी जगहों पर घुमाने ले चलें, जहाँ के एडवेंचर देख सब गदगद हो जाएंगे। पहाड़ों पर मिलने वाला गर्म सूप सबको पसंद आएगा। भाई एक अच्छा आइडिया तो है, लेकिन नानी के घर की बराबरी तो कोई भी जगह नहीं कर सकती। हमारे एक और साथी कहने की छुट्टियों में दादी और नानी के घर जाना बच्चों वाला सभी बच्चों को पसंद है। और हम नानी को बंगाल टाइगर बोलते थे क्योंकि हमारी नानी किसी से भी डरती नहीं थी। बंदर को भगाना हो, चिड़िया पकड़नी हो, चिड़िया को पकड़कर उस पर कलर लगा देती थी। हम लोग भी नानी के यहाँ जाने पर आम के पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ते, जब माली आता तो छोटा पेड़ होने के कारण हम पेड़ से कूद जाते। कभी कभी तो चोट भी लगती थी। और बहुत सारे खेल थे, कागज़ पर चोर पुलिस खेलना, कैरम बोर्ड खेलना, कच्चे गिट्टे बहुत खेलते थे, हार जाने पर कच्चे और गिट्टे फेंक भी देते थे। तो बचपन को असल में इन्होंने याद कर लिया। हमारे एक और साथी कहने कि बचपन में हम चक्का चलाते थे और रेडियो जब बजता था तो ऐसा महसूस होता था कि इसके भीतर बैठे बैठे लोग बोल रहे हैं। और हमें आज भी अपना बचपन याद आता है। हमारे एक और साथी बता रहे कि गर्मियों का मतलब फ्रिज में रखी ठंडी ठंडी पेय पदार्थ, मिट्टी के घड़े का पानी, ढेर सारे रसीले आम, रात में छत पर पानी छिड़क कर बिस्तर लगाना और तारों को गिनते हुए सो जाना। ये सुकून आज के एयर कंडीशन में भी नहीं मिलता। जैसे कि आपने जिक्र किया, गिल्ली डंडा, छुपन छुपाई, पूरा मोहल्ला ही हमारा मैदान होता था। और हम दोस्त के घर का दरवाज़ा, हर दोस्त के घर का दरवाज़ा हमारे लिए हमेशा खुला रहता। बचपन की यादें वाकई किसी मीठे नरम फाहे की तरह हैं और जो ज़िंदगी की भागदौड़ में हमें थोड़ी ठंडक दे जाती है। हमारे एक और साथी बता रहे कि सफ़र में सबसे मज़ा आता था। ऐसे तो गार्जियन कुछ नहीं खरीदेंगे, पर ट्रेन में ये डिब्बे में दूध का मलाई, बर्फ, लेमन जूस, ककड़ी, मूँगफली बहुत बेचने वाले आते थे और हम खूब खरीदते थे और खरीदवाते थे, खाते थे। ऐसा तो ज़रूर होता था और उन्हें भी मन कर जाता था ना लंबे सफ़र में कुछ खाने का। हालांकि हमने आपसे पूछा था कि नानी पर दो गाने हमारे पास हैं, तो नानी की नाव चलाएं या नानी की मोरनी की बात होगी, ये हमने आपसे पूछा था। हमारे साथियों ने क्या कहा ये तो हमने देख ही लिया, लेकिन हम सुनवा रहे हैं आपको ये गीत। बताइए किस फिल्म का है।
1: नाव चली नानी की नाव चली, नीना की नानी की नाव चली लंबे सफर पे, आओ चली भागो चली जागो चली, आओ आओ आओ आओ, ये कैसे चले लाओ पैसे चले, खड़े हो जाओ तीन तीन की लाइन में खड़े हो जाओ, लाइन में खड़े हो जाओ सब खड़े, ला ला ला ला ला, लाइन में लाइन में लाइन में लाइन में लाइन में लाइन में, तुम भी खड़ी हो जाओ, जा जा जा जा उधर लाइन में, हाँ तुम भी आओ ना।
2: मेरे पास पैसा नहीं है।
1: पैसे नहीं है तो ये लो, लाओ पैसे और लाइन में खड़ी हो जाओ, जाओ पहले वो तीन फिर तीन फिर दूसरे तीन, तुम भी आओ पहले लाइन में चले आओ। अब शुरू करते हैं, एक दो,
3: नाव चली नानी की नाव चली, नीना की नानी की नाव चली लंबे सफर पे, सामान घर से निकाले गए, नानी के घर से निकाले गए, इधर से उधर से निकाले गए और नानी की नाव में डाले गए।
4: क्या डाले गए?
3: एक छड़ी, एक घड़ी, एक झाड़ू, एक लाड़ू, एक संदूक, एक बंदूक, एक सलवार, एक तलवार, एक घोड़े की जीन, एक ढोलक, एक बीन, एक घोड़े की नाल, एक धीवर का जाल, एक लहसुन एक आलू, एक तोता, एक भालू, एक डोरा, एक ड्री, एक बोरा, एक बोरी, एक डंडा, एक झंडा, एक हंडा, एक अंडा, एक केला, एक आम, एक पक्का, एक कच्चा, और टोकरी में एक बिल्ली का बच्चा। फिर एक मगर ने पीछा किया, नानी की नाव का पीछा किया, नीना की नानी की नाव का पीछा किया।
4: क्या हुआ?
3: चुपके से पीछे से ऊपर से नीचे से एक एक सामान खींच लिया, एक बिल्ली का बच्चा, एक केला, एक आम, एक पक्का, एक कच्चा, एक अंडा, एक हंडा, एक झंडा, एक डंडा, एक बोरी, एक बोरा, एक डोरी, एक डोरा, एक तोता, एक भालू, एक लहसुन, एक आलू, एक घीवर का जाल, एक घोड़े की नाल, एक ढोलक, एक दीन, एक घोड़े की जीन, एक तलवार, एक सलवार, एक बंदूक, एक बंदूक, एक लाडू, एक झाड़ू, एक झड़ी, एक घड़ी।
4: मगर नानी क्या कर रही थी?
1: नानी थी बेचारी बुढ़ी बहरी, नीना की नानी थी बुढ़ी बहरी, नानी की नींद थी इतनी गहरी, इतनी गहरी।
4: कितनी गहरी?
1: नदिया से गहरी, दिन दोपहरी, रात की रानी, ठंडा पानी, गरम मसाला, पेट में ताला, 16:30, 15:15, दूना 30, 43, 44, चौके 60, 75, 76, 90, 87, 95, 98, 20, नंबर 35, गले में रस्सा।
0: आशीर्वाद फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, अशोक कुमार की आवाज, गुलजार के बोल, बसंत देसाई का संगीत। कार्यक्रम सुरीला सफर विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। हमारे एक साथी बता रही हैं कि मेरा ननिहाल तो लोकल ही था, पर मेरी तीन बुआ बाहर रह करती थी, गर्मी की छुट्टियों में सब बच्चों सहित आते थे। तब हम लोग चिट्ठी लिखकर पता करते थे कि

कब वे आ रहे हैं। खूब प्लानिंग करते थे, मोहल्ले के बच्चों के साथ मिलकर खूब मस्ती करते थे, तरह तरह के खेल खेलते थे, सुबह सब मिलकर मॉर्निंग वॉक पर जाते। एक घर के सहायक थे, हम लोगों के साथ रहते थे, मेरे पिताजी वकील थे और कोर्ट में भी 2 महीने की छुट्टी होती थी, उनका ऑफिस भी खाली रहता था जो घर के पास ही था। दिन में बाहर धूप होने के कारण सब वहीं इकट्ठा होते थे, फिर खूब धमाक चौकड़ी मचती थी, लड़ते भिड़ते रोते हंसते सब अपने अपनी समस्या का समाधान कर लेते थे। वो दिन बहुत याद आते हैं, वाकई वो दिन बहुत याद आते हैं। जब छोटे रहते हैं तो कुछ इतनी ज़्यादा चीज़ें सोचते नहीं हैं, अभी लड़ाई होती है और अभी मिल जाते हैं और अपने मन में कोई बातें इस तरह से नहीं पालते। हालांकि हमने नानी के बारे में जब पूछा कि कौन सा गीत सुनाया जाए तो दोनों ही गीतों की फरमाइश आई और कहा गया कि वे दोनों ही गीत सुनने चाहिए। आशीर्वाद फिल्म का गीत आपने सुना, सही जवाब हमारे साथी ने दिया और हमारे साथी कह रहे हैं कि बात तो समय की है, जब हम अपने दोस्तों को घर से बाहर खेलने के लिए बुलाया करते थे उसके भी कोड वर्ड हुआ करते थे, सीटी बजाना, कोयल की आवाज़, टक टक की आवाज़ निकालना आदि, वो सब आवाज़ मेरे अंदर बैठी है बैठा मेरा दोस्त सुन लिया करते थे और तुरंत बाहर खेलने आ जाया करते थे। तो इस तरह से होता था ये काम कि किस तरह से, क्योंकि घर से बाहर निकलने की मनाही होती थी धूप में। हाँ, हालांकि नानी की इतनी बातें हो रही हैं तो हमने सोचा कि क्यों ना दोनों ही गीत आपको सुनवा दिया जाए। तो ये सुनवा रहे हैं दूसरा गीत, बताइए किस फिल्म का ये गीत है। और इसी नाम से एक और फिल्म बनी, उसमें भी बच्चों का एक गीत है, अगर आप वो भी बता सकें तो क्या ही अच्छा होगा।

मासूम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे रानू मुखर्जी की आवाज़ में। और हमने ये पढ़ा, हमारे साथियों ने कमेंट किया हुआ था कि भाई नानी का एक गीत तो सुनवा दिया लेकिन दूसरा गीत आपने नहीं सुनवाया। और हमारे बहुत से साथी तो रूठने का प्लान बना रहे थे लेकिन ये अच्छा हुआ कि उनका प्लान नहीं बन पाया, क्योंकि छुट्टियों में नानी की बातें दो बार ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता। वहीं हमारे साथी ने बहुत सारी बातें कह रहे हैं और कह रहे हैं कि दूसरे गीतों की फरमाइश भी कर रहे हैं, लेकिन देखिए क्योंकि शब्द जो हों उनसे आधारित गीत ही हम सुनवा सकते हैं। हमारे एक और साथी ने बताया कि परिवार की बात चल रही है तो भाभी जी को ट्रेन से बुलवा लीजिए और मामा जी को रॉकेट पर घूमने चलते हैं। भाई दोनों काम करेंगे तो नानी जी के घर पे कौन रहेगा, तो इसलिए अभी इस कार्यक्रम में हम बता रहे हैं कि हमारे एक साथी कह रही कि आज जीवन का संध्या समय सुनहरे बचपन की मासूम अलहड़ बातें याद करने से सुखमय हो जाता है। प्रदूषण रहित सृष्टि का सानिध्य, नदी में नहाना, मछलियाँ देखना, नीम के पेड़ पर बंधे झूले पर झूलना, अलग अलग तरह के पशु पक्षी देखना, विशाल वटवृक्ष की छाया में नानी के हाथ का घर का बना मक्खन और रोटी का नाश्ता, अमराई के आम खाते खाते सभी रिश्तेदार भाई बहनों के मेले में छुट्टियां कैसे गुजर जाया करती थी पता ही नहीं चलता था। वाकई वो दिन किस तरह से गुजरते थे हमें पता नहीं चलता था, और शायद इस वजह से भी गर्मियों की जो छुट्टियां हुआ करती थी वो बड़ी छोटी लगती थी। हमारे साथियों ने बताया कि एक दूसरा जो मासूम फिल्म है वो भी है, लेकिन हमारे साथी थोड़ा ज़्यादा दोनों उन्होंने गीत पसंद किए क्योंकि मासूम नाम से तो तीन फिल्में बनी हैं। और हमारे एक साथी ने बताया कि मासूम में लकड़ी की काठी वाला गीत है। और एक और साथी ने बताया छोटा बच्चा जान के कोई ना आंख दिखाना रे, ये भी मासूम फिल्म का ही गीत है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कांच का कंचा, माचिस की अलग अलग छाप वाली, लोहे का पहिए को सरिये से चलाना, हाथों में चलने वाली तार की दो पहियों वाली से जुड़ा हुआ ऊपर तक छोटा स्ट्रिंग वाली हाथों से चलाकर तार की गाड़ी मैंने अपने हाथ से बनाई थी। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आशीर्वाद फिल्म का गीत आपने सुनाया, बिल्कुल सही आपने बताया, और इसके बाद मासूम फिल्म का गीत भी हम सुन चुके हैं। हमारे एक और साथी बता रहे हैं कि घर में ही खेलने के लिए अंताक्षरी, लूडो, चोर सिपाही, वजीर बादशाह, कैरम, 3-2-5 आदि खेलों से नाना नानी, मामा मामी, मौसी सभी दिल बहला लेते थे। शाम को 4 बजने की प्रतीक्षा रहती थी। एक और साथी कहने कि नानी की डांट तो नहीं पड़ी पर उनका वो 54, 58 और 1 रुपये वाला बड़ा याद आता है कि जाओ कुछ लेकर खाना, और वो फ्रॉक के लिए उनका कपड़ा लेकर आना, अच्छी तरह से सिलवाना मम्मी से। दादी भी नहीं डांटती थी, प्यार ही ज़्यादा पाया। हाँ, कभी कभी हम गीले पोछे पर चलते और भाई बहन लड़ते तो ज़रूर कोई ना कोई पीटता। तो इन्होंने डांट तो नहीं खाई, सीधा पिटाई खाई है, लेकिन काम भी कुछ ऐसा ही रहा है तो इसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते। बस हम कर सकते हैं एक काम कि कुछ खेलों को याद कर लें। चलिए सुनाते हैं आपको ये खेल से जुड़ा गीत। हमें बताइए कि किसने लिखा है ये गीत और किस फिल्म से हमने लिया।

ड्रीम गर्ल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, जिसे लिखा आनंद बख्शी ने, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। फिल्म का नाम आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे एक साथी कह रहे हैं, नहीं लेकिन इससे पहले आपसे एक सवाल पूछ लें। देखिए इस गीत में कई बार ये कहा गया कि अच्छी तरह से किया नहीं गया, जब वो छुपन छुपाई खेल रहे हैं तो अच्छी तरह से आंख बंद नहीं की और चुपचाप देख लिया गया, वहीं जब उसे ढूंढ लिया जाता है तो भी कहा जा रहा है कि हम इस बात को नहीं मानते। तो इस तरह का खेल में कौन किया करता था? कि आप में से कोई ऐसा है जो ये किया करता था, खेल में एक बार पकड़े जाने के बाद कहता था कि हम नहीं मान रहे या हम नहीं खेल रहे और इस तरह से रूठ जाता था, या घर के बड़ों को बुला के ले आता था कि भाई देखिए ये हमारे साथ इस तरह का काम कर रहे, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं। तो क्या आप ऐसा करते थे, थोड़ी बड़ी बेईमानी करते थे खेल में, हमें बताइए। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बचपन में हमारे मामा लोगों ने कॉमिक्स बहुत सारी इकट्ठी करके उनको बाइंड करके रखा था, तो दोपहर में तो कहीं निकलने का सवाल ही नहीं था, हम लोग तो बस उसे ही पढ़ते रहते थे। हमारे एक साथी याद कर रहे हैं अपनी नानी को, जो एक पैसों की थैली अपनी कमर में खोंस कर रखती थी। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हाथ का पंखा भी झला है, पंखे का फ्रेम आता था, उसे हमने क्रोशे से बनाया है। गर्मी की छुट्टियों में ननिहाल में जब लाइट नहीं थी तो गर्मी लगने पर हम दालान में लगे नीम के पेड़ पर चढ़कर बैठ जाते थे और अपनी हमउम्र मौसियों के साथ बड़े मजे करते थे। हमारे एक साथी ने सत्य घटना बताई कि बरसों पहले रेलवे स्टेशन पर पानी पीने के लिए एक छोटी सी रूप में बड़े मटके और लंबी मिट्टी की पानी का बर्तन, जिसे कोठी गुजरात में कहा करते हैं, कोई बुजुर्ग बैठे मुसाफिरों को गिलास में पानी पिलाते थे, कोई 2-3-5-10 पैसा देते थे, निःशुल्क रेलवे की तरफ से व्यवस्था होती थी। स्टेशन में छोटी आधी गोल टंकी होती थी, ऊपर पानी का नल को दबाकर खड़े खड़े पानी पी सकते थे, तो नल के ऊपर का गोला उसे दबाते थे तो पानी आता था। मैंने बचपन में देखा था, एक बार एक बुजुर्ग दादा पानी पी रहे थे तो उनकी तरफ छिप गई और फिर वो बोल रहे थे कि बस अब नहीं, लेकिन वो पानी बंद ही नहीं हो रहा था। तो उसके बाद उन्हें हमने बताया कि गोला छोड़ेंगे तो पानी रुकता है, तो किसी ने आवाज़ दी, दादा आप नल की वो गोले को छोड़ दीजिए तभी पानी अपने आप रुक जाएगा। और पुराने ज़माने में बुज़ुर्ग लोग ऐसे भोले भाले होते थे, ऐसा हमारे साथी ने बताया। हमारे एक और साथी बता रहे हैं कि रात की छत, खुले आसमान के नीचे चारपाइयों पर लेटना, तारों को गिनना, सूरज ढलते ही मैदान आबाद हो जाते थे, ना कोई होमवर्क की चिंता, ना सुबह जल्दी उठने का डर, बस गलियों में क्रिकेट, पकड़ कड़ाई या गिल्ली डंडा, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी वाली बात तो अपनी जगह है, लेकिन वो धूप में तपती दोपहरी वाली मस्ती भी एक अलग ही किस्म का सुकून देती है। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रही हैं कि गर्मी की छुट्टी का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहता था, क्योंकि नानी के घर जाते थे, वो भी रेलगाड़ी से, उस पर भी यदि विंडो सीट मिल गई तो फिर तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती थी, लेकिन भाई बहनों से लड़ाई भी होती थी और फिर बारी बारी से सब बैठते थे, सैर सपाटा, पिकनिक, बाग बगीचा, सब कुछ जैसे पीछे छूट गया, क्योंकि अब तो स्वरूप भी बदल गया बहुत सारी चीज़ों का। और एक साथी कहती हैं कि गर्मी की छुट्टी का और रेलगाड़ी का बहुत पुराना नाता है, बचपन में जब गर्मी की छुट्टी होती थी तो हम कैसे खुश हो जाते थे कि अब नानी दादी के गाँव जाने को मिलेगा, वे दिन सैर सपाटे के थे, अब कहाँ चले गए पता नहीं चला। और हमारे साथियों ने बहुत से गीतों के बारे में लिखा है कि कौन कौन से गीत हो सकते हैं, आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आपके लिस्ट में से कितने गीत आज के इस कार्यक्रम में अब तक शामिल हुए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं ये गीत, बताइए किसकी आवाज़ें हैं इसमें।

सुजाता फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और गीता दत्त की आवाजों में। हमारे साथी कह रहे कि पहले के समय में फिल्म देखकर जो आते थे उसकी स्टोरी सुनाने का भी तो रिवाज था। हाँ, ये रिवाज तब भी बना हुआ है। और हमारे एक और साथी कह रहे कि मेरे गानों की लिस्ट में से 6 गाने बच चुके हैं, किसी की लिस्ट में 4 में से 2 गाने शामिल हो चुके हैं, तो किसी की लिस्ट में से कुछ गाने शामिल हुए हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि जो आगे के गाने आएंगे वो उनकी लिस्ट के गानों में से ही होंगे। हमारे एक साथी कह रहे कि गर्मी की छुट्टियां बचपन की सबसे मीठी यादों का खजाना होती है। जैसे ही छुट्टियां शुरू होती मन में नानी के घर जाने की खुशी उमड़ पड़ती थी। रेलगाड़ी का सफर अपने आप में एक उत्सव सा लगता था। खिड़की से भागते पेड़, खेत, छोटे छोटे स्टेशन और कुल्हड़ वाली चाय आज भी यादों में मुस्कान भर देती है। आज समय बदल गया है लेकिन गर्मी की छुट्टियों के वी मधुर स्मृतियां आज भी मन को ठंडी छांव जैसा सुकून देती है। वहीं हमारे एक साथी ने लिखा है कि आजकल के बच्चे मोबाइल के मिसयूज में लगे रहते हैं, पूरे टाइम स्क्रीन में लगे रहते हैं, वो तो ये सारी गर्मी की छुट्टियों का आनंद नहीं लेते। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये भी सोचना होगा कि इसमें हमारी भी तो कोई गलती है, क्योंकि अगर हम उन्हें ये नहीं बताएंगे कि क्या क्या किया जा सकता है तो वो तो जो सामने आएगा वही सीखेंगे। वही हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जब छोटे थे तब वेकेशन में नाना नानी या दादा दादी के घर जाते थे, ट्रेन में सबसे पहले खिड़की वाली सीट को हासिल कर लेते थे। पेड़ को पीछे की ओर जाते देखने में मजा आता था। मन में सवाल ये भी उठता था कि सूरज गाड़ी के साथ क्यों और कैसे आता जाता है। ट्रेन में खाने पीने की चीज लाने वाले सेल्स मैन को देख कर लालच भी होता था, पर असली मजा तो घर से लाए हुए थेपले और अचार में ही आती थी। अरे, आप जब ट्रेन का सफर करते थे तो क्या लेकर जाते थे अपने साथ खाने के लिए, ये हमें बताइए। तब तक हम आपको ले चलते हैं ट्रेन के सफर पर। बताइए किस फिल्म का ये गीत।

परिणीता फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम हमने आपसे पूछा, आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे साथी कह रहे हैं कि खेलों में एक बेईमान का होना एक अलग ही मजा देता था, वाद विवाद ना हो तो क्या बचपना। वही हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कई बार बहुत सी मतलब बेईमानी तो थोड़ी बहुत करते थे, लेकिन बाद में कह दिया करते थे कि उन्होंने झूठ बोला है। तो इस तरह की मासूम बेईमानियाँ होती थी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हम लोग घर से चावल, भुजिया, रोटी, आलू की भुजिया, गुजिया, ठेकुआ, चिप्स, बहुत सारा खाना लेके जाते थे, पेपर ले जाते थे, पानी ले जाते थे। भाई जो जाते थे इतनी खुशी होती थी, पर जब वापस आना होता था तो बड़ा दुख होता था। लेकिन क्या करें, उसके लिए भी तैयारियां होती थी नानी की तरफ से या दादी की तरफ से, जहां भी हम जाते थे। और मन में कुछ टीस की भाव होते थे, क्योंकि अगर गाड़ी हो सवेरे की तो जाना होता था। चलिए सुनते हैं वो गीत, बताइए किस फिल्म का।

लैड साहब फिल्म का ये गीत आपने सुना, और जैसा इसमें कहा गया भी, समय जब होता है तो जाना ही होता है, तो छुट्टियां ख़त्म होती है तो हम भी लौटते हैं, और कार्यक्रम का वक्त भी हो चुका है तो हमें भी इस कार्यक्रम से लेनी होगी इजाज़त। आप सभी बने रहिए विविध भारती के साथ, क्योंकि विविध भारती का सुरीला सफ़र जारी रहता है 24 घंटे।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। वंदे मातरम इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 28वीं कड़ी।

बंग भंग विरोधी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पहलू था स्वदेशी जागरण, और इस मुहिम में युवा वर्ग के प्रेरणा स्थान थे शिक्षाविद एवं समाज सुधारक के रूप में ख्याति प्राप्त अश्विनी कुमार दत्त। इस आंदोलन में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। अश्विनी कुमार जी के कहने पर कवि हृदय के यज्ञेश्वर नामक एक दुकानदार ने एक अनोखा ही जनजागरण शुरू किया। पहाड़ी शैली में अलग अलग गीत रचकर वे गाया करते थे। गांव गांव घूमकर पूरे बंगाल को वे जागृत करने लगे। अश्विनी कुमार दत्त जी ने उन्हें एक नया नाम दिया, चारण मुकुंद दास। मुकुंद दास गांव गांव जाकर छोटे छोटे गली मोहल्लों में देहात के बीच बनी चौपाल पर, नदियों के घाट पर अपने गीत प्रस्तुत कर इस स्वदेशी आंदोलन का संदेश लोगों तक पहुंचा।

समय में चारण मुकुंद दास बंगाल के एक लोकप्रिय व्यक्ति बन गए। ग्रामीण इलाकों में रहने वाली महिलाएं जो कभी घर के बाहर भी नहीं निकलती थीं, उन्हें भी चारण मुकुंद दास की कविताओं ने जागृत किया। स्वदेशी चूड़ियां पहनने का आह्वान करते हुए मुकुंद दास जी कहते

हे बंगाली स्त्रियों, तुम ये कांच की चूड़ियां कभी इस्तेमाल न करो। तुम सब गृह लक्ष्मी हो, धर्म साक्षी हो, ये सारी दुनिया जानती है। कांच की माया को छोड़ शंख के आभूषण पहनकर सौभाग्य चिन्ह धारण

0: ये वो समय था जब स्वदेशी का प्रचार अपने चरम पर था। मातृ भंडार अर्थात मायेर वस्त्र, इस नाम से स्वदेशी वस्त्रों का निर्माण होने लगा। मुंबई और कर्णावती में 20 नई कपड़ा मिलें तथा 15 स्वदेशी बैंक शुरू किए गए। बंगाल में विदेशी वस्त्रों की बिक्री एक ही साल में 77,000 से घटकर 10,000 पर आ गई।
1: वंदे मातरम की अग्नि ब्रिटिश सरकार महसूस करने लगी। 7 अगस्त को हुई सभा के अवसर पर इस गर्जना का अवतरण हुआ और मात्र 3 महीनों में इस घोषणा ने ब्रिटिश सत्ता के मन में डर पैदा कर दिया। ट्रिब्यून नामक समाचार पत्र ने लिखा, वंदे मातरम ये शब्द लोकप्रिय हो गए हैं। माता का वंदन, इतना ही उसका अर्थ है, उसमें कोई और भयंकर अर्थ है ही नहीं। फिर इन शब्दों पर पाबंदी क्यों लगाई जा रही है? यहां पढ़े लिखे लोग एक दूसरे से मिलते हैं, वंदे मातरम कहकर अभिवादन करते हैं। पूरे हिंदुस्तान के लोगों के मुख से निकलने वाले वंदे मातरम शब्दों पर रोक लगाने के लिए सरकार को कितने सिपाही और अधिकारियों की आवश्यकता होगी? बंगाल के सभी लोगों को पूरे हिंदुस्तान की जनता का समर्थन

0: इस्तीफा देना पड़ा। भारत के सेनापति बनकर आए लॉर्ड किचनर के साथ कर्जन के बार बार मतभेद होने लगे। राजनीतिक फैसले लेते समय वॉइसरॉय की कार्यकारी परिषद में सेनाधिकारियों का स्थान नहीं होना चाहिए, ऐसा लॉर्ड कर्जन ने ब्रिटिश सरकार को बताया। लेकिन लंदन की सत्ता किचनर के पक्ष में होने के कारण लॉर्ड कर्जन ने वॉइसरॉय पद से इस्तीफा दे दिया। एक तरह से यह बंग भंग विरोधी आंदोलन की ही जीत थी।
1: लॉर्ड कर्जन की जगह लॉर्ड मिंटो की नियुक्ति हुई, पर उन्होंने भी बंगाल के विभाजन को मान्यता दी। बंगाल में दमन चक्र वैसे ही चलता रहा। दिसंबर 1905 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए और वापस भी चले गए। आम जनता के स्तर पर उनका बहुत बड़ा स्वागत नहीं हुआ। 1976 में वंदे मातरम की शताब्दी मनाने की पहल करने वाले वंदे मातरम के अध्ययनकर्ता विश्वनाथ मुखर्जी इन सभी घटनाओं के बारे में लिखते हैं।
2: कांग्रेस का जन्म होने के काफी पहले, जब वंदे मातरम गीत का जन्म नहीं हुआ था, उन दिनों सन 1872 में बंग दर्शन पत्रिका के संपादकीय में बंकिम बाबू ने लिखा था, भारतवर्ष की विभिन्न जातियां जब तक एक मत, एक परामर्श और एकोद्योगी नहीं होंगी, तब तक भारतवर्ष की उन्नति नहीं होगी।
0: बंकिम चंद्र जी का यह कथन सच होने जा रहा था। अलग अलग प्रांतों के निवासी एक होकर ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए कटिबद्ध हो रहे थे। वंदे मातरम गीत का कितना प्रभाव पड़ा था, इसका उदाहरण श्री मोतीलाल नेहरू के एक पत्र से मिलता है, जो उन्होंने 1905 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के नाम लिखा था।
2: हम ब्रिटिश भारत के इतिहास की सबसे अधिक संकटपूर्ण अवधि से गुजर रहे हैं। इलाहाबाद में भी वंदे मातरम आम अभिवादन बन गया है। यदि अभियान चलता रहा तो यहां लौटने पर भारत को जब तुम गए थे उससे बिल्कुल बदला हुआ पाओगे।
0: यह सारा प्रभाव था वंदे मातरम इन दो शब्दों का।
3: आसे तु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

0: वंदे मातरम एक जय घोष। इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 28वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर और मंदाकिनी जोशी, सहभागी कलाकार यूनुस खान, तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबू धाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता का आश्वासन दिया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
1: किसी भी रूप में स्वीकार करना ही है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विनम्रता का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने में आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
0: राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद को भाई कहकर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने चुनौतीपूर्ण समय में यूएई नेतृत्व के लचीलेपन की प्रशंसा की। श्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और यूरोप के 6 दिन के दौरे के पहले चरण में आज अबू धाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया।

0: 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

वेरी नौशाद का संगीत इस गीत में आपने सुना। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में शकील बदायूनी के बोल नौशाद का संगीत फिल्म उड़न खटोला के इस गीत में।

0: जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म का गीत आपने सुना मजरूह सुल्तानपुरी के बोल ओपी नैयर की तर्ज आवाज गीता दत्त मोहम्मद रफी की। और अगर आपको पुराने गाने सुनते सुनते नए गाने सुनने का मन करता है और नए गाने सुनते सुनते आप पुराने गाने सुनना चाहते हैं तो आपके लिए भी है एक कार्यक्रम हमारे पास। शाम 5:30 पर रोजाना आप सुन सकते हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने, जिनमें पुराने और नए गानों को मिलाकर ही तैयार की जाती है लिस्ट गानों की। तो आप सुनिएगा ये कार्यक्रम आज भी और रोजाना। तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का ये अगला गाना।

0: ओपी नैयर के संगीत से सजा ये गीत आप सुन रहे थे, जिसे लिखा जानिसार अख्तर ने, गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में आपने सुना सीआईडी फिल्म का ये गीत। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कौन सा कार्यक्रम कब आएगा विविध भारती पर, इसके लिए आपको सीआईडी की तरह पड़ताल करनी पड़ेगी, तो बिल्कुल भी नहीं, आप सुबह और शाम 6:30 से सुन सकते हैं कार्यक्रम विवरण झरोखा के अंतर्गत। सुबह के झरोखा में बताए जाते हैं दिन भर के प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण, वहीं शाम के झरोखा में आप सुन सकते हैं शेष कार्यक्रमों के साथ साथ अगले दिन के सभी मुख्य कार्यक्रमों का विवरण भी। और अब हम दे देते हैं आपको विवरण अगले गीत का, जो है बारिश फिल्म से आशा भोसले और सी रामचंद्र की आवाजें, राजेंद्र कृष्ण के बोल, सी रामचंद्र का संगीत।
1: जो सीने में दिल होता तो फिर हम तुम पे क्यों मरते, हाँ?

जैसा घटिया काम करते भी तो क्यों करते। हरे हरे डॉज गाड़ी के इंजन की कसम,

रोजी है राफेरी, ये किसने दिखा दी, कलकत्ता तुमसे आगरा और बम्बई होगा।

0: शादी।
1: अरे हेलो हेलो हेलो।
2: राजा मेहदी अली खां का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे। नाशाद का संगीत, आशा भोसले की आवाज, बड़ा भाई फिल्म का ये गीत आपने सुना। रोजाना शाम को 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत सजते हैं अलग अलग कार्यक्रम के रंग, और आज आप सुन सकते हैं गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता इस श्रृंखला के अंतर्गत 7:45 से। और इस वक्त सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, और आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का की तर्ज है। न्यू दिल्ली फिल्म से सुनिए ये गीत।

0: इसके साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा, मुझे दीजिए इजाजत।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम। हेलो सहेली के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: सखियों, भावनाएं जब शब्दों का हाथ थामती हैं, तब रिश्तों में अपनापन खिल उठता है। जब दिल बोलता है तो शब्द केवल आवाज नहीं, आत्मा का संगीत बन जाते हैं, है ना? अपने परिजनों से दिल की बात साझा करना मानो बंद खिड़की से ताजी हवा का भीतर आना है। और विविध भारती भी अपना एक बड़ा पूरा परिवार है, तो आज अपनी सखियों से बातें करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद है मैं आपकी अपनी सहेली सोनाली पाठक। और इस चिलचिलाती गर्मी में आपके फोन कॉल्स देंगे हमें सुखद एहसास, तो जल्दी से फोन घुमाइए, देखते हैं कौन सी सखी का पहला फोन आता है। और ये बजी घंटी और ये आ गया पहला फोन कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: कौन सहेली बात कर रही हैं आप?
1: मैं विनीता पाठक बोल रही हूँ, रायपुर छत्तीसगढ़ से। सोनाली जी, मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी और अब जाके मेरा नंबर लगा है।
0: बहुत बहुत बधाई। और पहली बार आपका कॉल लगा है?
1: जी जी जी, पहली बार मेरा कॉल लगा है
0: जी। तो विनीता जी, बताइए अपने बारे में बताइए।
1: सोनाली जी, मैं यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ जैसा कि मैंने बताया, और यहाँ पर मैं मिलेट्स से रिलेटेड बेकरी आइटम बनाती हूँ। बेकरी में सभी लोग कुकीज पे तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन हम डेली रूटीन में काम आने वाली ब्रेड, पाव, पिज्जा बेस, बर्गर, हम ये बना रहे हैं ताकि जो 3,000 बच्चे हैं वो अपनी चॉइस का पिज्जा और ये सब खाएं, तो हेल्दी बेस के साथ खाएं, तो हम इस पे काम कर रहे हैं।
0: क्या बात है। मिलेट्स यानी फिर रागी है, ज्वार है, बाजरा है, इनसे बनी बेकरी आइटम्स आप बनाते हैं ना?
1: जी।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर किसी को चटपटा खाना पसंद होता है, पर हम थोड़ा सा डर जाते हैं कि उसमें मैदा होगा या वनस्पति घी होगा तो वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। पर आप जो इस तरह से मिलेट्स का इस्तेमाल करके बेकरी आइटम बना रहे थे, ये तो बहुत अच्छी बात है। विनीता जी, आज 15 तारीख है, 15 मई है, आज परिवार दिवस है, तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि परिवार की क्या अहमियत है आपके जीवन में?
1: परिवार सभी के लिए बहुत अहमियत रखता है। हम आजकल जो छोटी फैमिली हो गई है उसके बहुत सारे लॉसेज हैं, जैसे मेरे मम्मी पापा बहुत कम एज में डेथ हो गई थी, तो हम भाई बहन एक साथ हो गए और हम बड़े से बड़ी मुसीबत को आसानी से निकाल ले जाते हैं, और कोई छोटा सा भी पर्व हो उसमें हम लोग सब इकट्ठा होकर बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, और हमारे साथ साथ हमारी जो अगली पीढ़ी है, हमारे बच्चे आपस में मिल के मतलब चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, वो वहां तक जा रही है, तो वो लोग भी अब इतना समझ में आने लगा है कि नहीं, फैमिली तो होना ही चाहिए, नहीं तो आप अकेले पड़ जाओगे। तो हर खुशी के मौके में बहुत ही अच्छा लगता है जब हम सब एक साथ होते हैं।
0: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही। और साथ में जो वर्किंग महिलाएं होती हैं, जैसे आप कुछ काम कर रही हैं, तो उस वक्त जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं, उस वक्त दादा दादी, नाना नानी का उन्हें सपोर्ट मिलता है, सहयोग मिलता है, तो बहुत खुशी मिलती है कि चलो हम बाहर हैं तो घर में तो कोई है हमारे बच्चों को संभालने के लिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी बहुत निश्चिंत होकर बेफिक्र होकर मैं काम पे निकल जाती थी, क्योंकि घर में दादा दादी हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे देवर हैं, हम लोग सब भी साथ में रहते थे, तो बच्चा कब बड़ा हो गया, कैसे बड़ा हो गया, और इतनी अच्छी परवरिश के साथ बड़ा हुआ, तो वो सभी संभव है जबकि हम परिवार के साथ होते हैं।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। विनीता जी, बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: चुरा लिया है तुमने जो दिल को, ये 1973 की एक मूवी है, यादों की बारात। हाँ जी, तो ये मुझे गाना बहुत पसंद है, इसे आशा जी और मोहम्मद रफी सर ने गाया है, और जीनत अमान और विजय अरोड़ा पे फिल्माया है, तो ये गाना मुझे बहुत पसंद है, तो अगर ये सुना देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा
0: जी। विनीता जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: बताइए कौन सहेली बात कर रही हैं?
1: जी मेरा नाम वर्षा धगट है। जी मैं वैसे तो मुंबई की हूँ, पर अभी फिलहाल छुट्टियों पर जबलपुर आई हुई हूँ, मध्य प्रदेश में।
0: क्या बात है, यानी आप मायके गई हुई हैं?
1: बिल्कुल सही पहचाना आपने, मायके आई हुई हूँ।
0: यानी मायके का लुत्फ उठा रही है माँ के साथ में, ना?
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने।
0: अच्छा वर्षा जी, बताइए आपके बारे में बताइए।
1: सोनाली जी, मेरे बारे में बस क्या बताऊं, मैं वैसे एक्ट्रेस हूँ, टीवी टेलीविजन करती हूँ, और हाल ही में मेरी एक फिल्म भी रिलीज हुई है, और इसके अलावा मैं प्रोफेशनल एंकर भी हूँ, म्यूजिकल शोज होस्ट करती हूँ, और थोड़ी सिंगिंग
0: की गई हुई है।
1: बिल्कुल सही पहचाना आपने, मायके आई हुई हूँ।
0: यानी मायके का लुत्फ उठा रही है माँ के साथ में, ना?
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने।
0: अच्छा वर्षा जी, बताइए आपके बारे में बताइए।
1: सोनाली जी, मेरे बारे में बस क्या बताऊं, मैं

0: सकते हैं, क्योंकि हमें डर नहीं होता है कि अरे हमारा क्या होगा, हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ कोई तो है ना।
1: ये आपने 100% सही बात कही कि जैसे हम अपने लेडीज जो भी कर पाती हैं, जैसे शायद आप ये जॉब कर पा रही हैं, ये भी आपके परिवार की स्वेच्छा से ही आप और उनके मोटिवेशन से ही शायद आप इधर तक पहुंची। एम आई राइट?
0: बिल्कुल सही कहा आपने। उनके बिना ये कल्पना ही नहीं हो सकती कि उनके सपोर्ट के बिना हम महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती। बहुत संबल मिलता है जब परिवार का साथ होता है हमें।
1: बिल्कुल, हर महिला को खासतौर पर पति का सपोर्ट मिल जाए तो पत्नियां बहुत कुछ कर सकती है।
0: जी, बहुत सही बात आपने कही, और आपकी बात सुनकर बहुत सारे लोग प्रेरित भी होंगे कि अगर हम अपने घर की महिलाओं को सपोर्ट करेंगे तो हमारी महिलाएं भी, हमारे घर की जो परिवार की महिलाएं हैं, वो बहुत आगे बढ़ेगी।
1: बिल्कुल सही कहा सोनाली जी आपने। जी,
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। और वर्षा जी, बताइए आपके पसंद का कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: जी, पसंद के गीत तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल मैं ये पर्दा हटा दो जरा मुखड़ा दिखा दो, ये पर्दा हटा दो जरा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार

0: गई हुई हैं।
1: बिल्कुल सही पहचान आपने, मायके आई हुई हूँ।
0: यानी मायके का लुत्फ उठा रही है माँ के साथ में, ना?
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने।
0: अच्छा वर्षा जी बताइए, आपके बारे में बताइए।
1: सोनाली जी मेरे बारे में बस क्या बताऊँ, मैं बस
2: चुप कर

0: आपने?
1: नांदेड़ से
0: फोन लगाया। प्रगति जी, आपके बारे में बताइए, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं घर पे हूँ अभी,
0: हाउसवाइफ हूँ।
1: हाँ।
0: मैं हाउसवाइफ को प्रगति जी हाउस क्वीन कहूंगी, है ना, क्योंकि वे घर परिवार की जिम्मेदारी कितनी खूबसूरती के साथ निभाती हैं। आपके कारण घर के जो परिवार के अन्य सदस्य हैं काम पे जाते हैं, घर पे आते हैं तो सुकून की सांस लेते हैं कि देखिए कोई तो है घर में हमारा ख्याल रखने के लिए, है ना। और आज है परिवार दिवस, तो प्रगति जी आपके जहन में परिवार की क्या महत्ता है, यानी आपके लिए परिवार का कितना महत्व है आपके जीवन में?
1: परिवार का महत्व तो बहुत रहता है, परिवार के बिना तो कुछ नहीं होता।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने कि परिवार अगर साथ है तो हम महिलाएं हर काम बड़ी आसानी के साथ खूबसूरती के साथ कर सकते हैं। तो बताइए आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आप?
1: हाँ, मैं काम चोर मूवी का तुझे संग प्रीत लगाई करें।
0: बहुत सुंदर गाना है। और विविध भारती सुनती हैं आप?
1: हाँ।
0: कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं आपको?
1: मैं तो न्यूज सुनती हूँ, न्यूज चैनल।
0: अरे वाह। और सखी सहेली सुनती है?
1: सखी सहेली सुनती हूँ।
0: और हेलो सहेली भी सुनती है?
1: और हेलो सहेली
0: जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, तो चलिए धन्यवाद।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: कौन सहेली बात कर रही हैं?
1: मैं साक्षी खिरवड़कर बोल रही हूँ।
0: साक्षी जी, कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: जी मैंने भोपाल से फोन लगाया है, मध्य प्रदेश।
0: साक्षी जी, जरा अपने बारे में बताइए।
1: जी मैं गृहिणी हूँ, अपना घर संभालती हूँ अच्छे से और बस अपने आप में खुश रहती हूँ, बढ़िया रहती हूँ।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात।
1: समय निकालती हूँ बहुत अच्छे से।
0: साक्षी जी, आज है परिवार दिवस, 15 मई को हम परिवार दिवस मनाते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि परिवार का क्या महत्व है आपके जीवन में?
1: परिवार का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। परिवार है तो हम सुरक्षित रहते हैं, खुश रहते हैं, उनके बिना तो फिर कुछ है ही नहीं।
0: जी,
1: उन्हीं के आसपास हमारी पूरी दुनिया घूमती है।
0: जी,
1: बहुत महत्व है सभी के लिए।
0: सचमुच, यानी परिवार ही हमारे जीवन का आधार है ना?
1: जी।
0: और हम महिलाओं को खासकर बहुत संबल मिलता है जब परिवार का सपोर्ट मिलता है ना?
1: जी जी, बहुत।
0: और विविध भारती सुनती हैं आप?
1: जी बिल्कुल, शुरू से सुनती हूँ, सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है।
0: कौन सा कार्यक्रम आपको पसंद है?
1: मुझे हेलो सहेली, सखी सहेली बहुत अच्छा लगता है सुनना।
0: तो चलिए बताइए, कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मैं सुनना चाहती हूँ लग जा गले।
0: अरे वाह, बहुत सुंदर गाना आपने चुना है, तो सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: क्या नाम है आपका?
1: अंबिका विजय मारवाड़ी
0: जी। कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: शिरपुर से।
0: शिरपुर से फोन लगाया जी।
1: हाँ,
0: क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं मेस चलाती हैं।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके कारण कितने सारे लोग जो हैं उन्हें पेट भर खाना मिलता है ना।
1: जी,
0: बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। और इसमें मैं आपसे पूछूंगी कि इसमें आपको बहुत खुशी मिलती है जब कोई आपके?
1: हाँ, खुशी मिलती, खाने को आते जाते वो अच्छा खाना बनाए बोलते कभी कम ज्यादा हो जाता
0: है। और सचमुच जब कोई हमारे खाने की तारीफ करता है ना तो हमारी जो थकान है ना वो छूमंतर हो जाती है ना।
1: खाने की तो अच्छे से अपनी थकान जाती, सब अच्छे बोलते खाने का।
0: हाँ, यानी अगर किसी ने तारीफ कर दी कि अरे कितना अच्छा खाना बनाया तो हम सचमुच खुश हो जाते हैं और हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि मैं इतनी थक गई थी, है ना।
1: मेहनत से फल मिलता ऐसा हो जाता।
0: हाँ बिल्कुल, मेहनत का फल तो मीठा होता ही है।
1: हाँ।
0: और रेडियो सुनती हैं आप?
1: हाँ।
0: कौन सा कार्यक्रम अच्छा लगता है आपको?
1: तो हेलो फरमाइश।
0: हेलो फरमाइश।
1: गाने सुनते हो? रहता रेडियो है, दिन भर
0: रेडियो चालू रहता। बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: अनाड़ी पिक्चर, मतलब
0: अनाड़ी फिल्म का कौन सा गीत?
1: फूलों का चेहरा।
0: ओके, अनाड़ी फिल्म का आपकी पसंद का ये गीत सुनवाते हैं।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: क्या नाम है आपका?
1: राजबाई। राजबाई धाकड़।
0: राजबाई धाकड़, कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: बड़े गांव से।
0: बड़े गांव?
1: गुना जिले।
0: जी, तो क्या करती हैं आप, अपने बारे में बताइए।
1: अपन घर के काम करती हैं, गेहूं बोते हैं, धना बोते हैं, चना बोते हैं।
0: क्या बात,
1: खेती बाड़ी काम करे हैं अपन।
0: बहुत अच्छी बात है, जो किसान बड़ी मेहनत से खेती बाड़ी करते हैं, फसल उगाते हैं, तभी तो सारे लोगों को इतने सारे अनाज मिलते हैं और हम लोग स्वस्थ रहते हैं।
1: तीन बहने हैं, तीन बच्ची है अपने और दो बच्चा है, पांच बहन भाई है।
0: क्या बात है, सच मुझे हाँ। परिवार के साथ रह के अच्छा लगता है ना?
1: अच्छा लगे, देवर है, देरानी है, देवर के मोड़ा मोड़ी है।
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें सुन के। और रेडियो सुनती हैं कि नहीं आप?
1: हाँ, रेडियो सुनती हैं।
0: अच्छा लगता है रेडियो सुनना?
1: बहुत अच्छे लगे हैं।
0: और बताइए, कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आपके पसंद का?
1: जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर लो गाड़ी दो गाड़ी।
0: बहुत अच्छा गाना आपने चुना है, और विविध भारती हेलो सहेली कार्यक्रम में फोन करने के लिए धन्यवाद।

0: हेलो सहेली,
1: नमस्ते।
0: क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनंदा है।
0: सुनंदा जी, कहाँ से फोन लगाया?
1: हम यवतमाल महाराष्ट्र से है।
0: यवतमाल से फोन लगाया। अपने बारे में बताइए सुनंदा जी, अपने बारे में बताइए।
1: मैं तो घर में रहती हूँ मैडम, खाना बनाती।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। घर में रहना यानी बहुत सी आम जो महिलाएं होती है ना, गृहणियाँ होती है, उन्हें ऐसे लगता है कि अरे हम तो घर में रहते, पर घर में रह के भी बहुत अच्छा काम करती है। आपके बदौलत आपके परिवार के लोग जो है ना, आराम से बाहर जाते हैं, काम करके आते हैं। घर में आने के बाद उन्हें एक सुकून का एहसास होता है कि चलो घर में कोई तो है हमारा ख्याल रखने के लिए, है ना। और रेडियो सुनना पसंद है आपको?
1: बहुत बहुत पसंद है।
0: कौन सा कार्यक्रम पसंद है आपको?
1: हमको सच्ची सहेली है, बहुत सारे कार्यक्रम पसंद है।
0: अच्छा, और बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हम वो आपके ऐसे नाते का गीत सुनना चाहते हैं मैडम, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
0: तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, बहुत सुंदर गाना आपने चुना है। सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: अपना नाम बताइए।
1: लक्ष्मी विलास भोले
0: जी। कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: खामगांव से।
0: खामगांव से लगाया, खामगांव महाराष्ट्र से फोन लगाया। अपने बारे में बताइए, क्या करती है आप जिंदगी में?
1: कुछ नहीं करती, घर का काम सिंपल।
0: घर का काम करती है तो ये बहुत बड़ी बात है। आप कहती है कुछ नहीं करती, ये सब कुछ करती हैं आप। आपकी बदौलत ही जो ना घर वाले खुश रहते हैं ना, कि वे लोग खुश है कि चलो कोई तो है घर संभालने वाला, ताकि हम जब बाहर से घर आए तो हमें कितना अच्छा लगता है। घर साफ सुथरा होता है, खाना बना होता है ना, सारे काम किए होते हैं। तो हमें, हम गृहिणियों को खुश रहना चाहिए या कहना चाहिए कि हाँ हम हाउस क्वीन है घर की, है ना। और खुद के लिए जीती हैं आप कभी? खुद की खुशी का काम करती हैं आप? यानी खुद के लिए जब ऐसा होता है ना कभी कभी कि अरे हमारी पसंद का काम हम कर ही नहीं पाते, तो आप करती हैं अपनी पसंद का कोई काम?
1: नहीं, वो तो टाइम नहीं मिलता, ऐसे दिन में बच्चे का वो करते करते टाइम हो जाता है।
0: टाइम निकालना जरूरी है।
1: खेत में जाना पड़ता
0: है। खेत में जाना पड़ता है, वो सब ठीक है, पर आप अपने लिए वक्त निकालिए। आपको जो काम अच्छा लगता है, जैसे कि अपनी पसंद का खाना बनाना या फिर गाना सुनना, तो चलिए बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हम आपके हैं कौन, मतलब माई माई गाना है।
0: हम आपके हैं कौन फिल्म का माए ने माए मुंडेर पे तेरी, बहुत अच्छा गाना आपने चुना है, तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: बताइए कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें?
1: हम रेखा मुखर्जी वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद छाटुई से बोल रहे हैं।
0: क्या बात है, बताइए रेखा जी अपने बारे में बताइए, क्या करती हैं जिंदगी में?
1: हम हाउसवाइफ हैं, रेडियो का गाना सुनते हैं, प्रोग्राम जितना होता है सुनते हैं, जो हेलो सहेली है वो भी सुनते हैं, लाइव फोन में सुबह सकाल में फोन में बात करते हैं रेडियो में, आकाशवाणी मुर्शिदाबाद में हम मैसेज भेजते हैं, गीतांजलि में लिखा भेजते हैं, शांति निकेतन में भी भेजते हैं और मुर्शिदाबाद में भी लिखा भेजते हैं। हम पोएम लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं और घर का काम लपेट लेते हैं, गान सुनते हैं रेडियो का, साथ जुड़े रहता है।
0: जी बहुत अच्छा लगा कि आप रेडियो भी सुनती हैं, कविताएं भी लिखती हैं और फिर घर में भी रहती हैं, पूरी जिंदगी का लुत्फ उठा रही हैं आप, है ना?
1: हम चाहे सिलाई उलाई भी करते हैं।
0: क्या बात है, आप ऑलराउंडर हैं, है ना?
1: हम अकेले सब समेट लेते हैं।
0: ये बात बहुत अच्छी बात है। बस मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी रेखा जी कि खुद के लिए आप जीते हैं कि ऐसे कुछ पल होते हैं जब हम सिर्फ अपने लिए जीते हैं, यानी कि सारे काम निपटाने के बाद में हमें ऐसा लगता है कि ये पल सिर्फ मेरे लिए है, ये एक घंटा मैं मेरे लिए जीना चाहती हूँ, तो ऐसा कुछ करती हैं आप?
1: हाँ करते हैं, एक घंटे के लिए हम सिलाई उलाई करते हैं।
0: और उसमें आपको खुशी मिलती है?
1: खुशी मिलते हैं, हाँ, अपना हाथ से सिलाई करने के बाद हमको खुशी मिलता है।
0: बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हम महिलाएं खुश रहती है ना तो परिवार भी खुश रहता है और पूरा परिवार खिला खिला सा रहता है, सभी लोग स्वस्थ जीवन जीते हैं। तो बस खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और विविध भारती सुनते रहिए। और आप
1: विविध भारती सुनते हैं जी?
0: और आपने पसंद
1: दो महीना से छटपटा रहे थे, हाँ जी, कब दो महीना पूरा होगा?
0: अच्छा चलो बहुत खुशी की बात है। और बताइए कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सत्यम शिवम सुंदरम,
1: जसमती मैया तेरे बोले नंद लाला।
0: सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली दीदी, मैं सातारा महाराष्ट्र से बोल रही हूँ।
0: क्या नाम है आपका?
1: मेरा उषा नाइक नाम है दीदी।
0: उषा नाइक सातारा से बात कर रही है जी। बताइए, हाँ। अपने बारे में बताइए।
1: सातारा ये छत्रपति शिवाजी महाराज का ऐतिहासिक किला है, अजिंक्य तारा है, प्रतापगढ़ है, ताज तालाब है, महाबलेश्वर है।
0: जी जी जी, सातारा घूमने लायक बहुत अच्छी जगह है।
1: बहुत ही अच्छा जगह है
0: जी।
1: नटराज मंदिर है, बहुत ही अच्छा है। आप आइए कभी, शूटिंग भी होती है इधर।
0: जी हम जरूर आएंगे। आप अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं जिंदगी में?
1: दीदी मैम, तो मैं जॉब में हूँ। मैं साड़ी सेंटर में हूँ, सिटी साड़ी सेंटर में हूँ। मैं जॉब करती हूँ। मैंने आज छुट्टी लिए, खास आपके लिए फोन करने के लिए।
0: क्या बात है, क्या बात है। और बहुत खुश होंगी ना आज कि फोन लग गया?
1: बहुत ही खुश हूँ, मेरा फोन लग गया। मैं इसके वास्ते आज रूम में घर रही हूँ। 4 महीने बाद मेरा फोन लगा है।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई हमें। और आपसे एक सवाल है कि आप नौकरी भी करती हैं, घर भी संभालती हैं, तो आप खुद के लिए जीती हैं क्या? अगर खुद के लिए जीती हैं तो आपकी पसंदीदा कौन सा काम है जो आपको करने से आपको बहुत खुशी मिलती है?
1: जी मेरा 57 एज है दीदी।
0: अच्छा
1: 57। मैं घर में नहीं रहती हूँ, मैं बोर हो जाती हूँ घर में। मेरा बेटा है, बहू है, जमाई है, सब अपने अपने संसार में व्यस्त है। फिर घर में क्या करने का, इसी वास्ते मैं 10 साल से मैं सेल्समैन का काम करती हूँ।
0: क्या बात,
1: साड़ी सेंटर में, सिटी साड़ी सेंटर में।
0: यानी आप व्यस्त और स्वस्थ रहती है, यानी आपका ये मानना है कि जब हम व्यस्त रहते हैं तब हम स्वस्थ रहते हैं, है ना?
1: हाँ, और मेरा यही है कि मेरा सभी गाना सुनने में बहुत ही मेरा दिल सोया है। मेरा पूरा दिन आनंद आनंद में ही जाता है
0: जी।
1: 11:30 बजे तक हाँ गाना ही सुनती हूँ मैं रेडियो का।
0: क्या बात है, रेडियो सुनना अपने आप में बहुत खुशी देता है ना, हम खुश हो जाते हैं। हाँ, प्यारे प्यारे गीत सुन
1: के बहुत ही खुश। और मैं टीवी भी नहीं देखती हूँ, और मेरा छोटा सा नोकियो का फोन है, बड़ा भी एंड्रॉइड नहीं है, मेरा छोटा ही है।
0: क्या बात है,
1: काम मेरा चल जाता हूँ और मैं बहुत ही खुश हूँ।
0: ये बात है, नहीं तो देखिए लोग हमेशा परेशान रहते हैं जिंदगी में कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, पर सचमुच आपसे सीखने लायक बात है कि छोटा सा फोन है फिर भी आप रेडियो सुन के खुश रहती है, तो खुश रहना बहुत जरूरी है ना?
1: जरूरी है, बराबर है
0: जी। बताइए कौन सा गीत आप आज सुनना चाहती है?
1: दीदी बहुत ही धूप है बाहर, धूप में निकला ना करो रूप की रानी।
0: बहुत प्यारा गीत आपने चुना, ये गंगाना आप गुनगुना के सुना सकती हैं?
1: धूप में निकला ना करो रूप की रानी, गोला रंग का लाना।

0: रहा आज का हेलो सहेली प्रोग्राम। सखियों, आपकी बातचीत, आपके अनुभव दिल को छू गए। आपसे अगली मुलाकात होगी अगले मंगलवार सुबह 11 बजे से। तो जल्दी से हमारे टेलीफोन नंबर्स नोट कर लीजिए। हमारे नंबर इस तरह है 4002466 2, यानी 4002466 2। दूसरा नंबर है 2867 0288, 2867 0288। और मुंबई का STD कोड है 022, यानी 022। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जिन सखियों के कॉल लग चुके हैं वे कृपया 2 महीने तक कॉल ना करें, ताकि अन्य सखियों को भी मौका मिले हमसे जुड़ने का। साथ ही सभी पुरुष श्रोताओं से एक विनती है कि आप हेलो सहेली में कॉल ना लगाएं। आपके कॉल के कारण फोन एंगेज हो जाता है और बहुत सारी सखियों के फोन लग नहीं पाते। तो सखियों, हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर है समृद्धि नाइक, संपादन योगिता जाधव का, हेलो सहेली की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। तो चलते चलते सखियों से कहेंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने परिवार से जुड़े रहिए और विविध भारती सुनते रहिए। इसी के साथ सोनाली पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं श्वेता उपाध्याय की लिखी गीतों भरी कहानी जीवन एक सरल रेखा। वाचक स्वर आपके इस दोस्त यूनुस खान का है। रेखा गणित के प्रश्न श्यामपट पर किसी खूबसूरत रेखा चित्र से नजर आ रहे थे। दो आड़ी तिरछी रेखाओं के मध्य बना एक कोण और उस कोण में समाये अंक सरला की आंखों को थोड़े धुंधले नजर आ रहे थे। पर अब 15 वर्षों का अनुभव गलती होने की संभावनाओं को खुद ब खुद संभाल लेता है। बच्चों, आज तुम्हारी मैडम अपना चश्मा लगाना भूल गई। ब्लैक बोर्ड पर कुछ गलत लिख दूं तो चुप मत बैठना, आज गलती बताने वाले को इनाम मिलेगा। पूरी कक्षा इस वाक्य को सुनते ही सचेत हो गई। सरला मैडम की गलती निकालना कक्षा 7वीं के लिए बहुत बड़ा काम होगा। अर्धवार्षिक परीक्षाओं तक विद्यार्थी गणित का बहुत अभ्यास कर चुके थे। बस यही कारण था कि जब सरला की धुंधली आंखों ने कुछ इधर उधर लिखा तो बच्चे तुरंत बोल पड़े। आज सुबह की आपाधापी में वो नजर का चश्मा लगाना भूल गई। यूं तो आंखें वो सब देख समझ और पढ़ लेती हैं जो जरूरी नहीं, पर किताब के बारीक अक्षर पढ़ते हुए सरला की आंखें झिलमिला उठती थीं। इसलिए आज उसने रेखा गणित चुना। आड़ी तिरछी रेखाओं के बीच बनते कोण उसकी धुंधली आंखें समझ सकती थीं। बच्चों को कुछ कठिन सवाल दे आज वो कक्षा की देहरी पर खड़ी होकर उन आहटों की प्रतीक्षा कर रही थी जिनके साथ दीपावली अवकाश का संदेश आएगा। कुछ ही देर में कोसीलाल हाथी की मस्त चाल में झूमते नजर आए। यूं तो वो स्थूल काय सदैव प्रसन्न रहता, पर आज उसका चेहरा किसी खुशखबरी से चमक रहा था। मैडम जी, नोटिस पे हस्ताक्षर कर दीजिए। इस वक्त चाय लाने वाले कोसीलाल रजिस्टर थामे अति प्रसन्न थे। नोटिस पढ़ते हुए सरला अवकाश के काश में अटक गई। अरे, ये तो बड़ी लंबी छुट्टियां दे दी सरकार ने, ये बच्चे तो सब भूल जाएंगे, फिर वही नील बटे सन्नाटा हो जाएगा। खैर, मेरी छुट्टियां बच गईं, हम लोग भी घूमने जा रहे हैं इस बार। कहां जाएंगी मैडम जी? कश्मीर, बहुत सालों से इच्छा थी जाने की, अब पूरी होगी। और त्योहार बिना मनाए जाएंगी का? अरे नहीं भाई, उससे पहले वापसी हो जाएगी। अब फिर तो ठीक है, त्योहार से ज्यादा का जरूरी है? सब घूमेंगे भागेंगे, हम तक गोड़ का इलाज करवाएंगे, गजब पिरात हैं। सरला मध्य प्रदेश के सिहोरा में गणित की अध्यापिका हैं। पिछले 3 वर्षों से जबलपुर से सिहोरा अप डाउन करती सरला मिश्रा अपने सरकारी वेतन से जितनी प्रसन्न है उतनी वे जीवन की किसी और बात से प्रसन्न नहीं है। यूं तो हर साल ये स्थानांतरण की अर्जी देती रहती हैं, पर इस साल से अर्जी देना इन्होंने बंद कर दिया है। क्यों? वो इसलिए कि सिहोरा के इस शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कम होने के कारण इन्हें आराम रहता है और इनके पति नीलकांत मिश्र घूस देकर कोई काम नहीं करवाते। उनके हिसाब से तो सरला हमेशा से बस से आना जाना करती रही हैं, तो अभी भी कर सकती हैं। जबलपुर सिहोरा यूं भी राष्ट्रीय मार्ग से लगे हुए हैं। नीलकांत मिश्र क्योंकि ग्रामीण बैंक में कार्यरत हैं, तो उनकी पोस्टिंग तो वैसे भी जबलपुर के आसपास के गांव में ही होती है। इस तरह दोनों अलग अलग दिशाओं से सफर करते हुए घर लौटते हैं। आज सितंबर की रवानगी हो चुकी थी और जाड़े की सुगबुगाहट के साथ दशहरे से दीपोत्सव तक की छुट्टियों का सरकारी आदेश आ चुका था। विद्यालय के कॉरिडोर्स में हलचल मची हुई थी। खुशी से कदम बढ़ाता कोसीलाल हर कक्षा में नोटिस पर हस्ताक्षर कराने के लिए तेज चलने का प्रयास कर रहा था। सभी शिक्षक शिक्षिकाएं अपनी अपनी कक्षा की देहरी पर खड़े अपने साथी शिक्षक शिक्षिका के साथ गपियाने में मशगूल होने लगे थे। प्रसन्नता की इस बयार ने सरला के कानों में कुछ ऐसा फुसफुसाया कि उसका मन अवकाश के बादलों के संग उड़ने लगा। सरला सोचने लगी, इस बार कश्मीर घूमने जाऊंगी तो खूब सी फोटो अपनी फोन गैलरी में सेव करूंगी, हो सके तो नया मोबाइल लेती हूं जिसका कैमरा शानदार हो।

विचलित सरला कक्षा की देहरी पर खड़े होकर पूरे कॉरिडोर का मुआयना करने लगी। अपनी मनगढ़ंत योजनाओं से निकलकर जब उसने ब्लैकबोर्ड को देखा तो उसे ज्यामितीय रेखाएं किसी पेड़ की शाख जैसी नजर आईं, जिस पर नव पल्लवन होना बाकी था। सरला ने आज ब्लैकबोर्ड से नजरें फेर ली। पीरियड खत्म हुआ, घंटी बजी और प्राचार्या ने कक्षा में कदम रखा। अरे अब ये क्यों चली आई, ये हमेशा दबे पांव ही आती हैं, मन ही मन ये बोलते हुए सरला सहजता से मुस्कुराई। क्या पढ़ाने में व्यस्त थी आप सरला मैडम, बच्चों को कुछ गृह कार्य देकर दूसरे काम पूरे करिए। वैसे क्या प्लान है, क्या कर रही हैं आप अवकाश में? प्राचार्या कक्षा और ब्लैकबोर्ड को बारीकी से देख रही थी। अरे मैडम कुछ नहीं, बस कहीं घूम फिर आएंगे, जब से सिहोरा में पोस्टिंग हुई है अप डाउन की थकान कुछ और प्लान करने ही नहीं देती। जबलपुर इतना दूर तो नहीं सरला मैडम? हाँ, घर के काम निपटाकर सही समय पर विद्यालय पहुंचना ज्यादा कठिन है। आपकी पेंटिंग्स के क्या हाल हैं? पूछते हुए प्राचार्या आगे बढ़ने लगी और सरला उनके पीछे चल दी। अरे मैडम मेरी पेंटिंग्स अधूरी हैं, इन छुट्टियों में उनकी रंगत सुधारूंगी, बहुत साल हुए कहीं गए नहीं, ये अवकाश लंबा है, कहीं जाऊंगी इनके साथ। सरला ने बात बदली, क्योंकि पेंटिंग्स तो उसने विद्यालय के वार्षिकोत्सव के बाद कभी बनाई ही नहीं। अरे वाह, कहां की बुकिंग हुई? द हेवन ऑन अर्थ कश्मीर मैडम। आज प्राचार्या भी प्रसन्न थी, यूं तो गणित पढ़ाने वाले अध्यापक उन्हें वैसे भी ज्यादा प्रिय हैं, पर त्योहारों के समय मिली सरकारी छुट्टियां किसे नहीं गुदगुदाती। इस बातचीत के बीच सरला को याद आया वो सफेद कैनवस जो प्राचार्य महोदया ने पिछले वर्ष उसे उपहार में दिया था। वो घर के गलियारे में यूं ही पड़ा पड़ा पिलिया रहा है। वो कैनवस और रंग जो उसे जन्मदिन पर उपहार में मिले थे उसने आज तक नहीं छुए। विद्यालय में सभी सरला की प्रज्ञा और चित्रकारी से परिचित और प्रभावित थे, पर घर और विद्यालय के बीच की खींचतान में वो कैनवस कोरा ही रहा।

0: स्टाफ रूम में एक बच्चे की कॉपी पे नजर दौड़ाते हुए सरला का ध्यान अचानक उसके हाथ की खुश्क पड़ती चमड़ी पर गया। उसने ध्यान से अपने हाथों को देखा। साथ बैठी हिंदी की अध्यापिका सरला को अपने हाथों पर वैसलीन मलता देखकर बोली, सरला मैडम, इन हाथों में अब नमी की उतनी ही कमी है जितनी आपके जीवन में आनंद मंगल की। ये बात सरला को मधुमक्खी के डंक सी चुभी। क्या कमी है उसके जीवन में आनंद मंगल की? कभी प्रतिकार न करने वाली सरला ने आज उत्तर दिया, आप तो बस मेरे पीछे ही पड़ी रहती है मैडम, ये भी कोई मजाक हुआ? मेरे जीवन का आनंद मंगल आप क्या समझेंगी? सरला झुंझला उठी, अरे मजाक कर रही हूं, ये चिड़चिड़ापन तुम पर हावी होता जा रहा है, इतनी खिन्नता अच्छी नहीं, विनोद की भी कमी है तुम्हारे जीवन में। ऐसा है मैडम कि घर हो या विद्यालय, लोग मेरे स्वभाव में उपजी खिन्नता का कारण उनके विवेक और परिस्थिति के अनुरूप खोज लेते हैं, समानुभूति कोई नहीं रखता। अरे तुम घर के उलझे समीकरण भले न सुलझा सको, पर गणित की कक्षा में हर समीकरण का हल खोज लेती हो। हिंदी की अध्यापिका ने सरला का मन ये कहकर बहलाना चाहा। उम्र का ये 45वां साल सरला के लिए कुछ उलझन भरा था। उसके तन और मन का बदलता ताप कभी उसे अफसोस से भर देता तो कभी भावातिरेक से। उसकी बेटी कुहू भी दिल्ली जा चुकी थी और अब उसके साथ शाम को हंसी चिठोली करने वाला कोई नहीं था। शायद प्री मेनोपॉज भी सरला को परेशान कर रहा था। कॉपी करेक्शन पूरा करते हुए सरला सौम्य अंदाज में बोली, मैडम आज मैं घर लौटते वक्त किसी अच्छी कंपनी की क्रीम खरीदूंगी, ये वैसलीन अब चिपचिपी लगती है। आज का दिन यूं तो सबके बीच अति उत्साह में बीता, पर उसकी नजर अपने रूखे हाथों पर बार बार जाती रही जाती रही। शाम को जब लंबे अवकाश की आश्वस्ति लिए वो बस अड्डे पर पहुंची तो वहां बस और मनपसंद खिड़की वाली सीट उसका इंतजार कर रहे थे। बस में सफर करते हुए सरला ने अपना फेसबुक अकाउंट खोला। वहां उसे दिखे कुछ अनजाने खिलखिलाते चेहरे जो बिना पति भाई बहन या प्रेमी के यात्रा पर निकले थे। वो रोमांच से भर उठी। धुंधली नजर आती उन तस्वीरों में कुछ स्त्रियां तो उससे भी बड़ी उम्र की मालूम होती थीं। ये सब देखते देखते कब बस आधार ताल चौराहे तक पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। शायद इस बार भगवान उसकी छुट्टियां मंगलमय रखेंगे और वो अपने परिवार के साथ भारत के स्वर्ग कश्मीर को देख सकेगी। ये सोचते हुए वो बस से उतरी और उसने रिक्शे वाले को रोका, सुनो भैया, पहले बाजार का काम करूंगी, उसके बाद तुम मुझे सुंदर कॉलोनी छोड़ देना।
1: देखो हम 150 रुपया लेंगे।
0: ठीक है चलो। आज सरला को कोई फिक्र नहीं थी। उसने कई दिनों से एक लिस्ट बना रखी थी और आज इसीलिए वो पर्स में पैसे रख के निकली थी। उसने सोच लिया था कि वो रिक्शे वाले को घर आने से थोड़े पहले ही रोक देगी ताकि अम्मा को लगे कि वो पैदल ही आई है। आज उसे ब्रश खरीदने थे, रंग खरीदने थे, अच्छे ब्रांड की क्रीम लिपस्टिक खरीदनी थी। उसकी लिस्ट में तो बहुत कुछ था, पर ये सब खरीद कर उसे शाम 7 बजे से पहले घर भी पहुंचना था। सरला को लगा कि रिक्शा कर ही लिया है तो वो अपने सारे काम निपटा लेगी। विद्यालय में सब उसे कंजूस कहते हैं। अब कौन बताए इन स्टाफ रूम में बैठी अध्यापिकाओं को कि रिक्शा या ऑटो से घर जाने पर अम्मा का मुंह फूल जाता है। उनके हिसाब से बस स्टॉप से घर तक पैदल आया जा सकता है, 1 किलोमीटर की दूरी दूरी नहीं होती। रिक्शे में बैठी सरला सोचती रही कि उसे घर के गलियारे में पड़े पिलियाते कैनवस को सूर्योदय की रोशनी से रंगना है। किसी दिन प्राचार्य ने तस्वीर दिखाने को

तो वो झूठी साबित हो जाएगी। यूं भी सरला को उकेरना था उस कैनवस पर एक चलचित्र, जहां साल के सघन जंगलों के बीच एक नदी बहती हो, वृक्ष के आसपास सफेद बटन वाले कुकुरमुत्ते हों, धरती पे हरी लंबी घास हो और वहां विश्राम करती एक स्त्री हो। पर ये सब कब और कैसे होगा, ये सरला की दिनचर्या सुनिश्चित नहीं कर पा रही थी। अम्मा ने तो कैनवस को फालतू का सामान समझकर यूं भी कमरे के पीछे बने गलियारे में रखवा दिया था। इन विचारों से मुक्त होकर सरला ने मोबाइल पे आया संदेश देखना चाहा। सरला की आंखें बिना चश्मा पहने साफ नहीं देख पा रही थीं। शायद कुहू ने कुछ भेजा था, आज वो चश्मा क्या भूल गई, आधी दुनिया उसे धुंधली नजर आ रही है।

ब्यूटी स्टोर तक पहुंचने से पहले इतनी देर से शांत पड़ा मोबाइल बजा। हेलो मम्मी, कहाँ हो आप? आप टेक्स्ट रिप्लाई क्यों नहीं करती? हाँ हाँ बेटा, मैं बस तुझे कॉल करने ही वाली थी। रिक्शे से उतर रही हूं। आज मैं वाकई अपनी संरचना में अधूरा रह गया। कुहू हमेशा की तरह जल्दी में थी। क्या मम्मी, आपने अभी तक अमाउंट ट्रांसफर नहीं किया? मैंने तो आपको टेक्स्ट किया था कि मेरी फेयरवेल पार्टी है, थीम पार्टी है मम्मी, आप समझती ही नहीं हो। अच्छा बेटा, 7 बजे तक घर पहुंच जाऊंगी, फिर बात करती हूं। नहीं मम्मी, आप मुझे तुरंत 10,000 रुपए भेज दो, मैं मॉल में ही हूं, ड्रेस सिलेक्ट कर चुकी हूं। 10,000? अरे ऐसे कितनी ड्रेस ले ली तूने? मैं बिलिंग काउंटर पे हूं मम्मी, वेट नहीं कर सकती, अब जल्दी पैसे भेजो यार। ठीक है कुहू, मुझे बताती जा बेटा कि ये पेमेंट कैसे करना है, कहीं जल्दीबाजी में किसी और को पैसा ना पहुंच जाए। सरला पर्स में नगद ही रखती थी, वो भी जरूरत का। UPI पेमेंट पति ही करते थे। अरे मम्मी, ऐप खोलो, फिर आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में मेरा नंबर है ना, बस उसी नंबर को क्लिक करो, मैं कॉल पर हूं। सरला ने धुंधले चश्मे से कुहू का नंबर खोजा, 10,000 का अमाउंट डाला और डरते हुए ओके के बटन को दबाया। अगले ही मिनट में कुहू चहकी, आ गया अमाउंट मम्मी, शाम को बात करेंगे, ओके बाय। अब सरला ने कोई महंगी क्रीम खरीदने का प्लान किसी और दिन पर टाल दिया और जैतून के तेल के गुणों के बारे में सोचते हुए रिक्शे वाले से बोली, भैया रिक्शा सुंदर कॉलोनी की तरफ मोड़ लो, और हाँ वो जलेबी वाले की दुकान पर रुकना। खोए की जलेबियां उसके घर में सबको बहुत पसंद है, वो जब भी देर से घर लौटती है जलेबियां ले लेती है। अम्मा का मुंह खोए की जलेबियां देखकर नहीं भूलता। जीवन के इस पड़ाव तक आते आते सरला समझने लगी थी कि जरूरतों का मुंह बंद करने के लिए लगातार अर्थोपार्जन में जुटे रहना भी जरूरी है और रिश्तों में मधुरता बनाए रखना भी। संयुक्त परिवार में प्रेम विवाह कर आई सरला के जीवन की धुरी उसका घर और विद्यालय था, पर घर और विद्यालय की कई धुरियां थीं। सरला जीवन के कुछ समीकरण बहुत देर से समझ रही थी। बस बस भैया, रिक्शा यहीं रोक दो। सरला अपने घर से पहले वाले मोड़ पर सामान लेकर उतर गई। शाम के 7 बज रहे थे। संझा की दियाबाती सरला ही करती थी। तेज कदम बढ़ाकर जब सरला घर पहुंची तब तक नीलकांत घर लौट चुका था। अम्मा कुछ कहें इससे पहले सरला ने खोए की जलेबी का डिब्बा अम्मा को पकड़ा दिया, साथ में ताजा मुंगोड़े भी थे। सरला नील को देखते ही चहकी, पता है सरकार ने दीपावली का उपहार पहले ही दे दिया। इतनी वाक्य फिर अपनी संरचना में अधूरे रह गए। इतनी देर से लौटी तुम? अम्मा कितनी बार दरवाजे तक जाकर लौटी, एक कॉल ही कर देती अगर इतनी देर हो रही थी तो। नीलकांत का स्वर खींचा हुआ था, जाने क्यों। अच्छा किया जो जलेबियां लेती आई, नहीं तो बेचारे नील को दौड़ना पड़ता। अम्मा सरला के देर से घर लौटने पर नाराज नहीं थी, ये बात थोड़ी अजीब थी, पर नील का मूड क्यों उखड़ा हुआ है, ये बात सरला की समझ से परे थी। हाथ पैर धोती सरला सोच रही थी कि क्या ये वही नील है जो 20 बरस पहले उसके लिए बस में खिड़की वाली सीट रोक कर रखता था। उसे बताया था सरला ने कि अगर वो खिड़की वाली सीट न चुने तो उसे मिचली सताती है।

बस फिर क्या था, नील ने बस कंडक्टर के साथ साठ गांठ करके बस की सबसे आगे वाली सीट अपने और सरला के लिए बुक कर दी थी। वो बैंक में पदस्थ था और सरला की नियुक्ति शिक्षा कर्मी के तौर पर हुई थी। दशहरा और दीपावली के अवकाश के दौरान नीलकांत किसी रविवार सरला से मिलने जरूर चला जाता था। बस इसी बीच विवाह का ख्याल सरला के परिवार वालों को यूं भी आ गया कि नीलकांत को दहेज से नफरत थी। नीलकांत सरला के एमएससी गणित से इतना प्रभावित था कि वो इसके आगे कुछ जानना समझना नहीं चाहता था। सरकारी नौकरी में तो वो लग ही चुकी थी। दोनों ब्राह्मण परिवारों को इस विवाह से कोई समस्या नहीं थी। सरला को नील की आंखों में अपने लिए प्रशंसा और सम्मान मिला और नीलकांत को मिली सरल सरला, जो उसकी बहनों की परवरिश में उसकी सहभागी बनी। अब क्या करने लगी सरला, चौके में घुसो, आज जीजी की ननद ननोई आ रहे हैं खाने पर। उनके परिवार में एक अच्छा कमाऊ लड़का है अपनी मिली के लिए। नीलकांत की पुकार सुन सरला वर्तमान में आ गई। हमेशा से नीलकांत की तीन छोटी बहनों की जिम्मेदारी नीलकांत की ही थी। पहली दो तो आराम से ब्याह गईं, पर नीलकांत की सबसे छोटी बहन मिली के लिए वर मिलना लगभग असंभव होने लगा था। न शिक्षा, न रंग रूप, न कोई कला कौशल, न कुछ करने की चाह। आलस्य से भरी 32 साल की मिली के लिए नीलकांत और उसकी अम्मा पिछले 10 साल से योग्य वर खोज रहे थे। अम्मा ने चौके में सरला को सुनाते हुए कहा, मिली को अच्छा दहेज देकर ब्याहूंगी ताकि उसे कोई ससुराल में दबा न सके। सरला को पूड़ी का आटा गूंथते हुए नजर आ रही थी कश्मीर की वो रील्स जो उसे कुहू भेजती रहती है। सरला और नील के जीवन में जिम्मेदारियों का हरा पौधा अब परजीवी बन चुका था। एक ऐसा परजीवी जो सरला और नीलकांत के बीच सदैव कुछ लेने के लिए खड़ा रहता। मेहमानों की रवानगी के बाद अम्मा और नीलकांत पूरी बातचीत का मुआयना करने बैठ गए और सरला घर के गलियारे में रखे कैनवस को साफ करने लगी। कैनवस पूरी तरह से बदरंग हो चला था।

अगली सुबह सरला देर तक बिस्तर से नहीं उठी। सारी रात उसके सपनों में पहाड़, नदी और कुहू आते रहे। जब उसका कैनवस पैसों, जेवरों और बर्तनों से सजने लगा, तब उसकी नींद टूटी। ओह, घड़ी में 8 बज रहे थे। बैठक में नीलकंठ और अम्मा चाय के साथ बासी पूड़ियों का नाश्ता करते बड़े प्रसन्न नजर आ रहे थे। अम्मा ने उसे चाय का कप मुस्कुराते हुए थमाया। क्या हुआ अम्मा, आप जगा देती मुझे? सरला ने बैठक में बिखरे कुशन समेटते हुए कहा। अरे सरला, अपने तो भाग ही खुल गए, मिली के लिए हाँ कह दी उन लोगों ने। भले लोग हैं, बस इतना चाहते हैं कि विवाह धूमधाम से हो और स्वागत सत्कार में कोई कमी ना रहे। मतलब अम्मा? मतलब ये कि अपनी अपनी पेंशन निधि से या फिक्स डिपॉजिट से पैसा निकलवाने की अर्जी दे दो। सोने का भाव तो आसमान चढ़ रहा है, लड़की को सूने हाथ तो नहीं भेज देंगे ना। फिर शादी भी तो जबलपुर में नर्मदा पैलेस से करना चाहते हैं वो लोग। सब कुछ मिलाकर 20 लाख रुपए तो चाहिए, क्यों नील? जी अम्मा, इतने तो लग ही जाएंगे। नीलकांत यूं भी अपनी अम्मा की हर बात से सहमत ही रहता था। अम्मा, 35 साल की उम्र में शादी करने वाला इतना टीम टाम क्यों चाहता है? सोचिए, प्राइवेट नौकरी है उसकी, क्या वो खुद 20 लाख का लोन लेने की ताकत रखता है? 20 लाख सुनते ही सरला का मन घबराने लगा। ये सब ज्ञान की बातें हैं सरला, सबको नीलकांत नहीं मिलता, इतना तो करना ही पड़ेगा। अभी से अर्जी दे देंगे तो पीएफ से तुम्हारा और मेरा फंड 1 माह के भीतर निकल जाएगा सरला, तुम चिंता मत करो। नीलकांत सब सोच चुका था। मिली अपनी बिखरी अलमारी आज बरसों बाद सहेज रही थी। शायद अम्मा ने उसे बता दिया था कि अब उसे नई रेशमी साड़ियां खरीदनी और पहननी हैं, जिन्हें पहनकर वो सुंदर दिखे। अम्मा ने आज खुशी खुशी चौका संभाला, एक बार भी सरला को आवाज नहीं दी। नीलकांत बैंक अकाउंट चेक करते रहे और सरला, वो बैठ गई रंगों और कूचियों के साथ उस कैनवस के सामने जिसे उसने 1 साल से नहीं छुआ था। सारा दिन घर ठहाकों से गूंजता रहा और सरला उकेरती रही पहाड़, पेड़, नदियां और कुकुर मुत्ते। एक स्त्री जो सरला की कल्पनाओं में थी, वो कैनवस के लैंडस्केप में अनुपस्थित थी। सरला, तुम ये सब क्या लेकर बैठ गई? चलो बाजार चलो, सोने का भाव आसमान छू रहा है, मिली और अम्मा तैयार हो गई हैं। नीलकांत अब तक डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स की स्पेंडिंग लिमिट चेक कर चुका था। उसका उतावलापन बता रहा था कि अब वो रुकेगा नहीं। नहीं नीलकांत, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे 2-3 दिन बाद एक ट्रिप पर जाना है जिसका पेमेंट मैं कर चुकी हूं। पगला गई हो क्या? कौन सी ट्रिप सरला? अरे घर में 2 महीने में शादी है और तुम ये सब क्या सोच रही हो? हम कश्मीर अगले साल चले जाएंगे, वैसे भी टिकट्स कंफर्म नहीं हुई थी इसलिए मैंने कैंसिल कर दी, कम से कम रिफंड तो मिल गया। इस वक्त सरला को वो सारी यात्राएं याद आने लगी जो यात्रा के 2-3 दिन पहले रद्द हो जाती थी। कभी अम्मा बीमार हो जाती थी, कभी जीजी अपने बच्चों के साथ मायके आ जाती थी, कभी बहनों की शादी का बोझ था, तो कभी मकान की प्लानिंग। नीलकांत की लिस्ट में सरला के साथ सिर्फ सब्जी खरीदने जाने का प्लान था, क्योंकि सरला मूल भाव में कच्ची थी। चलो भी तैयार हो जाओ। नीलकांत को पता था सरला को मनाना समझाना बहुत कठिन नहीं, आखिर बिन दहेज के ब्याह लाया है उसको। नील, मैं अकेली जाऊंगी ट्रिप पर, सरकार ने लंबा अवकाश दिया है, पहले कुहू के पास दिल्ली जाऊंगी और फिर वहां से निकलूंगी एक समूह के साथ। सुनो यार, मैं समझता हूं कि हमारे कश्मीर न जाने के प्लान से तुम अपसेट हो रही हो, पर जरा सोचो, ये भी कोई वक्त है अपने बारे में सोचने का? मिली, अम्मा और जीजी सब क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? कुछ नहीं सोचेंगे नील, क्योंकि उनको तो पीएफ से पैसा चाहिए। तीसरी बार पीएफ से पैसा निकालने के बाद इस अकाउंट में जूठन ही बचेगी कुहू और मेरे लिए। सरला का स्वर स्पष्ट था। अम्मा और मिली गलियारे की देहरी पर खड़े चुपचाप ये बातचीत सुन रहे थे। जाओ नील, अम्मा और मिली इंतजार कर रहे हैं, मेरे साथ बहस में मत पड़ो। एक खुशनुमा दिन तनाव से भर उठा था। अम्मा और मिली नीलकांत का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले गए।
सरला बहुत देर तक अपने उकेरे चित्रों को देखती रही।

कहां है वो इस परिवार में, नील के जीवन में? उसकी इच्छाओं का कभी कोई मूल्य क्यों नहीं रहा? संभवतः इसलिए क्योंकि उसने हमेशा हां कहा। उसने कभी अपने लिए जीना नहीं सीखा। मोबाइल चलाया तो यूपीआई से डरती रही, सैलरी मिली तो डेबिट कार्ड रखने से डरती रही, बाहर निकली तो अम्मा के डर से रिक्शा नहीं किया, और तो और कभी अपनी सेहत की भी परवाह नहीं की। बिना दहेज के विवाह को वो खुद पर किया गया एक एहसान मान बैठी। अब तो उसके जीवन का आधा पड़ाव पार हो चुका है। अगर आज भी वो भय के साए में जीती रही तो अपने लिए कब जिएगी? क्या आज भी वो वही करेगी जो सब करना चाहते हैं? आज पहली बार सरला ने जोर देकर कहा, नहीं, मैं अपना जीवन दूसरों की आशा के अनुरूप नहीं जी सकती। मैंने आज तक अपना हर कर्तव्य निभाया है, पर अब मुझे अपने मन की भी सुननी है। मैं परिवार छोड़कर तो नहीं जा रही जो कोई ग्लानी पाल बैठूं। उसने कुहू का नंबर डायल किया, कोई जवाब नहीं आया, शायद वो व्यस्त हो। बैठक में आराम से पैर फैलाकर बहुत देर तक सरला लिली फीमेल ट्रैवलर्स का वो वेब पेज देखती रही जिसे वो पिछले 2 साल से फॉलो कर रही थी। उसने चश्मा लगाकर देखा तो तस्वीरों में उसे अम्मा की उम्र की स्त्रियां भी नजर आईं। कैसे खिले खिले से चेहरे थे उन सबके। वो कब इस तरह से खिलखिलाएगी? इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ सरला के पास था। इस वेब पेज पर कुछ स्त्रियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए वीडियो भी डाले थे। कैसी विचित्र बात है कि सबकी यात्रा संकोच और भय से ही शुरू हुई थी, और सरला की वो यात्रा कैसे शुरू होगी? यकीनन वो एक असहमति से शुरू होगी। सरला ने थरथराती उंगलियों से अपने डिटेल्स भरे और लिली फीमेल ट्रेवलर्स के साथ यात्रा पर जाने की स्वीकृति और राशि दोनों ही भेज दी। अब उसके अकाउंट में जितने पैसे थे वो इस समूह के साथ यात्रा करने के लिए पर्याप्त थे। मिली के विवाह में जो खर्च होना है वो उसे रोक नहीं सकती, पर अपनी कमाई से वो खुद को खुशी के कुछ लम्हे तो दे ही सकती है। सरला आज सच में खुश थी। उसने एक बड़ा यूपीआई पेमेंट अपने लिए किया था। उसने नीलकांत को ना कहा था। आज पहली बार उसने खुद को चुना था। जब नील, अम्मा और मिली बाजार से लौटे तो सरला सूटकेस की धूल झाड़ पहुंच रही थी, और उसने अपने ट्रैवल डिटेल्स भी कुहू और नीलकांत को भेज दिए थे। आज सबकी आंखों में एक प्रश्न था, पर सरला की आंखों में नई यात्रा पर जाने की चमक थी। आज उसे रोकने का साहस किसी में भी नहीं।

जीवन एक सरल रेखा, ये थी श्वेता उपाध्याय की लिखी कहानी। वाचन आपके इस दोस्त यूनुस खान का था। संपादन काजल भदरगे, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीजी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: छाया गीत लग जा गले। हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: मेरे सपने अब
1: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में।
1: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम, जिसे हम रिले कर रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोट।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफ नगर, रामानुजगंज और राजपुर में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये मिंढारी, प्रेमनगर, भगवानपुर, नवापारा, चीनिया, महावीरगंज, रामपुर, कनकपुर, कुंदीकला, जामदोहर, अखोरा, बदौली, जवा खाड़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के उदयपुर, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 17 है। ये लक्ष्मणगढ़, जगन्नाथपुर, सायर, ससकालो, मुड़ापारा, सुखरी भंडार, सरगा, ढोढ़ा गांव, बोड़ा झरिया, घासीडी, गढ़गांव, बैगहवा, बरडांड, कंडराजा, चोरकी पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव और कांसाबेल में हाथियों की कुल संख्या 34 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, चरईमारा, रानी कोम्बो, खड़ा माचा, कुकुरगांव, कुदरा झरिया, साजा पानी, तीता पाकेर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बाकारुमा, कापू और बोरो में हाथियों की कुल संख्या 136 है। ये गिरसा, पोटिया, आमगांव, रुपुंगा, तेजपुर, बेहरामार, बनहर, औरानारा, पुरुंगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के कुदमुरा में हाथियों की कुल संख्या 3 है। ये कलमी टिकरा, गिरारी, गीत कुंवारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के जडगा और केंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, कुकरी कादर, डंग बोरा, कोदवारी, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये बंगूरसिया, नवागांव, चक्रधरपुर, जुनवानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सारंगढ़, बिलाईगढ़ वन मंडल के गोमरडा अभ्यारण्य में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये आमाकोनी, नवापारा, सरायपाली, गंधरा चुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये कोठारी, पकरीत, ताल दादर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट, तौरेंगा और सीता नदी में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मुहकोट, बहीगांव, लिखमा, जोगी बिरदो, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एक

0: शीतल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार
2: दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमार हाथी हमार गोठ।

0: प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोट अभी आपने सुना। इसका प्रसारण आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से किया जा रहा था। FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रमों से हम आपको परिचित करा दें। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम भजन संध्या शाम 5:10 से। कार्यक्रम भजन संध्या में आज हम आपको सुनवाएंगे मीराबाई की रचना संजीव अभ्यंकर की आवाज में। हमारे केंद्र से कार्यक्रम चित्रपट संगीत आप सुनेंगे शाम 5:30 पर। हिंदी में समाचार रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से शाम 6:00। छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार रिले करेंगे आकाशवाणी रायपुर से शाम 6:10 पर। फिल्मी गीतों पर आधारित फॉरेन कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए का प्रसारण होगा शाम 6:20 से शाम 6:45 तक और शाम 7:00 से लेकर शाम 7:20 तक। शाम 6:45 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी रायपुर से। किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम होगा चौपाल शाम 7:20 पर। कार्यक्रम चौपाल में आज चर्चा का विषय रहेगा पोटाश पोषक तत्व का फसल उत्पादन पर प्रभाव। साथ ही सुनिएगा नसीहत बतख पालन एक लाभकारी व्यवसाय। इसके अलावा आप सुनेंगे हमारे सभी नियमित क्रम जैसे कि आज का टिप, कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव और आज का मौसम। गैर फिल्मी गाने आप सुन पाएंगे हमारे केंद्र से रात्रि 8:20 पर। फिल्म संगीत सुनिएगा रात्रि 8:30 पर। समाचार संध्या रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से रात्रि 8:45 पर। विविध भारती कार्यक्रम रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से रात्रि 9:00। कार्यक्रम विविध संगीत हमारे केंद्र से आप सुनेंगे रात्रि 10:00 और फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम रजनीगंधा का प्रसारण होगा रात्रि 10:30 पर। कार्यक्रम रजनीगंधा में आज हम आपको सुनवाएंगे लता मंगेशकर के गाए हुए कुछ सुरीले लोकप्रिय और सदाबहार गीत। हिंदी में समाचार रात्रि 11:00 और अंग्रेजी में समाचार रात्रि 11:05 पर रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से। ये थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagad@gmail.com।

FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत कार्यक्रम भजन संध्या। कार्यक्रम भजन संध्या में आज सुनिए मीराबाई की रचना संजीव अभ्यंकर के आवाज में।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
3: सखी सहेली,
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे,
1: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
5: मुझे याद सब है जरा जरा,
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
0: मन का सुकून दिल की आरती,
1: सुरीली संदली
6: भारती।
7: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagarh, यानी shrotarayagad@gmail.com।
8: कार्यक्रम भजन संध्या में इस वक्त आप सुन रहे हैं मीराबाई की रचना संजीव अभ्यंकर की आवाज में। लीजिए सुनिए ये रचना।

0: एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती,
1: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
2: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
2: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
2: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
4: सखी सहेली,
2: बॉम्बे टॉकीज और
5: सेल्यूलॉइड के सितारे,
2: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
6: मुझे याद सब है जरा जरा,
1: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
2: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
1: मन का सुकून, दिल की आरती,
2: सुरीली संदली।
7: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या। इसका प्रसारण आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से किया जा रहा था। कार्यक्रम भजन संध्या के अंतर्गत आज आपने सुना मीराबाई की रचना संजीव अभ्यंकर की आवाज में। एफएम

107 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम चित्रपट संगीत में पहले हम आपको सुनवाते हैं विजयपत फिल्म का गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। जहीर काजमी की रचना है और अनु मलिक का संगीत है।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: कार्यक्रम चित्रपट संगीत मिल जाए, आप सुनिए कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजों में दीवाना फिल्म का गीत। गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं नदीम शर्मा।

0: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
2: कार्यक्रम चित्रपट संगीत में लीजिए आप सुनिए फूल और अंगार फिल्म का गीत, कुमार सानू और सुजाता की आवाज़ों में। रानी मलिक ने इस गीत को लिखा है और अनु मलिक ने इसकी धुन तैयार की है।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
1: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
2: कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजों में शतरंज फिल्म का गीत। गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं आनंद मिलिंद।

शतरंज फिल्म के इस दो गाने के साथ ही कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में हिंदी में समाचार रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबुधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
1: स्वीकार करना ही इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम करे और विजन का परिचय दिखाया यह बहुत ही सराहनीय। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। एक रिपोर्ट।
2: दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कोऑपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। डॉ जयशंकर ने आज मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हसन से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति पर समीक्षा की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराग्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैनिक समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। श्री अराग्ची ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए नई दिल्ली आए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि उनके खिलाफ विभागीय जाँच कराई जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिनों में वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कार पूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलालाउथ वितिदर्शन से हो रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण।

अब से थोड़ी देर बाद शाम 6:10 पर छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार रिले करेंगे आकाशवाणी रायपुर से। फिल्मी गीतों पर आधारित फोन इन कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए। आप सुनेंगे शाम 6:20 से शाम 6:45 तक और इसका शेष भाग आप सुनेंगे शाम 7:00 से लेकर 7:20 तक। प्रादेशिक समाचार हिंदी में रिले करेंगे आकाशवाणी रायपुर से शाम 6:45 पर। किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम होगा चौपाल शाम 7:20 पर। इसमें चर्चा का विषय रहेगा पोटाश पोषक तत्व का फसल उत्पादन पर प्रभाव। साथ ही सुनिएगा नसीहत बतख पालन एक लाभकारी व्यवसाय और साथ ही सुनिएगा आज का टिप कृषक प्रश्न मंच और आज का मंडी भाव आज का मौसम। गैर फिल्मी गीत हमारे केंद्र से आप सुनेंगे रात्रि 8:20 पर। फिल्म संगीत सुनिएगा रात्रि 8:30 पर। समाचार संध्या हम लेकर आएंगे रात्रि 8:45 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। विविध भारती कार्यक्रमों का आनंद उठाइएगा रात्रि 9:00 से और हमारे केंद्र से आप सुनेंगे कार्यक्रम विविध संगीत रात्रि 10:00। फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम रजनीगंधा का प्रसारण होगा रात्रि 10:30 पर। कार्यक्रम रजनीगंधा में आज हम आपको सुनवाएंगे लता मंगेशकर के गाए हुए कुछ सुमधुर लोकप्रिय और सदाबहार गीत। हिंदी में समाचार रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से रात्रि 11:00 और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से। ये थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की।

0: AIR at 90. ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:10 होने को हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी रायपुर से।

ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 6:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।

0: छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में आकाशवाणी रहा ले वाकाथन के आयोजन करेगी। अब समाचार विस्तार ले। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA 21 जून के नीट UG 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करही। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ह कहिन के विद्यार्थी सरकार के प्राथमिकता है और सरकार ओमन बर संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ह कहिन कि NTA ह मेडिकल में प्रवेश बर नीट UG 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून के आयोजित करे के घोषणा करे है। शिक्षा मंत्री ह कहिन कि वर्तमान में OMR मोड में आयोजित होवैया नीट UG परीक्षा अवैया बछर ले कंप्यूटर आधारित यानी CBT माध्यम ले होही। श्री धर्मेंद्र प्रधान ह बताइन कि विद्यार्थी मन ल परीक्षा बर अपन पसंद के शहर चुने के मौका मिलही। दुनिया भर में कच्चा तेल के कीमत में आए उछाल के बाद तेल कंपनी मन ह पेट्रोल और डीजल के कीमत में 3 रुपया प्रति लीटर के बढ़ोतरी करे है। दिल्ली में अब पेट्रोल के कीमत 97.77 रुपया प्रति लीटर जबकि डीजल के कीमत 90.67 रुपया प्रति लीटर हो गए हैं। उन्हें राजधानी रायपुर में पेट्रोल के दाम 103.58 रुपया और डीजल के दाम 96.57 रुपया हो गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रदेशवासी मन ले पेट्रोल और डीजल के उपलब्धता लेके चिंता नहीं करे के अपील करी है। उमन कहिन कि छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल के पर्याप्त भंडारण मौजूद है और प्रदेश के जम्मू ऑयल डिपो में नियमित रूप ले ईंधन के आपूर्ति करे जाते। मुख्यमंत्री है बताइन कि राज्य सरकार और ऑयल कंपनी आपसी समन्वय के संग स्थिति में सरलक नजर बनाए हुए है। उमन कहिन कि केंद्र सरकार घलो ईंधन आपूर्ति ले के जरूरी तैयारी करे है और कोनो तरह के समस्या नहीं है। श्री साय लोगन मल्ले अफवाह ऊपर ध्यान नहीं दे और जरूरत के अनुसार ही ईंधन लेके आग्रह करें। यही बीच राज्य के खाद्य सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले हकीन कि आम लोगन डहाले पाछू 2 दिन में घबराहट के सेती पेट्रोल डीजल के खरीदी करे गए है जेखर ले एकर खपत में अप्रत्याशित बढ़ोतरी दर्ज हुए है। एकर सेती कुछ एक जगह में कृत्रिम अभाव के स्थिति बन गए है। उमन लोगन मल्ले कोनो भी तरह के अफवाह या घबराहट के स्थिति में पेट्रोल डीजल के खरीदी नहीं करे के अपील करीन है। केंद्रीय भूमि संसाधन विभाग के सचिव नरेंद्र भूषण के अगुवाई में उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल है धमतरी जिला के मगरलोड विकास खंड के दौरा करके प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वाटरशेड विकास परियोजना के निरीक्षण करें। इस दौरान ओमन सुरक्षात्मक सिंचाई आजीविका संवर्धन और मृदा के संग्रह जल संरक्षण ऊपर केंद्रित आने आने पहलू के समीक्षा करें। उन्हें केंद्रीय सचिव हां सांकरा गांव में वाटरशेड विकास घटक और मनरेगा के अंतर्गत निर्मित स्टाप डैम के घलो अवलोकन करें। प्रतिनिधिमंडल हां सौगा गांव में 5 एकड़ के वृक्षारोपण स्थल के घलो दौरा करें जहां 1000 ले ज्यादा अमरूद और लिमऊ के रुख लगाए गए हैं। ऐसने केंद्रीय सचिव धमतरी में नक्शा प्रोजेक्ट के प्रगति के निरीक्षण करें। इस दौरान ओमन प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन समय सीमा में पूरा करे और सर्वे टीम के संख्या बढ़ाए के निर्देश कलेक्टर लदिन। सुनैया मल्ल बता दन के प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषय ऊपर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में ए बखत गर्मी के मौसम में लू ले बचाव और सावधानी ऊपर स्वास्थ्य विभाग के एकीकृत रोग निगरानी परियोजना रायपुर के अधिकारी डॉक्टर विमल किशोर राय ले गए भेंटवार्ता के प्रसारण करे जाही। एक प्रसारण काली 16 मई के आकाशवाणी केंद्र रायपुर डहाले FM और प्राइमरी चैनल में बिहनिया 9 बजे ले करे जाही। इला छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के जम्मू केंद्र रिले करही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावे। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचा थन छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: आगु बढ़बो माचे समाचार कुती। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के 11वां दीक्षांत समारोह आज आयोजित करेगी। સમારોહમાં રાજ્યપાલ રમેન ડેકા અને મુખ્યમંત્રી વિષ્ણુદેવ સાયહ આને આને સંકાયમાં પ્રાવીણ્ય સૂચિમાં જગા પાયે મેધાવી વિદ્યાર્થી મલ્લ તેરાઠીન સ્વર્ણ સાત

0: जत औ दूठिन कासे पतक दिन संग्रह 128 शोधार्थी मनला पीएचडी 518 विद्यार्थी मनला स्नातकोत्तर औ 1234 विद्यार्थी मनला स्नातक के उपाधि देगेस। समारोह ला संबोधित करत राज्यपाल ह विद्यार्थी मनला बधाई देत किहिन के दीक्षांत समारोह छात्र जीवन के एक बहुत बड़ा मौका होते। ये केवल डिग्री पाए के दिन नहीं है बल्कि भविष्य के शुरुआत के प्रतीक हरय। श्री डे कहा किहिन के आज कृषि परिवर्तन के दौले गुजरत है। किसान और युवा मन लघलो आधुनिक और उन्नत खेती कोती पढ़ना चाहिए। उन्हें मुख्यमंत्री है विद्यार्थी मन ले ड्रोन एआई और डिजिटल तकनीक ले खेती ले जोर के किसान और वैज्ञानिक मन के बीच सेतु बने के आह्वान करिन। उमन किहिन कि कृषि विश्वविद्यालय है कृषि शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करे है और वैज्ञानिक ढहर ले विकसित नवा फसल किस्म और आधुनिक तकनीक ले किसान मन ला बड़का फायदा मिला थे। समारोह में कृषि मंत्री रामविचार नेताम नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह और कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल मौजूद रहीन। आकाशवाणी के 90 बछर पूरा होए के उपलक्ष्य में आज छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में आकाशवाणी डहले वाकाथन के आयोजन करेगीस। एमा आकाशवाणी के कर्मचारी सेवानिवृत्त अधिकारी समाचार वाचक श्रोता और शहर के प्रमुख नागरिक शामिल हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दूरदर्शन रायपुर के उप महानिदेशक संजय कुमार मिश्रा रहीन। विशेष अतिथि के रूप में पत्र सूचना कार्यालय रायपुर के उप निदेशक रमेश जयभाय और माय भारत के क्षेत्रीय प्रमुख अर्पित तिवारी शामिल हुईन। वाकथन आज बिहनिया लगभग 7 बजे सिविल लाइन स्थित आकाशवाणी भवन ले शुरू हुईस। ए शहर के आने आने रद्दाले होत आकाशवाणी परिसर में ही सिराईस। आकाशवाणी केंद्र रायपुर के उप महानिदेशक वी राजेश्वर है बताएं कि ये आयोजन आकाशवाणी के गौरवशाली 90 बछर के सफल यादगार बनाए बर करेगे है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के संग आकाशवाणी के स्थापना 8 जून 1936 में हुई रहीस। ये देश के सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है जौन आने आने भाखा में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत मनोरंजन प्रेरक और जन उपयोगी कार्यक्रम के प्रसारण करते। रायगढ़ जिला के अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज दिव्यांशु देवांगन हा मिस्र में आयोजित जूनियर वर्ल्ड कप के 10 मीटर एयर राइफल मिक्स डबल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते है। ये उपलब्धि पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी हा दिव्यांशु ला फोन करके बधाई दीन है। उमन विश्वास जताइन कि दिव्यांशु भविष्य में घलो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में देश और प्रदेश के नाम रोशन करत रही। उन्हें स्वर्ण पदक विजेता दिव्यांशु है कहन कि प्रदेशवासी मन के स्नेह और निरंतर प्रोत्साहन ही उमल्ला ए शिखर तक पहुंचाए के ऊर्जा दे है। अब पेश है मौसम के हाल। मौसम विभाग दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई के केरल तट में पहुंचे के संभावना जताए है। इही बीच छत्तीसगढ़ में अवैया 24 घंटा के दौरान कई जगह में हल्का वर्षा होए के संभावना है। उन्हें एक दो जगह में गरज चमक के संग अंधर चले और गाज गिरे के चेतावनी घलो दे गए है। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान में कोनो विशेष बदलाव होए के संभावना नहीं है जबकि 17 मई ले अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज करे जा सकत है। आज बिहनिया मौसम के मिजाज बदले के सेती राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कुछ एक जिला में तेज हवा के संग तेज वर्षा हुईस। एखर ले लोगन मल्ला गर्मी ले कुछ राहत मिलीस। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फेर। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA 21 जून के नीट UG 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करही। दुनिया भर में कच्चा तेल के कीमत में आए उछाल के बाद तेल कंपनी मन पेट्रोल और डीजल के कीमत में 3 रुपया प्रति लीटर के बढ़ोतरी करे है। और आकाशवाणी के 90 बछर पूरा होए के उपलक्ष्य में आज छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में आकाशवाणी डहले वाकाथन के आयोजन करेगी। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:20 हुए हैं। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम, लीजिए फिर सुनिए।
2: आकाशवाणी रायगढ़ के फोन इन कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ है आपका रेडियो दोस्त कृष्ण कुमार साव। नमस्कार कर रहे हैं और कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस फोन कॉल से। हेलो,
3: हेलो।
2: हाँ, कार्यक्रम है लीजिए फिर सुनिए। कौन और कहाँ से बोल रहे हैं?
3: मोहम्मद हारून कुल्ले, ग्राम अकबरपुर,
2: कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए में आपका स्वागत है। बताइए, आज हमारे इस कार्यक्रम में आप क्या सुनना चाहते हैं?
3: साजन चले ससुराल।
2: साजन चले ससुराल, कौन सा गाना?
3: तुमसे धोखेबाज है।
2: अच्छा मोहम्मद हारून जी, ये बताइए आपके मध्य प्रदेश का अभी जो है वर्तमान समय कैसे चल रहा है? धूप और गर्मी की क्या स्थिति है?
3: गर्मी तो बहुत तेज है, गर्मी तो लू चल रही है।
2: अच्छा अच्छा, तो अभी गर्मी उर्मी से बचाव के लिए आप कुछ तरीके अपना रहे हैं?
3: जी जी अपना रहे हैं, घर से हम कहीं नहीं निकल रहे, बाहर नहीं निकल रहे।
2: बाहर नहीं निकल रहे हैं
3: जी। और आप इधर रायगढ़ में?
2: रायगढ़ में भी खूब गर्मी पड़ रही है। तो चलिए आज आपके पसंद पर हम जो है ये कार्यक्रम में लीजिए फिर सुनिए में आपके पसंद का एक गीत बजा रहे हैं। लीजिए सुनिए अपने रेडियो सेट पर।
3: धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ लीजिए, फिर सुनिए, कार्यक्रम है। कहाँ से और कौन बोल रहे हैं?
1: कॉलोनी
0: अच्छा, बाधवानी जी, आपके पत्र
1: बाकी
0: वगैरह
1: बच्चे।
0: बहुत आते हैं,
1: हाँ
0: आपके पत्र वगैरह बहुत आते हैं, ईमेल्स वगैरह आते
1: हाँ
0: हैं बाधवानी
1: बहुत
0: जी।
1: बहुत खुशी हो रही है। आप इतने होगा सब इंतजार कर रहे हैं आप लोगों का।
0: जी जी
1: हाँ
0: जी
1: बच्चों का हर बार सुनते रहते हैं। आपका शुभ नाम भूल गया हम।
0: हाँ, मैं कृष्ण कुमार साहू बोल रहा हूँ
1: अच्छा हाँ पहली बार।
0: आज।
1: हाँ
0: हाँ,
1: हाँ
0: आप
1: और
0: प्लीज़
1: क्या
0: कार्यक्रम
1: बोलते
0: लीजिए,
1: हैं।
0: फिर सुनिए, मैं आपका स्वागत है।
1: अरे भाई फोन लगता ही नहीं था ना, कभी भूल जाते थे। अब दिन तो क्या गर्मी कारण। अच्छा दस नाम ले लूँ क्या।
0: हाँ बताइए, आप अपने दोस्तों के नाम ही ले लीजिए।
1: हाँ, तो आपका है जिन राज श्रीवास है लाल टंकी सुभाष चौक से दुर्गा चौक से, और लाल टंकी से चेतन दास लास्ट में है जेल रोड से बजरंग साहब, वो आपका अरुण तिवारी और संतोष वाधवानी।
0: अच्छा बाधवानी जी, ये बताइए, आज हमारे इस प्रोग्राम पे जो है, आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: मनमोह जी का है। हाँ लता मंगेशकर का है। मैं तो तुम संग
0: हाँ चलिए, हम आपको आपकी पसंद का ये गीत सुनवा रहे हैं आपके अपने रेडियो सेट
1: आप
0: पर।
1: इतना
0: फोन करने के लिए बहुत बहुत
1: आवाज
0: धन्यवाद।
1: इतनी अच्छी वाणी से मन गदगद हो गया। बहुत खुशी हुई आप लोग हमारा ध्यान देते रहते हैं। वाणी भाई को बहुत बहुत
0: जी
1: धन्यवाद।
0: जी जी धन्यवाद।

0: हेलो,
1: हेलो,
0: लीजिए फिर सुनिए।
1: नमस्कार जी। जी
0: हाँ नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: मैं ग्राम बड़े खेरा से बोल रहा हूँ जी। सावन
0: अपना नाम बताइए।
1: कुमार रात्रे जी। हाँ
0: सावन कुमार रात्रे जी,
1: जी, सब
0: बताइए रात्रे जी।
1: बढ़िया जी।
0: चलिए, हेलो, कार्यक्रम है, लीजिए फिर सुनिए।
1: जी नमस्ते,
0: हाँ नमस्ते, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बचोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: उज्जैन से बोल रहे हैं, प्रेम
1: जी हाँ
0: सिसोदिया जी,
1: जी, बिल्कुल सर जी,
0: महाकाल की नगरी से बोल रहे हैं।
1: बिल्कुल, महाकालेश्वर बाबा की नगरी में आपका स्वागत है जी।
0: हमारे इस कार्यक्रम फोन इन लीजिए फिर सुनिए में आपका स्वागत है। बताइए सिसोदिया
1: सर
0: जी, आज हमारे इस कार्यक्रम में आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: जी, सर फिल्म का नाम है कुली नंबर 1, और गाने के बोले जब दिल न लगे दिलदार हमारी गली आ जाना।
0: कुली नंबर वन का ये गीत। ये बताइए आप रेडियो से कब से जुड़े हुए हैं?
1: जी वैसे तो मैं पहले 2005 से रेडियो से जुड़ा हुआ हूँ।
0: जी
1: 2005 से लगातार 2019 तक मैंने रेडियो पर कार्यक्रम सुने। उसके बाद में जब कोरोना टाइम आया था तो कुछ समय के लिए रेडियो के कार्यक्रम बंद कर दिए गए थे। उस समय पर हमारा साथ रेडियो से छूट चुका था, लेकिन फिर से 2026 में मेरे मोबाइल ऐप पे रेडियो के कार्यक्रम से जुड़ा हुआ हूँ।
0: अच्छा, बहुत

0: हम अगर कहीं बाहर भी जाए ना तो फिर भी मोबाइल पर कार्यक्रम सुन सकते हैं। जब से न्यूज ऑन AIR का नेटवर्क बढ़ा है ना तो काफी श्रोता भी बढ़ चुके हैं, हर राज्य के कार्यक्रम सुनने को मिल जाते हैं और काफी अच्छे से मतलब स्टेशन से भी जुड़ने का मौका मिलता है और काफी श्रोता से जान पहचान भी हमारी हो गई है।
1: चलिए, ये जानकर हमको बहुत खुशी हुई कि आप जो है कहीं पर भी जो है हमारे आकाशवाणी रायगढ़ के विभिन्न कार्यक्रमों को आप सुनते हैं, ये जानकर हमको बहुत खुशी हुई। तो लीजिए, आपकी पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कुली नंबर 1 का ये गीत आपके अपने रेडियो सेट पर।
0: जी, थैंक यू सो मच, मुझे आपसे बात करके सच में बहुत अच्छा लगा। ओके, बाय।

0: हेलो, कार्यक्रम है, लीजिए फिर सुनिए।
1: नमस्कार सर जी।
0: हाँ नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: शाहदुल शहर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से रामकुमार रिवार बात कर रहा हूँ सर जी।
0: अच्छा, राम कुमार जी बात कर रहे हैं।
1: जी सर।
0: राजस्थान का क्या हालचाल है? वहाँ गर्मी तो काफी पड़ रही होगी।
1: नहीं सर जी, अब की बार तो मौसम ने बहुत करवटें बदली है और बारिश आ जाती है, कभी अंधेरी आ जाती है, तो इस तरह से मौसम अभी

0: तक सही नहीं चल रहा है, उतार चढ़ाव चल रहा है। अभी सुबह मौसम ठंडा था और अभी अंधेरी चल रही है, साथ में बादलवाई हो गई है, बारिश की संभावना बनी हुई है।
1: समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन सा मौसम चल रहा है।
0: हाँ, ये समझ नहीं आ रहा है कि मौसम ने इतने करवटें क्यों बदली है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि हम लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक नहीं हुए हैं और पेड़ पौधों की तरफ ध्यान कम दिया है और प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और अपने स्वार्थ के लिए हम बस ये छेड़खानी करते हैं, तो इसकी वजह से ये मौसम परिवर्तन रहता है।
1: हाँ, आपने सही कहा, हम लगातार पर्यावरण का जो है नुकसान करते ही जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमको पेड़ पौधे लगाने होंगे, तभी जाके हम इस जो परेशानी से ही राहत पा सकते हैं,
0: जी सर,
1: है ना।
0: ऐसा है कि एक बात तो हम लोग खुश हो जाते हैं कि गर्मी के मौसम में ठंडा मौसम हो गया, बारिश आ गई, अच्छा है, लेकिन ये आने वाले समय के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है।
1: जी, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए ये सबक है कि हम आगे से जो है उसके लिए अच्छा से तैयार रहें, खूब पेड़ पौधे लगाएं और प्रदूषण से पूरे पृथ्वी को बचाएं। अच्छा, ये
0: बिल्कुल सर,
1: बताइए, हम आज आपने हमारे इस कार्यक्रम में फोन किया है, तो आज आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
0: सबसे पहले तो मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आकाशवाणी का 90 साल का सफर तय कर रहा है। हमारी तरफ से पूरे आकाशवाणी परिवार को 90 साल के सफर का हम लुत्फ उठा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। हमारे लिए आकाशवाणी हमारा गुरु है, हमारी प्रेरणा है और हमारे लिए बहुत कुछ देता है, हमें सीखने को बहुत कुछ मिला है आकाशवाणी से। मैं पिछले 50 सालों से आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ हूँ और 50 सालों में मैंने बहुत कुछ पाया आकाशवाणी से, और मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि निरंतर ये जारी रहे, युगों युगों तक आकाशवाणी जारी रहे और लोगों को इसी तरह से अपना प्रेम, अपना प्यार, अपना स्नेह, अपना मनोरंजन और ज्ञान की जो वृद्धि कर रहा है आकाशवाणी, लोगों के दिमाग में जो जरूरत के अनुसार जो प्रोग्राम आप तैयार करके हमारे तक पहुँचाते हो, हम आपका आभारी है। शुभकामना देना चाहते हैं आकाशवाणी के लिए। पूरे हिंदुस्तान के जितने भी आकाशवाणी है वो पूरी दुनिया में ऐसे आकाशवाणी कहीं भी रेडियो स्टेशन नहीं मिलेगा जितने आकाशवाणी हिंदुस्तान की आकाशवाणी लोगों को प्रेरणा देती है, शिक्षा देती है, तो मैं इसका लिए आभारी हूँ क्योंकि हमारा गुरु है, हमारी रूह की खुराक है।
1: आकाशवाणी के इस समर्पण, इस इतने प्रेम और इतनी अच्छी भावनाओं के लिए हम आपको जो है नमन करते हैं। अच्छा, यह आप बताइए, इस कार्यक्रम में आज आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
0: पर गाइड फिल्म का गीत है, पुरानी फिल्म है, 1965 में आई थी, किशोर कुमार और लता जी की आवाज में, गाता रहे मेरा दिल। और जितने आपकी मीठी आवाज का आनंद ले रहे हैं उन सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं।
1: तो लीजिए, आपके पसंद का सुनिए ये प्यारा सा नगमा।
2: गाता

0: अभी आप सुन रहे थे फॉरेन कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए। इसका शेष भाग आप सुनेंगे शाम 7 बजे से। शाम 6:45 हुए हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार हिंदी में रिले करेंगे आकाशवाणी रायपुर से।
1: 6:45 हुए हैं। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
3: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
2: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
3: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
2: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
3: क्यों?
2: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
4: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
5: गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
6: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
5: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
6: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
5: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
6: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
4: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
7: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
6: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
7: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
6: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
7: आकाशवाणी से।
4: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
6: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
7: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
6: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
4: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
8: आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। मुख्यमंत्री ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और जरूरत के अनुसार ही पेट्रोल डीजल लेने की अपील की। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज रायपुर में वॉकाथॉन का आयोजन किया गया और मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई को केरल तट पर पहुंचने की संभावना जताई। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने के आसार। अब समाचार विस्तार से। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं राजधानी रायपुर में पेट्रोल के दाम 103.58 रुपए और डीजल के दाम 96.57 रुपए हो गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों से पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को लेकर चिंता नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडारण उपलब्ध है और प्रदेश के सभी ऑयल डिपो में नियमित रूप से ईंधन की आपूर्ति की जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार और ऑयल कंपनियां आपसी समन्वय के साथ स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने भी ईंधन आपूर्ति को लेकर जरूरी तैयारियां की हैं और किसी तरह की समस्या नहीं है।
9: मैं कहना चाहूंगा प्रदेशवासियों को कि जिस तरह से डीजल पेट्रोल को लेकर लोग पैनिक हो रहे हैं, उनको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे प्रदेश में पेट्रोल डीजल गैस की पर्याप्त स्टॉक है और जिस तरह से पहले वो लेते रहे हैं उसी तरह से आगे लेते रहें, किसी भी तरह से उनको मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है।
8: इस बीच राज्य की खाद्य सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले ने कहा है कि आम लोगों द्वारा पिछले दो दिनों में पेट्रोल डीजल की पैनिक खरीदी की गई है, जिससे इसकी खपत में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज हुई है। इस कारण कुछ स्थानों पर कृत्रिम अभाव की स्थिति निर्मित हो गई है। उन्होंने लोगों से किसी भी तरह की अफवाह या घबराहट की स्थिति में पेट्रोल डीजल की खरीदी नहीं करने की अपील की है। उधर गरियाबंद कलेक्टर ने पेट्रोल डीजल के वितरण को लेकर निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार दो पहिया वाहन में 300 रुपये और चार पहिया वाहन में अधिकतम 1,000 रुपये तक पेट्रोल देने की सीमा तय की गई है। केंद्रीय भूमि संसाधन विभाग के सचिव नरेंद्र भूषण के नेतृत्व में उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने धमतरी जिले के मगरलोड विकासखंड का दौरा कर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वाटरशेड विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया। वहीं केंद्रीय सचिव ने सांकरा गांव में वाटरशेड विकास घटक और मनरेगा के अंतर्गत निर्मित स्टॉप डैम का भी अवलोकन किया। प्रतिनिधिमंडल ने सौंगा गांव में 5 एकड़ के वृक्षारोपण स्थल का भी दौरा किया, जहां 1,000 से अधिक अमरूद और नींबू के पेड़ लगाए गए हैं। इसी तरह केंद्रीय सचिव ने में नक्शा प्रोजेक्ट की प्रगति का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन समय सीमा में पूरा करने और सर्वे टीमों की संख्या बढ़ाने के निर्देश कलेक्टर को दिए। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आकाशवाणी केंद्र द्वारा वाकाथॉन का आयोजन किया गया। इसमें आकाशवाणी के कर्मचारी, सेवानिवृत्त अधिकारी, समाचार वाचक, श्रोता और शहर के प्रमुख नागरिक शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दूरदर्शन रायपुर के उप महानिदेशक संजय कुमार मिश्रा थे। इस अवसर पर श्री मिश्रा ने कहा कि भारत की राष्ट्रीय यात्रा में आकाशवाणी भागीदार रहा है और आकाशवाणी ने समय के साथ बदलाव को अपनाया है।
10: आकाशवाणी हेरिटेज संस्थान है भारत के लिए। भारत की राष्ट्रीय यात्रा जो रही है, सांस्कृतिक यात्रा रही है, आध्यात्मिक यात्रा रही है, ये सभी में पार्ट रहा है आकाशवाणी। समय के साथ इस बीच में जो बदलाव आए हैं, आकाशवाणी में भी बदलाव आए हैं, डिजिटल रूप से भी उपलब्ध है और सभी चीज़ों में बदलाव को अपनाया है, आत्मसात किया है और आज भी देश की 98% जनता को तक पहुँच है।
8: कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में पत्र सूचना कार्यालय रायपुर के उपनिदेशक रमेश जयभाई और माय भारत के क्षेत्रीय प्रमुख अर्पित तिवारी शामिल हुए। वाकाथन आज सुबह लगभग 7 बजे सिविल लाइन्स स्थित आकाशवाणी भवन से शुरू हुआ। ये शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए आकाशवाणी परिसर में ही समाप्त हुआ। आकाशवाणी केंद्र रायपुर के उप महानिदेशक वी राजेश्वर ने बताया कि ये आयोजन आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के सफर को यादगार बनाने के लिए किया गया है।
11: जो वाकाथन एंड मैराथन इसलिए आकाशवाणी ऑर्गेनाइज किया है कि 8 जून 2026 को 90 साल पूरे हो रहे हैं। आकाशवाणी इंडिपेंडेंस दिलवाने में भी उनका योगदान था। इसमें हम लोग जितना डाइवर्सिटी ऑफ डायलेक्ट लैंग्वेजेस में प्रसारण करते हैं वो कोई मीडिया दुनिया में नहीं करते हैं। जिसका लिपि नहीं है उस भाषा में भी हम ब्रॉडकास्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बस्तर रीजन में गोंडी, हल्बी, बटरी का कोई लिपि नहीं है और आकाशवाणी इज ए मदर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है।
8: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA 21 जून को नीट UG 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि NTA ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट UG 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में OMR मोड में आयोजित होने वाली नीट UG परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी CBT माध्यम से होगी।
12: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारी विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने थोड़ी एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए, 2 से शुरू होगा 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुँच जाएगा।
8: श्री प्रधान ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया गया। समारोह में राज्यपाल रमन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विभिन्न संकायों में प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को 13 स्वर्ण, 7 रजत और 2 कांस्य पदक प्रदान किए। साथ ही 128 शोधार्थियों को पीएचडी, 518 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर और 1234 विद्यार्थियों को स्नातक की उपाधि प्रदान की गई। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि आज कृषि परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, किसानों और युवाओं को भी आधुनिक और उन्नत खेती की ओर बढ़ना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से ड्रोन, एआई और डिजिटल तकनीकों को खेती से जोड़कर किसानों और वैज्ञानिकों के बीच सेतु बनने का आह्वान किया। समारोह में कृषि मंत्री रामविचार नेताम, नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व निदेशक डॉ अशोक कुमार सिंह और कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ गिरीश चंदेल उपस्थित थे। रायगढ़ जिले के अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज दिव्यांशु देवांगन ने मिस्र में आयोजित जूनियर वर्ल्ड कप की 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड डबल्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। इस उपलब्धि के लिए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने दिव्यांशु को फोन कर बधाई दी है। उन्होंने विश्वास जताया कि दिव्यांशु भविष्य में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश और प्रदेश का नाम रोशन करते रहेंगे। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में के तहत इस बार गर्मी के मौसम में लू से बचाव और सावधानी पर स्वास्थ्य विभाग की एकीकृत रोग निगरानी परियोजना रायपुर के अधिकारी डॉ विमल किशोर रॉय से ली गई भेंटवार्ता का प्रसारण किया जाएगा। इसका प्रसारण कल 16 मई को आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा FM और प्राइमरी चैनल पर 9:00 से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल में आज से पर्यावरण दिवस अभियान शुरू हो गया है। मंडल रेल प्रबंधक दयानंद ने रायपुर रेल मंडल के अधिकारियों कर्मचारियों को पर्यावरण बचाने के लिए दैनिक जीवन में हर संभव प्रयास करने, बदलाव लाने और पर्यावरण के अनुकूल आदतों तथा व्यवहार के महत्व को समझाते हुए शपथ दिलाई। ये अभियान 5 जून तक चलेगा। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई को केरल तट पर पहुंचने की संभावना जताई है। इस बीच छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। वहीं एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने तथा आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 17 मई से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। आज सुबह मौसम का मिजाज बदलने के कारण राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कुछ जिलों में तेज हवा के साथ तेज बारिश हुई। इससे को गर्मी से कुछ राहत मिली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। मुख्यमंत्री ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और जरूरत के अनुसार ही पेट्रोल डीजल लेने की अपील की। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज रायपुर में वॉकथन का आयोजन किया गया और मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई को केरल तट पर पहुंचने की संभावना जताई। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने के आसार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है।
2: FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फोन इन कार्यक्रम, लीजिए फिर सुनिए का शेष भाग।

0: हेलो, कार्यक्रम भूल लीजिए, फिर सुनिए।
1: नमस्कार।
0: हाँ नमस्कार, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: राजू यादव, बुंदेलखंड हमीरपुर से।
0: राजू यादव जी बोल रहे हैं, बुंदेलखंड
1: हमीरपुर से।
0: हमीरपुर से।
1: जी
0: बताइए यादव जी, आज हमारे कार्यक्रम में आपने फोन किया है और कौन से गीत की फरमाइश कर रहे हैं आप?
1: गाना तो सुनना चाहते हैं। मूवी का नाम रहेगा राजा हिंदुस्तानी का, आई हो मेरी जिंदगी में तुम महार बन के।
0: राजा हिंदुस्तानी।
1: जी
0: अच्छा, ये फिल्म के गीत आपको बहुत ज्यादा पसंद है क्या?
1: हाँ बहुत ज्यादा पसंद है इन फिल्मों के गीत।
0: अच्छा हाँ, कोई खास वजह है राजू यादव जी?
1: अब खास वजह ये है कि मैं ये राजा हिंदुस्तानी मूवी देखता रहता हूँ और तो इसलिए मुझे, और सैनिक भी देखता हूँ तो मुझे इन गीतों की ज्यादा चॉइस रहती है।
0: चलिए, आप सब आपकी पसंद पर जो है हम आपके अपने रेडियो सेट पे सुनवा रहे हैं ये।

0: हेलो।
1: हेलो, नमस्ते सर।
0: हाँ नमस्कार, कार्यक्रम है, लीजिए फिर सुनिए। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कौन और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: धन्यवाद सर। मैं राधाकांत भोई, बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा से बोल रहा हूँ सर।
0: आपका शुभ नाम?
1: राधाकांत भोई। जी
0: राधाकांत भोई,
1: सर।
0: ये बरगढ़ उड़ीसा से बोल रहे हैं।
1: हाँ जी सर।
0: अच्छा, ये बताइए भोई जी, आपके उड़ीसा में हमारे रायगढ़ आकाशवाणी अच्छे से सुनाई देता है?
1: जी सर, अच्छी तरह से सुनाई देता है।
0: तो आपके पास अपना रेडियो सेट है या कोई दूसरे संसाधन से सुनते हैं आप?
1: रेडियो सर भी है, लेकिन सर हम मोबाइल से ज्यादा सुनते हैं। डायरेक्ट
0: अच्छा,
1: सुनाई देता है, हमारे FM में सुनाई देता है मोबाइल पे। जी
0: जी,
1: सर। जी
0: क्या काम करते हैं आप?
1: सर, हम खेती बाड़ी करते हैं सर।
0: अच्छा, तो ये हमारे आकाशवाणी के सारे प्रोग्राम सुन पाते हैं? कौन कौन से खास प्रोग्राम सुनते हैं हमारे यहाँ से?
1: जी सर, हम लोग किसान बाड़ी है, चौपाल और किसान बाड़ी, छत्तीसगढ़ी लोक संगीत, ये सारे कार्यक्रम हमसे बहुत अच्छा लगता है सर।
0: अच्छा, आज आपने जो
1: सर,
0: है
1: मेरा दूसरी बार फोन लगाया है, पहले महीने से लगा था
0: अच्छा,
1: बार।
0: नहीं हम भी चाहते हैं कि उन श्रोताओं को भी हमारे कार्यक्रम में फोन लगाने का, फोन से बात करने का अवसर मिले, इसलिए
1: जी सर।
0: हमारे जितने भी श्रोताओं के फोन आते हैं हम उनसे कहते हैं कि आप कम से कम 1 महीने बाद कम से कम फोन करें।
1: जी सर, मैं 1 महीने बाद ये ट्रैकर किया और आज लग गया सर मेरे
0: वाह,
1: दोबारा।
0: चलिए बहुत अच्छा लगा है जान करके। अच्छा भोई जी, ये बताइए आज हमारे कार्यक्रम में आपने फोन किया, कौन से गीत सुनना चाहते हैं आप?
1: सुना दीजिए सर, सुंदर से आती है।
0: अच्छा, बॉर्डर फिल्म का।
1: जी सर।
0: तो चलिए राधाकांत भोई जी, हम पूरी कर रहे हैं आपकी फरमाइश और आप अपने रेडियो सेट पर सुनिए फिल्म बॉर्डर का ये गीत।
1: धन्यवाद सर, नमस्ते।

0: आकाशवाणी F90।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं वरुण, मैं रायगढ़ का निवासी हूं और बचपन से ही आकाशवाणी का एक समर्पित और नियमित श्रोता रहा हूं। आज हमारे शहर के सांस्कृतिक गौरव आकाशवाणी रायगढ़ की 90वीं वर्षगांठ है और इस ऐतिहासिक मौके पर अपनी भावनाएं व्यक्त करना मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। एक श्रोता के तौर पर रेडियो मेरे जीवन का एक अटूट हिस्सा बन गया है। मुझे आपके केंद्र से प्रसारित

0: वाली उपलब्धियों भर में आकाशवाणी रायगढ़ की पूरी टीम को और सभी श्रोताओं को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कामना है कि आपकी यह बुलंद आवाज आने वाले कई दशकों तक हमें इसी तरह प्रेरित करती रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: कार्यक्रम है लीजिए फिर सुनिए, और मैं हूँ कृष्ण कुमार साहब। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बताइए कौन और कहाँ से बोल रहे हैं?
2: मैं चिरमिरी सुरक्षा प्राधिकरण जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से चंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
1: चंद्रभान सिंह जी बोल रहे हैं?
2: जी सर, चिरमिरी सुरक्षा प्राधिकरण जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से चंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
1: बताइए चंद्रभान सिंह जी, आज हमारे कार्यक्रम में आपने फोन किया है, कौन से गीत की फरमाइश लेके आई है आप?
2: सर तुम्हारे गीत के बोल है खुशी कम गाय किशोर कुमार और गीत के बोल है हस्तु है कम खुशी आए कम गाय किशोर कुमार
1: चलिए हम आपको आपकी फरमाइश पर सुनवा रहे हैं ये प्यारा सा नगमा किशोर कुमार के स्वर में आपके अपने रेडियो सेट पर।
2: धन्यवाद, इसी तरह से शामिल करते रहिएगा। धन्यवाद।

0: श्रोताओं, आज का ये सूर्या सफर आपने तय किया आपके अपने रेडियो दोस्त कृष्ण कुमार साव के साथ। प्रस्तुति सहयोग रहा रामविलास पटेल का, तकनीकी सहयोग दिया बीएस ध्रुवे और पंकज धावलकर ने, और प्रस्तुतकर्ता थे रवि आनंद। तो दीजिए इजाजत कार्यक्रम से अपने रेडियो साथी कृष्ण कुमार साव को, इस वादे के साथ कि अगले फोन इन कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, नमस्कार।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
2: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए का शेष भाग। इसका प्रसारण आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से किया जा रहा था। शाम के 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल।

चौपाल के बैठकी में चौपाल सुनिए जम्मो संगी संगवारी मल्ला आप मन के संगवारी रामविलास पटेल के राम राम जय जुहार। संगवारी हो चौपाल के आज के सफर में मैं हवा आप मन के संग में गोड बात करे बर और आप मन के ईमेल और पत्र के डहार आए फरमाइशी लोकगीत के तहत जो है लोकगीत मतलब सुनाए बर। तो संगी हो आज के बात के विषय में हमन चर्चा करबू तो मौसम ला देखा था कि कैसे बदलाव आते अचानक ले उतार चढ़ाव होते ऐसने में आप मन के मूंगफली और भी आप कोड़े खोदे के लाग हो गिसना तो इला भी आप मतलब देखना है और काय संगवारी हो उपकाना है यानी निकालना है। अगर ज़्यादा नमी भी बन जाते ज़्यादा पोठा भी गए है तो पानी ज़्यादा गिर देते तो ओकर बाद जैसे ही नमी हर कमती हो जाते ओल्हा बतर हो जाते तो जतका भी मूँगफली के दाना रहते और अंकुरित होए लागते यानी वहाँ से पौधा निसरे लागते। तो यार हमार बार

हानि होही तो इला देख रेख करना है। संग में उड़द मूंग आप मन जो भी लगाए है इला रोग बीमारी ले बचाना है और जोन भी फसल हो गए तो ला आप मला सकेल के भंडारण प्रबंधन करना है। विकसित कृषि संकल्प अभियान भी चलत है देश भर में राज भर में, तो वहाँ भी आप मला कृषि वैज्ञानिक हैं कृषि के जानकार विशेषज्ञ हैं या अच्छा सुघर कृषक हमें प्रगतिशील कृषक हैं ओमन भी अपन के बात रखते हैं, तो अहुल भी सुन के आप मतलब ओकर हिसाब से कामला करना है। सबले बड़का बात ये है कि अभी हमने समाचार में कुछ देर पहले सुनत रहें कि मानसून के सक्रियता जल्दी हुई ये साल और ऐसने में हमार खरीफ फसल के आधारभूत तैयारी के बात करते हैं तो डोली खेत खाल जुताई करना है बीजा के भंडारण करना है और हमला जहाँ भी ये सब चीज़ ला करत हन खरीदारी करत हन तो पंजीकृत दुकान से करी और जब भी आप मन बीज की खरीदी करा था तो वहाँ से पक्का बिल रसीद जरूर लेवा। का होते कभू कभार हमन बुआई करथन या ओकर नर्सरी लगाथन तो और सही अंकुरण नहीं हो पाए, ऐसने में सबसे ज़्यादा नुकसानी समय के होते और समय ले अगर हमें चूका था तो हमार उत्पादन पूर्ण रूप से संगवारी हो प्रभावित होते, तो ऐसने में हमला ये चीज ला ध्यान में रखना पड़ी। और पोटास पोषक तत्व के बारे में बात करते हैं तो फसल उत्पादन में एक महत्वपूर्ण योगदान होते। अगर हम बात करते हैं संगवारी हो हर एक तत्व के अलग अलग महत्ता हवे और ये महत्ता ला हमला समझना पड़ी जानना पड़ी और ओकर हिसाब ले काम करना पड़ी। तो पोटास जोन तत्व हवे इला अनिवार्य कहा गई से अनिवार्य कहा भी जाते और इला पौधा के रक्षक भी कहा जाते। काबर काबर की हर जल प्रबंधन और सूखा ले सहनशीलता ला बढ़ाते पौधा में जैसे कि कहना चाहिए पानी के कम खरा होते तो ऐसे स्थिति में पोटास और पौधा के जो कोशिका में रंध्र जो खुले और बंद होए के जो प्रक्रिया रही थे इला नियंत्रित करे में काम करते वाष्पोत्सर्जन ला कम करते जेकर ले पौधा लंबा बेरा तक संगवारी जीवित रहते या अपन के प्रक्रिया ला पूर्ण करते यानी सूखा ला सहन करे की क्षमता रखते। संग में प्रकाश संश्लेषण जेकर ले भोजन बनते इला स्थानांतरण करे में भी यह सहायक होते और एकर जड़ यानी कहना चाहिए जो पौधा है पौधा के दूसर भाग में जो तत्व है सरकरा है स्टार्च है पहुँचाए में भी मदद करते। गुणवत्ता और चमक ला भी बढ़ाते जैसे हम देखथन कि गाँव घर में हमन अगर अनाज लगाए हन या हमन गेहूं लगाए हन तो वहाँ का होते देखथन कि ओकर दाना के आकार और वजन ला बढ़ाए मा यह महत्वपूर्ण योगदान निभाते। एकर ताज़ा उदाहरण अगर आप मन डाले हो या कोई खेत मा और नहीं डाले हो या ते खेत मा दोनों खेत के उत्पादन ला देखिया दाना के आकार प्रकार वजन चमक ला देखिया तो आप मन ला स्पष्ट रूप से समझ में आई। लेकिन हमन कहथन कि यार अगर हा दाम पड़ते ज़्यादा दाम पड़ते यार ईटा गुड़ाए ईटा जैसे ओकर इटाला जैसे हमन वाला पूरा गुड़ा कर देते पूरा वाला कर देते तो ऐसे एक बन जाते संगवारी हो तो वैसे समझ के कई जगह इला उपयोग नहीं करे। लेकिन एकर उपयोग करना जरूरी है। तिलहन फसल में करथन तो तेल के मात्रा ला बढ़ाते आलू और कंद वर्गीय फसल में करथन तो स्टार्च की मात्रा ला बढ़ाते आकार ला एक प्रकार से बेहतर करते तो ये क्षमता हावे। संग में रोग और कीट प्रतिरोधक क्षमता ला भी बढ़ाते यानी कि कई प्रकार के रोग बीमारी आते चाहे फफूंद जनित हो या बैक्टीरिया या जीवाणु जनित जो भी हो या बाहरी कीड़ा के प्रकोप हो ऐसने में यह हर का करते एक प्रतिरक्षा तंत्र बना देते पौधा की कोशिका भी तिल मजबूत बना देते। एकर पर ताज़ा उदाहरण आप मन जहाँ डारे हो या वहाँ देखिया कि धान के पत्ता में डाला धान के पत्ता एकदम कठोर होते यूरिया ला डालत हन तो ओकर पत्ता कोमल होते जब ही यूरिया डालते हन तो वहाँ कीट के प्रकोप ज़्यादा दिखते अगर वही आप मन पोटाश डाल दिया तो ओकर प्रकोप कम हो जाते पत्ता हर कड़ा हो जाते और कड़ा हो जाते तो कीड़ा हर वाला ज़्यादा नहीं चरे या नहीं खाए या वहाँ अपन के अंडाला नहीं दे तो ये चीज़ हर भी हावे। एंजाइम के सक्रिय एंजाइम जो होते इला सक्रिय करे में भी यार जो प्रक्रिया होते रासायनिक क्रिया होते ये में भी एक महत्वपूर्ण योगदान हावे। तो आप मला इला देखना है कि पत्ता हर कब झुलसा थे यानी पत्ता के किनारे ले झुलसन अगर आते या तांबा रंग जैसे दिखाई दे थे तना हर कमजोर हुआ थे फसल हर जल्दी गिर जाते या अनाज के दाना हर पिचक जाते यानी पुठात बननी है या फल के स्वाद फीका हुआ थे तो ये सब संभावना दिखा थे पोटास तत्व के कमी के। तो एकर बार आप मन पोटास के उपयोग कर सका था और ज़्यादा बेहतर लाभ मुनाफा आमदनी में वृद्धि बर
आप मन माटी जांच परीक्षण के हिसाब से करिया तो हर बेस्ट सुघर रही संगवारी एकदम मस्त रही, तो ये चीज ला आप मन करहू तो

आप मन के आमदनी और उत्पादन में वृद्धि जरूर होगी। तो चला अब कार्यक्रम में सुना जाए एक ठन संदेश ला। किसान भाई मन, का आप मन रासायनिक उर्वरक के खर्चा ला कम करना चाहता तो आज ही अपनावा हरी खाद, ढेंचा, सनई, लोबिया जैसे फसल ला उगावा और फूल आए के पहली खेत मा जोत देवा। यह माटी ला भरपूर नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थ देते जेकर ले बंजर जमीन मा उपजाऊपन बढ़ते, कम लागत बेहतर पैदावार। अधिक जानकारी पर अपन लखठा के कृषि केंद्र ले संपर्क कराओ। संगवारी हो, देखा बदक पालन एक लाभकारी व्यवसाय हवे कैसे, एकर बारे में जानबो। देखा कम लागत, कम मेहनत और उच्च मुनाफा वाला व्यवसाय हो इस तो बदक पालन। कैसे? तरिया मा, डबरी मा मछली पाला, पानी के उपयोग करे और ऊपरी भाग मा ऑक्सीजन के प्रवाह करे बर यानी पानी के हलचल करे बर बदक यानी और अपन के पैर ले का करते संगवारी हो हलचल करते जेनर की बढ़िया होते मछली उत्पादन बर। तो बदक पालन करत हन तो एक मांस में भी बिक्री होते और ओकर अंडा के भी बिक्री होते। तो यह हर दृष्टिकोण से देखा जाए तो आप मन भर लाभकारी हो सकते। कैसे लाभकारी हो सकते? कम लागत और रख रखाव कैसे? तो बदक और मुर्गी के अगर हमन बात करते हैं तो मुर्गी पालन में ज़्यादा खर्चा और महंगा सेड और कई प्रकार के ओकर ढांचा बनाना पड़ते, लेकिन इमा ये सब दरकार नहीं पड़े। काबर की यार अधिकांश बेरा का करते अपन के जो तरिया क्षेत्र रहते वहाँ घूम घूम करके वह बिचना करते और अपन के भोजन दाना पानी के जुगाड़ कर लेते तो खर्चा कम होते और यार ज़्यादा अंडा देते। मुर्गी मन के तुलना में बदक ज़्यादा संख्या में का करते अंडा देते। एक सुघर नस्ल के बदक बछर में संगवारी 280 से 300 तक अंडा देते ऐसे कही थे। तो ये भी आप मन पर लाभकारी हो सकते और बदक के अंडा के आकार भी बढ़खा रही थे और वजन भी ज़्यादा होते, कीमत बढ़िया मिलते। तो ये भी चीज़ बढ़िया है और भोर में मन अंडा देते हैं, कुकरी मन अलग बेरा में देते हैं, मुर्गी मन तो ये मन भोर में देते हैं। तो एक बार ओला सहेजे सकेले में भी किसान ला दिक्कत नहीं हो। तो ये सब भी कहना चाहिए एक प्रकार से लाभ के बात है। सबले बड़का बात ये भी है कि रोग ले लड़े के सहनशीलता भी बदक में ज़्यादा पाए जाते। कैसे पाए जाते? देखा यार बाहरी में बाहर क्षेत्र में का करते विचरण करते तो एक प्रकार से वातावरण के हिसाब से धीरे धीरे वह छोट कुन ले नानी पन ले और धीरे धीरे बढ़त जाते तो अपन आप ला वातानुकूलित कर लेते। तो एकर से भी यार का होते संगवारी हो अपन के प्रतिरोधक क्षमता ला बढ़ा लेते, बरकरार कर लेते। और जैविक खेती और मछली पालन में सहायक भी होते। कैसे? अगर हमन धान के खेत में पालन करथन यानी कि धान का होते तरिया बनाथन कई क्षेत्र में तालाब के यानी पानी के और मछली के और धान के ये सब और फसल एक समन्वय के हिसाब से किया जाते यानी कि मछली पालन के संग में बदक पालन भी किए जाते। तो ये में का होते बदक जत का भी कीड़ा मकोड़ा रहते तेला खा डालते। तो एक प्रकार से हमर कहना चाहिए मछली पालन के जो हानिकारक कीट व्याधि रहते कीट रहते कहना चाहिए कीड़ा रहते या धान के जो कीड़ा रहते ओकर ले सुरक्षा होते। तो ऐसे प्रकार से अगर देखा जाए तो अंडा के दृष्टिकोण से, मांस के दृष्टिकोण ले, दोहरा लाभ के दृष्टिकोण ले, हर एक दृष्टिकोण ले बदक पालन लाभकारी हावे। एकर बार साफ पानी के दरकार पड़ते और एमा हमला ध्यान रखना चाहिए कि रथिया के बेरा थोड़ कौन एकर बार व्यवस्था करना चाहिए, करना पड़ते काहे उमन बर रहे के। या ज़्यादातर आमतौर से हम देखतन कि जहाँ तालाब रहते वहाँ तीर तार में एक ठन कोठी टाइप से बना देते हैं तो वहाँ उमन अपन के आश्रय ले लेते हैं। तो ये सब चीज़ ला करना पड़ते और बेहतरीन स्वरोजगार के साधन हो सकते हैं हमारे युवा संगी संगवारी मन बर, सिंचाई बर, मांस बर, अंडा बर और पानी हर दृष्टिकोण से लाभ के साधन बन सकते। तो तरिया डबरी के आप मन निर्माण कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी पर आप मन के लखठा के जो कृषि विभाग है, मछली पालन विभाग है, मुर्गी पालन विभाग है वहाँ संपर्क करिए तो योजना से भी आप मन ला अनुदान लाभ के संभावना दिख सकत है और आप मन अपन की व्यवसाय ला बढ़िया बढ़ा सकत है। अब चला संगवारी चलबो हमार लोकगीत के डहरमा।

जय जुहार संगवारी हो, राम राम। आप मन सुनत हवा आकाशवाणी रायगढ़। आओ आप मन के अपन मन पसंद कार्यक्रम हमर लोकगीत मा आप सबो के स्वागत है। आज के ये कड़ी मा

आप मन के संग महावो मैं रामविलास पटेल झोका मोर डहाले राम राम जय जुहार। संगी हो आज के डिजिटल युग में ईमेल और चिट्ठी पत्री के माध्यम ले आप मन के सुघर माया हमर डहार आवा थे हमर ले जुड़ा थे। कोनो कोती ले सुआ तो कोनो कोती ले कर्मा तो कोनो कोती ले ददरिया की फरमाइश आवा थे। तो ऐसने में आप मन के जम्मो के ईमेल ला पत्र ला शामिल करके सुनबो सुनाबो सुघर सुघर गीत ला। तो संगवारियो ऐसन मा चिट्ठी और ईमेल के सिलसिले ला आगू बढ़ाथन और सुनथन आप सबो के पसंद मा सुघर गीत धुरुआरा मरकाम दुखिया बाई के युगल स्वर मा छतियाला बांध मारे रे। ये गीत के बोल हावे और पसंद करता हावे चांदनी चौक गंडई पंडरियाले पवन कुमार सेन प्रभा देवी सेन लक्की विक्की नानू रविंद्र रौनक सेन हटौत बाजार लाहौद ले कमलनाथ पटेल राकेश कुमार पटेल समीर पटेल राजकुमारी पटेल चेंद्रीबन नावागांव बालोद ले चंद्रभान हिरवानी कुमारी हिरवानी फुलेंद्र हिरवानी और नोमेंद्र हिरवानी धमनी राजिम ले समेलाल धीवर मुन्नी धीवर गोविंद धीवर ममता धीवर कुणाल धीवर इवांस धीवर बाघामुड़ा कोमा खान छत्तीसगढ़ ले प्रज्ञानंद देवांगन नंदिनी प्रकाश गायत्री यशवर्धन यशस्वी देवांगन देवरी भाटापारा ले मुकेश कुमार रजक इवान रजक हाबिया तन्नू और टानिया रजक के संगमा नित्या रजक माँ महामाया चौक मेघापारा चिल्फी ले राम कुशल पटेल संतोषी पटेल दीपांशु पटेल दिव्या पटेल दीपांजलि पटेल दीपक टेकलाल और हमें छोटकू साहू भाटापारा ले दानसी रावत दानू पद्मिनी रावत शुभम सौरभ रावत कर्मा चौक लोहरीडीह जिला कवर्धा छत्तीसगढ़ ले अशोक कुमार साहू लीलेश्वरी लालिमा खुशांत निशान साहू पीपरपारा पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ ले पसंद करता है उत्तरा दिवाकर परमेश्वरी दिवाकर भानुप्रिया योगिता नितिन दिवाकर के संगमा वंशिका दिवाकर कोरासी भैसा छत्तीसगढ़ ले पवन कुमार साहू क्रांति देवी साहू पंकज साहू सुष्मिता साहू दीपिका साहू आवा संगियो सुनी ये सुघर गीत ला दुखिया बाई और धुरवारा मरकाम की युगल स्वर्मा।

0: ती चोलारे छतियाला बाण मारे तरी सती चोला।
1: ईमेल और पत्र ले आधारित ये क्रम में आगु बढ़बो और सुनबो कुसुम लता ठाकुर आकर संगवारी मन के गाय गीत ला ये बैरी दुनिया। संगवारी हो ये गीत के बोल हावे नांदघाट कातल बोडले भाग सिंह राजपूत, भाग्यश्री राजपूत, टीकेश्वर और रितु राजपूत पसंद करीन है। अडार नांदघाट ले पसंद करता हवे माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी, भूपेश और दीपेश वर्मा। इंदिरानगर भवरपुर ले राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन, जगदीश देवांगन। सहसपुर लोरमी ले छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश, राम किशन, दुली चंद, सतीबाई साहू। सूरदा मुंगेली ले दीक्षा पटेल, नित्या, भूवी, दिव्या, दीपांजलि पटेल। मदनपुर कवर्धा ले श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू। कांकेर संबलपुर ले फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। खमरिया बिलासपुर ले साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार। बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ ले काफिर भाई, रामचंद माखीजा, श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा, कीरत राय वाधवानी, प्रदीप कुमार साहू, संजय गोलछा, सोमनाथ यादव, माही, पूजा छुटकी, शरद कुमार डोडवानी, अवमन के पूरा कुटुम्ब। ग्राम फुलझर घटारानी जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ अंचल ले योगेश्वर साहू, डुमेश्वरी साहू, यामिनी साहू, मुस्कान साहू, हर्षिता साहू, साले भाटा महासमुंद ले जीतू ध्रुव, केवल ध्रुव, किरण ध्रुव, दिव्यांशु ध्रुव और खेमू ध्रुव। तो आवा सुनी कुसुम लता ठाकुर आओ कर संगवारी मन के गाए ये सुघर लोक गीतला।

संगवारी हो, बढ़िया गीत सुने ना, मैना के बोली सुआहर बहुत सुघर गीत हावे संगवारी हो, और पसंद करता हमें हमार नियमित श्रोता हमें बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ ले रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन, डिंपल देवांगन, डोंगरगांव राजनांदगांव छत्तीसगढ़ ले राष्ट्रपाल गजबिये, तन्मय बेबी, अनिष्का, राधिका गजबिये, यवतमाल विदर्भ ले संतोष खट से, विनोद खट से, बागबहरा भदरसी ले पन्नालाल सेन, तारा सेन, कौशल सेन, खुशबू सेन, जेल रोड रायगढ़ ले भाई नरेंद्र कुमार तिवारी, पसंद करी ने बाटापारा छत्तीसगढ़ हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू, संगम चंपा साहू, कमल बिहार रायपुर ले रतन जैन, कोकिला वैभव और चिराग जैन, छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवाले चंदूलाल सिंगरोल, नारायणी सिंगरोल, नोमेश सिंगरोल, नेहा और वान्या सिंगरोल, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ ले महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेश्वरपुरी और ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा और तुलसी गोस्वामी, रानीगांव नगरी जिला धमतरी ले अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सेजल साहू, वार्ड बी सागरा सोमनी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ ले नारायण लाल साहू, कुलवंती देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और तारुद्र प्रताप साहू। तो आवाज सुनी संगवारी हो ये सुमधुर गीतला।

तो संगवारी कुसुमलता ठाकुर आओ हमन सुनत रहन काकर आवाज में गौतम चंद जैन के युगल स्वर में गीत ला आगू सुनबो आप सबो के पसंद में विदुषी ममता चंद्राकर के स्वर में गीत तोला कौन बताही रे रद्दा और संगवारी हो गीत के पसंद करता हमार संगवारी है अरमरी खुर्द बटरेल ले जैनी चुरामन वार्डे नेहा विवेक वार्डे और भाई अक्षत वार्डे रिंगनी छत्तीसगढ़ दिनेश वर्मा करुणा वर्मा पलारी रोहासी ले डगेश्वर राम साहू नूतन घनश्याम अलका जानकी और गौरव साहू

दर्शीवाले छेदूलाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना अरुणा यादव के संग में अनुराधा अल्पना यादव, दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर ले छन्नूलाल यादव, अनुराग अभिषेक, अलका अनामिका बलदाव, रानू खुशी, प्रवीण औसीएल यादव, भागवत प्रसाद, पदुमलाल देवांगन, सुनैना, पिंकी यश, शीतल मामा, प्रियांश तानवी, नीता चंद्रवती, युवराज सिंह, गीता घासी मामा सलाम, रामचंद्र जी देवांगन, कोष्टापारा जुड़वा चौक सरंगपाल ले, ग्राम बुड़गहन छत्तीसगढ़ ले राम दुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार चंद्रकला और शशि कांता प्रजापति, बाजार पारा बेमेतरा ले भाई भरतलाल सिन्हा, लव कुमार लक्की सिन्हा, ग्राम धुरा बंदा भाटापारा ले प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नवीन कुमार साहू, युवराज साहू, दतरेंगी ले विश्राम यदु, पार्वती यदु, प्रतिमा रीना यदु के संग में लक्ष्मीना यदु, लालपुर ले लुकेश यदु और समीर यदु, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी ले द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा, शिवाजी चौक राजीव ले अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और क्रिस श्रीवास्तव, अमरपुर पेंड्रा ले दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव, दरचूरा ले ददुआ साहू, भूरी साहू, रेखा, मोतीलाल साहू, रुआ बांधा सनिश्चरी बाजार भिलाई ले सुशील जैन, कल्पना जैन, श्रेया जैन, सौरभ जैन, सौर्य जैन, शुभम जैन, सुभाष शर्मा, छाया शर्मा, खट्टी महासमुंद ले संग महावे कमलेश साहू, यमन हावे भीषम दास मानिकपुरी, एशो राम साहू, मालती साहू और यमन के संग मा हावे और पसंद करता श्री श्रृंगेरी महानदी सिहावा पर्वत अंचल गांव बेलर गांव ले मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु, अंकित देवांगन, यही गीतला पसंद करता हमें सुरेश कुमार सारथी, भाई कमलकांत सारथी, वीरेंद्र ब्रीज कांत सारथी, बेमेतारा ले मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटेले नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा, देवरी भाटापारा ले गन्नूलाल रजक की आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री, आवाज सुनी संगवारियों आप सबों के पसंद मा ये सुमधुर गीत विदुषी ममता चंद्राकर के स्वर मा।

संगवारी हो, ईमेल और चिट्ठी मन के ये तो क्रम रही से हमार लोकगीत, और आप मन हमार लोकगीत में ऐसे ही गीत और संगीत अवैया समय में भी सुन सका था। लेकिन हमन अतखच कहना चाहबो, जिन मन के चिट्ठी और पत्र ईमेल जो है शामिल नहीं हो पाए से, आगु अवैया दिन में जरूर हो ही, घबराहू झन। अगले अंक में आप मन के पसंद ला भी पूरा करे के प्रयास करबो। तो एकरे संग संगवारी हो, सिरावा थे आज के हमार लोकगीत के क्रम। हंसत रहो, मुस्कुरावत रहो और सुनत रहो आकाशवाणी रायगढ़। अब मोला देवा आप मन के संगवारी राम विलास पटेल ला विदा। राम राम, जय जुहार।

0: रामू भैया, ए दारी ते धान के फसल बर यूरिया और डीएपी के जुगाड़ कर डारे हस का गा? दाम हर तो आसमान छुआ थे भैया।
1: अरे अरे अरे नहीं भैया, ये दारी मैं हर यूरिया के खर्चा ला आधा करे बर अपन के भुइया में हरा खाद ला बोए। हाँ
0: हरियर खाद वो का होते भैया?
1: बस ढेचा सनई ला उगाना है, 40 से 50 दिन के भीतर में माटी में मिला देना है और फसल ला प्राकृतिक रूप ले पोषण आहार मिलते।
0: वाह ये तो संजूनी बूटी जैसे काम करी भैया, महू भी अपनाऊ ये लगा।
1: हरी खाद ला अपनावा, धरती दाई के स्वास्थ्य ला बचावा।
0: ज्यादा जानकारी बर अपन नजदीकी कृषि कार्यालय के हेल्पलाइन नंबर में संपर्क कराऊ।
2: तो संगवारी हो, भीषण गर्मी का कारगर उपाय वृक्षारोपण टीप के विषय हावे हमार लोकगीत में सुनेन बढ़िया गीत। अब हमार टीप के विषय हावे और टीप के विषय के पहली हमार कृषक प्रश्न मंच के बेरा भी हुआ थे कहा पहली रही से, लेकिन अब चला फिर एक बार पूछ लेते हैं आप मन ला कृषक प्रश्न मंच में प्रश्न ला। पोटास तत्व फसल पर का काम करते, यानी पोटास जो तत्व होते फसल के उत्पादन उकर वृद्धि विकास पर कतका सहायक होते, उकर का लाभ होते वाला डालते हैं तो एकर उत्तर लिख भेजिए। अब देखा गर्मी ले बाचे के कारगर उपाय वृक्षारोपण कैसे हावे। संगियो देखा अभी के स्थिति में हमन देखा था कि तापमान कम ज़्यादा होते तो अतका आज भी नहीं, अब कई जगह पानी भी गिरी से तो तापमान थोड़कुन कम रही से, लेकिन कुछ दिन हमन देखे हन कि तापमान अतका ज़्यादा बढ़ गिरी से कि जन पूछा। ऐसने में जो वृक्षारोपण करना हमार पर जरूरी है, यानी पेड़ पौधा जतका रहते ना वह हमार वातावरण ला अनुकूलित करते, शीतलता प्रदान करते और एकर बर हमें चाहिए कि प्राकृतिक रूप से तापमान ला कम करे बर एकर ताज़ा

0: उदाहरण अगर हम जाथन देखथन कोई गांव घर जाथन शहर ले दूसर कोती जाथन तो देखथन कि शहर में तापमान ज्यादा रहते और गांव घर के डहर यानी जो जंगल रहते पेड़ पौधा ज्यादा रहते वहां तापमान कम रहते। तो कारण का होते हम कहथन कि ये डहर पेड़ पौधा ज्यादा हवे। तो संगी समझ सकत हन कि पेड़ पौधा कैसे तापमान ला कम करते हैं। लेकिन आजकल हम देखत हन कि सड़क पूरा कंक्रीट होते डामर होवत जाते तो एकर गर्मी भी वातावरण में आवत जाते। तो ऐसने में हमन तीर तखार अपन के आसपास जहां भी ये पेड़ पौधा लगाएं और वातावरण ला वहां के प्राकृतिक रूप से शीतलता प्रदान करे में सहयोग करें। एकर अलावा हमन छत में बागवानी भी कर सका था किचन गार्डन भी कर सका था और नाना प्रकार के पेड़ पौधा भी लगा सका था। और एक प्रकार से देखा जाए तो जो पेड़ पौधा रहते हैं एमन कार्बन डाइऑक्साइड जैसन ग्रीन हाउस गैस जो हावे एकर से जो गर्मी बढ़ते ये ला का करते हैं एमन अवशोषित करते हैं और हमला ऑक्सीजन प्रदान करते हैं जो उनके हमारे प्राण वायु होते। एकर अलावा भूजल स्तर में सुधारते हैं जितका भी पेड़ पौधा रहते उमन के जड़ हर भुइया के भीतर में जा रहे ओकर माध्यम से संगवारी हो जितका भी वर्षा होते तो पानी जो गिरते वो पसीज के यानी कि नीचे पझर पझर के और भूजल स्तर तक पहुँचते। तो एकर से हमर कहना चाहिए भुइया के पानी के स्तर भी बढ़ते। तो एकर पर हमला चाहिए कि वृक्षारोपण करी हमला जो पेड़ के दरकार है चाहे स्थानीय प्रजाति के है नीम के बरगद के पीपर के जामुन के महुआ के। अभी देखा जामुन के सीजन आप आवत है आप जामुन हमन खरीद के बिसा के खाथन और खाबो। पहली कारी से हर गांव के तीर तखार इती होती ये सब हर रही से लेकिन यह नंदाज जाते। तो संगवारी हो ये सब चीज़ ध्यान में रख के छायादार फलदार जो वृक्ष है एकर हमला उपयोग करना है और देखभाल भी करना है। सिर्फ लगा ले कुछ नहीं हो एकर देखभाल और प्रबंधन भी करना जरूरी है। देखा संगवारी हो भेंटवार्ता के क्रम होते और भेंटवार्ता के क्रम में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से लाभ लेकर कृषक आगे कैसे बढ़ी एकर बारे में बातचीत हुई से भरत लाल पटेल ग्राम महुआ ठोड़ा विकासखंड सारंगढ़ के कृषक ले मोर बातचीत हुई से। तो चला सुनी ये भेंट वार्ता ला।
1: संगवारी हो राम राम जय जोहार। हमर प्रयास रथे प्रगतिशील किसान और ग्रामीण विकास और किसान मन भी आज के दौर में पर्यावरण संरक्षण संवर्धन की ओर आगु बढ़त है। देखा थन कि गर्मी के समय में बिजली के खपत बढ़त है। बिजली के खपत बढ़ी से यानी पैसा के बचत नहीं हो यानी बिजली के बिल हर ज्यादा आते। ऐसने में किसान मन ला अपन के उपलब्ध क्षेत्र मा भुइया मा या छत मा कैसे हमन बेहतर तरीका से विद्युत उत्पादन कर सकत हन एकर बारे में जानबो और योजना से कैसे लाभान्वित होके लाभ लेते एकर बारे में। तो सबले पहले किसान भाई ला हमर कोतिले राम राम जय जोहार।
2: राम राम जी।
1: का नाम है जी आप मन के?
2: भरत लाल पटेल।
1: अच्छा कौन गाँव के हवा?
2: महुआ ढोड़ा।
1: अच्छा ये कहाँ होते?
2: ये हर सारंगढ़ के पास में दानसरा है। दानसरा के नीचे में है महुआ ढोड़ा। अच्छा। 5 किलोमीटर दूर में है।
1: अच्छा तो भरत लाल जी ये तैयार कि आप मन का कर था?
2: मैं तो खेती किसानी करता जी।
1: अच्छा खेती किसानी करता। का लगा था आप मन?
2: अभी गेहूं लगाए रहे धान के बाद गेहूं लगाए रहे रबी फसल में।
1: तो गेहूं की खेती कतका एकड़ में करता?
2: एक एकड़ में मैं 9 एकड़ लगाए रहे। हाँ
1: हाँ
2: 140 क्विंटल गेहूं हुई से मोर।
1: अच्छा 9 एकड़ में लगा रहे 140 क्विंटल। बिक्री करे तो कतका हो गए?
2: वही 2 लाख 3 लाख लगभग 3 लाख रुपया के बनी।
1: अच्छा अच्छा और खरीफ में फिर धान भी बेचता? और अभी देखा अभी की स्थिति में बात करथन तो रबी के समय में आप मन गेहूं के खेती करके कम पानी में सीमित पानी में बेहतर लाभ लेता।
2: हाँ
1: तो बिजली के बचत के ओती बिजली के बचत के ओर अगर ध्यान डालबो है ना अगर बिजली बचत करने की बात करबो तो का प्रयास करता आप मन?
2: मैं तो सौर ऊर्जा घर में लगाए हैं जी।
1: सौर ऊर्जा? अच्छा सौर ऊर्जा ये माने का होते हैं?
2: प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली घर योजना के अंतर्गत लगे है।
1: प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत? अच्छा अच्छा तो ये योजना के बारे में कैसे जानकारी मिली आप मल्ला?
2: मैं ग्राम सेवक मैडम हर बताई योजना ला।
1: अच्छा अच्छा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना है करके। अच्छा तो योजना के बारे में आप मन जाना और इला देखा तो कोनो ढौर ला आप मन देखे ताके वगैरह कैसे कि आप मन ऐसी लगवा ले?
2: मैं ऐसी लगवा ले। हाँ
1: अच्छा तो का दस्तावेज लागे रही से?
2: एमे आधार कार्ड लागे रही और बिजली बिल लागे रही और ईमेल आईडी और पैन कार्ड लागे रही।
1: अच्छा अच्छा ये चीज ला देना है?
2: देना है।
1: और फॉर्म भरे के रजिस्ट्रेशन की कतका दिन बाद एमा प्रोसेस शुरू हो जाते?
2: और 8 से 10 दिन में शुरू होगी प्रोसेस।
1: 8 से 10 दिन में शुरू होगी।
2: अच्छा। बैंक से मला लोन मिल गए
1: के लगवा रहा
2: 3 किलो वाट के लगवाए हमें।
1: अच्छा 3 किलो वाट के लगवा। अच्छा 3 किलो वाट पर कतका आप मतलब पैसा देना पड़े से?
2: मेला गवर्नमेंट से 1,90,000 रुपया लोन मिली से।

0: और ये कहा जाए तो आज के दौर में एसी कूलर नाना प्रकार के विद्युत के यंत्र आगे से मन ले बिजली के खपत बाढ़ते और इमन प्राकृतिक तौर से सौर ऊर्जा के उपयोग करके प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से लाभान्वित होकर के 1,08,000 सब्सिडी प्राप्त कर चुके हैं। कैसे लागत है आप मनला?
1: बहुत अच्छा है, मैंने योजना हा।
0: अच्छा है
1: हाँ।
0: और योजना के बारे में जैसे बात करते हैं तो अभी विद्युत उत्पादन कतका हो जाते?
1: अभी मोर हर 16 से 17 यूनिट रोज बनते, खपत होते 4 से 5 यूनिट।
0: अच्छा,
1: 24 घंटा में।
0: अच्छा, और शुरुआत में कतका बिल आत रही से?
1: शुरुआत में 500 से 600 आत रही, अभी 0 पॉइंट हो गए है।
0: अच्छा, 0 हो गए, यानी कि आप मन के बिजली तो बिक्री में भागत हो?
1: बिक्री में जाते है।
0: अच्छा,
1: ग्रिड सिस्टम में।
0: ग्रिड सिस्टम में तो एक अभी पैसा मिली से?
1: अभी जो नहीं मिली से, लेकिन मिली कहे गवर्नमेंट कहे है,
0: कहे है
1: बिजली वाला मन भी।
0: अच्छा अच्छा, तो बढ़िया बात है कि आप मन विद्युत उत्पादन के काम से लगे है। और अभी की स्थिति में आप मतलब कुछ तकलीफ होते?
1: कुछ तकलीफ नहीं है,
0: कुछ तकलीफ नहीं है, बस लगा दे वो लगे अपन हिसाब से काम कर रहे थे।
1: सुबह धूप निकलने के बाद चालू हो जाते, शाम के बंद हो जाते।
0: अच्छा अच्छा, तो फिर वो बीच में जो भी समय रहते हैं वो 15-16 यूनिट
1: बन जाते।
0: अच्छा,
1: यार ऑन ग्रिड सिस्टम है।
0: हाँ,
1: बिजली हर गवर्नमेंट ऑन ग्रिड सिस्टम में ही पैसा दे ही।
0: अच्छा अच्छा,
1: माने लाइन गोल हुई तो लाइन गोल हो जाए, जैसे इन्वर्टर रहते था वो हर अपन माने चला लेते।
0: अच्छा, यानी कई जन के भ्रांति रही से कि हम सौर ऊर्जा के तहत जो है लगाए हैं, है ना, पैनल लगाए हैं तो बिजली गोल हो जाए तो भी चल ही करके।
1: हाँ, लेकिन वो सिस्टम नहीं है हर।
0: अच्छा,
1: हर लाइन गोल हुई तो लाइन गोल हो जाए, लाइन नहीं था फिर चालू हो जाते।
0: अच्छा, यानी बिजली के बिल कम हुई और आप मन के अग्रहात कहा हो जाए तो सरकार वाला खरीदी। अच्छा, और खेती किसानी में जैसे भूया सुधार करे का लगा था?
1: ढेचा लगा वो कहते कहा था ना, अभी ढेचा दी ग्राम सेवक मैडम।
0: अच्छा, ढेचा तो एक पहली भी लगा रहा कि ये साल लगा है?
1: इस साल लगा वो।
0: अच्छा, ढेचा बहुत ही अच्छा करते, भूया के उर्वरता ला बढ़ाते और कार्बन के तत्व ला बढ़ाते करते और लगातार आप मन 2 फसल 3 फसल
1: ले थन
0: तो
1: जमीन सुधारना है,
0: सुधारना है तो ढेचा लगावा और कई प्रकार के वर्मी कम्पोस्ट वो सब ला करना
1: पड़ी।
0: और सबसे बढ़िया बात तो फसल चक्र अपनाना पड़ी। और किसान क्रेडिट कार्ड के लाभ लेता आप?
1: हाँ, लेथन जी।
0: अच्छा, खाद बीज
1: सोसाइटी से मिल जाते।
0: अच्छा, तो आखिर में आपन प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थी हवा, कृषक हवा, तो का कहना चाहिए आप मन, का संदेश देना चाहिए?
1: हर मने किसान लगाना चाहिए, ये बढ़िया योजना है और फायदा ला प्राप्त कर ली।
0: अच्छा, बहुत बढ़िया जानकारी देवा भरत लाल जी, एक बार आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद है। राम राम, जय जोहार।
1: राम राम, जय जोहार।
2: तो संगवारी हो, देखा कैसे हमन सुनत रहन भेंटवार्ता। हमर भरत लाल पटेल जी एमर रीन है, ग्राम महुआ डोड़ा विकासखंड सारंगढ़ के कृषक, कैसे प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ करके लाभान्वित होते हैं। तो संगवारी हो, योजना से आप मन भी जुड़ाओ और लाभ जरूर लेवा। तो संगवारी हो, संदेश भी सुनना है तो चल एक सुन ली संदेश ला।

0: তা টেলিলকে অ্যাপ, ওয়েবসাইট www.tele-law.in या টোল ফ্রি নম্বর 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से।
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: संगवारी हो, आज हवे अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। हमारी पहली पाठशाला परिवार। संगवारी हो, परिवार ले लइका सीखते, पलते, बढ़ते और आगू बढ़ते। वहाँ संस्कार, व्यवहार और जीवन के मूल्य ला सीख करके ओहर आगू बढ़ते। और यही परिवार के महत्व ला समझाए बर, बगराए बर, बताए बर कि समाज में परिवार के कतका महत्व हावे, एकरे उद्देश्य ले आज ही के दिन ला मनाए जाते अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। संगवारी हो, प्राथमिक शिक्षा के केंद्र होते माता पिता और परिवार ले जो है लइका और परिवार के सदस्य मन ले ही और सीखते। पहली शिक्षक होते उकर परिवार। और लइका अक्षर ज्ञान नहीं बल्कि संगवारी हो जीवन जिए बर जो बुनियादी दरकार पड़ते सीखे के, चाहे वो नैतिकता के बात करन, संस्कार के बात करन, भाव के बात करन, भावनात्मक सुरक्षा के बात करन या सामाजिक कौशल के बात करन, यही सब हर परिवार से ही बढ़ते और फूलते।

संगवारी हो संयुक्त राष्ट्र महासभा डहा ले बछर 1993 में एक ठन प्रस्ताव लाए गए रहिस हे और 15 मई के दिन ला ये दिवस के रूप में मनाबो करके घोषणा किया गया रहिस हे और बछर 1994 में पहली बार 15 मई के दिन ला मनाया गया रहिस हे अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। तो संगवारी हो परिवार समाज के छोटे इकाई होइस एला मजबूत और खुशहाल बनाए बर हम सबो ला एमा कर्तव्य निभाना पड़ी, संग में जुल मिल के रहना पड़ी, हमर बुजुर्ग हैं ओमन के सम्मान करना पड़ी और आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया के युग में हमन अलगाव की ओर न जा करके परिवार के साथ में जुड़ करके अपन के जीवन ला व्यतीत करबो तो संगवारी हो परिवार बहुत ही अच्छा ढंग से पल बढ़ सकत है। और आजकल हम देखत हन कि संयुक्त परिवार प्रथा जो है विलुप्त हो जाते तो ओला हमन रोक सकत हन और अच्छा परिवार बना करके हमार लोग लइका मन ला भी बता सकत हन। संगी हो एक बात और भी है कि गाड़ी की रफ्तार पर नियंत्रण वरना अस्पताल का निमंत्रण, यानी गाड़ी के रफ्तार अगर हम नियंत्रित नहीं करबो तो सीधा अस्पताल के डहर जाबो। तो रफ्तार के जो अधिकता रही थी और बहुत संगी संगवारी मन का है गाड़ी चलाए के बेरा मोबाइल में कान के ठौर में जो है मोबाइल चिपक करके चलात रहे थे, कार वाला है गाड़ी वाला है दुपहिया चार पहिया संगी हो वो तो अपन कहना चाहिए आत्मा कथन अपन के चेत में जात रहते लेकिन ओकर से समस्या आगू पाछू सबोला होते एति हारन ला बजात रही ओला ओती सीधा बात हर सूझत रहते तो एकर से जाम होए के भी संभावना एक्सीडेंट होए की भी संभावना रही थे। तो जब भी आप मतलब फोन में बातचीत करना है गाड़ी ला चलावा था वो तो तीरिया जावा और गाड़ी में बातचीत करत हुए संगवारी वो गाड़ी ले झन चलावा और अतका रफ्तार में चलावा जतका आप मन के नियंत्रण में रहे। काहे लोग लइका और छेरी भेड़ी और स्कूल के रद्दा ये मा आप मतलब कभू भी गच्चा खाब पड़ सका थे, कभू भी एक्सीडेंट हो सका थे। तो ऐसने ठौर मा आप मतलब सतर्कता के साथ गाड़ी ले चलाना पड़ी, नहीं तो संगवारियों सीधा अस्पताल जाना पड़ी। तेज रफ्तार मा गाड़ी ले चलाई है तो गंभीर चोट पड़ी, गंभीर चोट यानी एति ओती के रीढ़ के हड्डी भी टूट सका थे, मुड़ कान मा चोट लग सका थे, एकर बर सीधा आप मतलब जाना पड़ी अस्पताल। तो ये सब ले मानसिक रूप से आप मतलब समस्या है, आर्थिक रूप ले समस्या है। तो एकर सेती आप मन के जैसे कमाऊ मन के आवा घर के आओ आप मन के एक्सीडेंट हो गए तो पूरा परिवार लोकर समस्या के सामना करना पड़ी आर्थिक रूप से पूरा, एक तो जतना में खर्चा और दूसरा घर के चलाए में खर्चा, ये सब के चक्कर में संगवारी बड़ा दुखद समस्या होते। तो ऐसने में आप मतलब गति सीमा के पालन करना है, सड़क में लगे जो कहना चाहिए संकेत चिन्ह रहते ओला फॉलो करा, एकर अलावा अपन समय के हिसाब से चलाओ। तो संगवारी हो समय के हिसाब से चले के बात हुई तो मोरो जाए के बेरा हो गए। तो आप मन के संगवारी राम विलास पटेल देव विदा, राम राम जय जुहार।

किसान भाई अभी अपना कार्यक्रम सुन रहे थे चौपाल। इसका प्रसारण आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से किया जा रहा था। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम गैर फिल्मी गीत।

0: कार्यक्रम गैर फिल्मी गीत के अंतर्गत अभी आपने सुना यसीर देसाई की आवाज में ये गैर फिल्मी गीत।
1: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
2: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
1: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
4: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
0: कार्यक्रम के आखिर में सुनिए सोहम नायक की आवाज में ये गैर फिल्मी गीत।

0: छोड़ रहे।
1: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
2: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
1: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
4: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गैर फिल्मी गीत। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। पहले सुनिए बरसात की एक रात फिल्म का गीत, किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वर में। आनंद बख्शी के बोल हैं और RD बर्मन का संगीत है।

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
2: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
1: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
2: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए।

0: तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
0: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: कस्मेवादी, लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की युगल स्वर में, गुलशन बाबरा के बोल हैं और आर डी बर्मन का संगीत है।

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: आकाशवाणी 90। आप सभी को नमस्कार, मैं निधि साहू, मैं धमतरी की रहने वाली हूँ। मैं गर्वित श्रोता के रूप में आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर हार्दिक बधाइयाँ व्यक्त करती हूँ। आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो सेवा नहीं बल्कि हमारे देश की आवाज़ है, एक ऐसी आवाज़ जो दशकों से हर घर हर दिल तक पहुंच रही है। बचपन की बात याद आती है, जब सुबह सुबह घर में रेडियो की हल्की सी आवाज गूंजती थी, कभी खबरें, कभी भजन, कभी गीत संगीत। उस समय शायद हमें इसका महत्व समझ नहीं आता था, लेकिन आज एक ऐसा एहसास होता है कि आकाशवाणी ने हमारे जीवन के कितने सुंदर पलों को अपनी आवाज से सजाया है। गाँव की शांत सुबह हो या शहर की व्यस्त जिंदगी, आकाशवाणी ने हमेशा हर जगह अपनी एक खास पहचान बनाई है। जब टीवी और मोबाइल इतने आम नहीं थे, तब आकाशवाणी ही वो साथी था जो हमें दुनिया भर की खबरों से जोड़ता था, नए विचार देता था और समय के साथ चलना सिखाता था। आकाशवाणी ने हमारी भाषा, संस्कृति और परंपरा को संरक्षित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके माध्यम से हमने लोकगीत, कविताएं, कार्यक्रम और अनेक प्रेरणादायक कहानियां सुनी है जो आज भी हमारे मन में बसी हुई है। मेरे लिए आकाशवाणी सिर्फ एक माध्यम नहीं है बल्कि एक अपनापन है, एक ऐसी मीठी सी आवाज जो हमेशा सुकून देती है, जैसे घर के किसी अपने की बात सुन रहे हो। आज जब आकाशवाणी अपने 90 वर्ष पूरे कर रहा है, मैं दिल से यही कामना करती हूँ कि ये आगे भी इसी तरह देश की सेवा करता रहे, नए युग के साथ कदम मिलाकर चले और अपनी परंपरा को भी साथ लेकर आगे बढ़ता रहे, और आकाशवाणी को इस गौरवमयी 90 वर्ष की यात्रा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।
4: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में आयोजित सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर जोर दिया। अबुधाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ आज उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
5: पश्चिम एशिया में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है और उसको फ्री, ओपन और सेफ बनाए। ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
4: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
4: आकाशवाणी से बातचीत में यूएई में भारत के दूत दीपक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबुधाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग को गहरा करने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं।
7: प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान कई रणनीतिक घोषणाएं की गई। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक निर्णय लिए गए। आज नेताओं के बीच हुई चर्चाओं में प्रौद्योगिकी के विषय पर भी बातचीत हुई। भारत में 8 एक्साफ्लॉप सुपर कंप्यूट सुविधा स्थापित करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही भारत के वादिना में जहाज मरम्मत इकाई विकसित करने में साझेदारी करने का यूएई का निर्णय भी शामिल है।
4: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
8: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में शुक्रवार देर रात नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा न केवल दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि हाल ही में संपन्न इंडिया यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संदर्भ में पूरे यूरोप पर असर डालने वाली साबित होंगी। व्यापार की दृष्टि से नीदरलैंड्स भारत का 11वां बड़ा साझेदार है। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार गत वर्ष $27.8 बिलियन का रहा है। निवेश के मामले में भी नीदरलैंड्स चौथा बड़ा निवेशक है। प्रधानमंत्री अपने इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब यतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे एवं डच राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी शिष्टाचार भेंट करेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स में कम्युनिटी इवेंट को संबोधित करेंगे एवं नीदरलैंड्स की प्रतिष्ठित कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। नीदरलैंड्स से आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा।
4: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही गई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इसमें संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करना भी शामिल है। मंत्रियों ने बहुपक्षवाद को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर बल दिया। नई दिल्ली में बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि ब्रिक्स के सभी सदस्य सहयोगी देशों ने स्थिरता के निर्माण के लिए भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं का समर्थन किया।
9: ब्रिक्स के सभी सदस्य और साझेदार देश लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण की थीम पर भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं की सराहना और उनका समर्थन करते हैं। पिछले दो दिनों में हुई चर्चाओं और इन विचार विमर्श के आधार पर हमने एक अध्यक्षता वक्तव्य और एक परिणाम दस्तावेज जारी किया है। इसमें ब्रिक्स के रणनीतिक साझेदारी के 3 स्तंभों के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी विषयों पर ब्रिक्स सदस्यों की साझा स्थिति को दर्शाया गया है।
10: अंडर द 3 पिलर्स ऑफ ब्रिक्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप।
4: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापना में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराक्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: है स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाश अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से है। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन के पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आज ही कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है।
2: फ्यूल जो होता है वह किसी भी गोला बारूद का सबसे यह इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, चाहे आर्टरी शेल हो, बॉम्ब हो या कोई भी युद्ध सामग्री हो। बिना भरोसेमंद इलेक्ट्रिक फ्यूज के सब बेकार है। यहाँ बनने वाले अत्याधुनिक फ्यूज हमारी सेनाओं को ताकत देंगे और यह प्रोजेक्ट हमारी एम्युनिशन मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का एक नया चैप्टर जोड़ेगा।
1: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
3: इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, 6 गुना वृद्धि। और भारत से एक्सपोर्ट होने वाली कमोडिटीज में आज मोबाइल फोन सबसे पहली कमोडिटी बन गई है और इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट्स इस पिछले दशक में 11 गुना बढ़े हैं।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिन वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कार पूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। ये निर्णय ईंधन की खपत कम करने के केंद्र सरकार के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है। दिल्ली में विशेष ज्ञान पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया 30 जून से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि यह प्रक्रिया 29 जुलाई तक चलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे NewsOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। कोंकण और गोवा में

0: मौसम के अत्यधिक गर्म और उमस भरे रहने का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान जताया है। अगले दो दिन केरल, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई तक आने की संभावना है। केरलम में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में आज लगभग 0.2% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 161 अंक फिसलकर 75,238 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 46 अंक डूबा और 23,644 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 21 पैसे कमजोर होकर 95.97 रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
0: भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में 11वें सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर कुल 5 पदकों के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। अपर्णा दहिया और शिवानी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इससे पहले एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी में भारत ने 9 स्वर्ण 6 रजत और 12 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीते। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आज ही कर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: प्रोग्राम आपके लिए लेकर हाजिर होते हैं
3: मैंने एक ख्वाब सा देखा है।
4: जरा मैं भी सुनूं।
3: सुन के शर्मा तो न जाऊंगी
4: तुमसे नहीं।
3: मैंने देखा है कि

0: फिल्म वक्त से ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में। रानी का संगीत था, साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा।
1: ये रातें

0: लता मंगेशकर मन्नाडे की आवाजों में ये गीत चोरी चोरी फिल्म से आपने सुना, हसरत जयपुरी ने इसे लिखा।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

फिल्म जूली से ये गीत अभी आप सुन रहे हैं, लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजें, आनंद बख्शी ने इसे लिखा, राजेश रोशन का संगीत।

0: बॉबी फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम आपके लिए यहीं समाप्त होता है।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

नमस्कार, कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के फनकार उस जगमगाती स्माइल के नाम जिसके जादू से बचना मुश्किल है।

0: अलग ही है उनका हर अंदाज।
1: ये निगाहें नश्तर, ये होंठ कौसर, मेरी आगोश में होश भी बेहोश होगा।
0: तो आइए मिलते हैं द गॉर्जियस सुपर टैलेंटेड डांसिंग डीवा माधुरी दीक्षित से।

फैंस की लाडली और घर में सबसे छोटी सबकी दुलारी माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई 1967 को मुंबई में हुआ। नृत्य के प्रति जन्मजात रुझान का असर था जो नन्ही माधुरी संगीत सुनते ही ठुमकने लगती। 3 साल की उम्र से ही उन्होंने कथक सीखना आरंभ किया। कुछ ही वर्षों में कथक की बारीकियां उनके नृत्य में नजर आने लगी। जल्दी उनकी डांस परफॉर्मेंस सराही जाने लगी और बतौर कथक नृत्यांगना उन्हें स्कॉलरशिप मिली। उस वक्त वो सिर्फ 9 साल की थी।

पढ़ाई के साथ साथ माधुरी दीक्षित कल्चरल एक्टिविटीज में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करती। स्कूली शिक्षा के बाद माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनने के उद्देश्य से उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया। कुछ ऐसे संयोग बने कि उन्होंने हिंदी फिल्मों के रुपहले संसार में किस्मत आजमाने का मन बना लिया। वो साल था 1984 जब राजश्री प्रोडक्शंस के बैनर तले उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई, अबोध। इस फिल्म में उनके साथ थे बंगाल के अभिनेता तापस पॉल।

अबोध को दर्शकों का प्यार तो नहीं मिल सका, लेकिन माधुरी दीक्षित को मिली आलोचकों की प्रशंसा। आने वाले समय में माधुरी दीक्षित की कई फिल्में आईं। आवारा बाप 1985 में, स्वाति, हिफाजत और उत्तर दक्षिण 1987 में, 1988 में उनकी एक साथ चार फिल्में रिलीज हुईं, मोहरे, खतरों के खिलाड़ी, दयावान और तेजाब। फिल्म तेजाब में फिल्म हिफाजत के बाद एक बार फिर उनके साथ नजर आए अनिल कपूर। तेजाब की मोहिनी ने माधुरी दीक्षित को रातों रात स्टार बना दिया।

नवासी में कई सितारों से सजी फिल्म वर्दी में उनकी जोड़ी जैकी श्रॉफ के साथ जमी। इसी साल आई सुभाष घई की फिल्म राम लखन में एक बार फिर अनिल कपूर के साथ उनकी जोड़ी खूब पसंद की गई।

वक्त के साथ सफलता की सीढ़ियां चढ़ती माधुरी दीक्षित अलग अलग फिल्मों में अलग अलग किरदारों में फैंस के दिल में अपनी जगह बनाती गईं। मल्टी स्टारर फिल्म त्रिदेव की जया माथुर हो या प्रेम प्रतिज्ञा की भोली भाली लक्ष्मी राव या फिर परिंदा की पारो, रोल छोटा हो या बड़ा, माधुरी दीक्षित के अभिनय की छाप गहरी होती गई।

90 के दशक में माधुरी दीक्षित के करियर का एक नया दौर शुरू हुआ। 1990 में आई फिल्म कृष्ण कन्हैया के बाद फिल्म दिल की जबरदस्त कामयाबी ने उन्हें शिखर पर पहुंचा दिया। आमिर खान के साथ उनकी इस फिल्म के लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला।

अपनी फिल्मों के जरिए माधुरी दीक्षित उस नए जमाने की लड़की की पहचान बन गई, जो खूबसूरत और स्टाइलिश होने के साथ अकलमंद भी है, आजाद ख्याल है और उसूलों की पक्की है। थानेदार, 100 डेज, साजन जैसी फिल्मों ने ये साबित कर दिया कि परफेक्ट डांसिंग मूव्स और खूबसूरती के अलावा माधुरी दीक्षित में कमाल की अभिनय क्षमता है।

1992 में आई फिल्म बेटा, जिसमें एक बार फिर माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर की जोड़ी नजर आई। फिल्म जबरदस्त हिट हुई और माधुरी दीक्षित को मिला दूसरा फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड।

0: अपने अभिनय से हर किरदार को यादगार बनाने वाली माधुरी दीक्षित 90s की बॉक्स ऑफिस क्वीन बन गईं। फिल्म थिएटर से उतरने के बावजूद उनका रोल जहन में हमेशा ताजा रहा। भला कौन भूल सकता है फिल्म खलनायक की जाबाज पुलिस ऑफिसर गंगा को, या फिल्म अंजाम की सताई हुई शिवानी चोपड़ा को, या फिल्म मृत्युदंड की केतकी सिंह को, जो अपराध और अत्याचार के खिलाफ चुनौती बनकर खड़ी हो जाती है।
1: हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे।
2: देखिए, जाने दीजिए हमको, दीदी का तबीयत ज्यादा खराब है।
1: हमको भी कुछ बात करना है।
2: वो हम बाद में भी कर सकते हैं।
3: बाद में नहीं, अभी।
2: भगवान के लिए अभी ये बहस मत उठाइए, दीदी को जरूरत है हमारा।
4: देखिए श्रीमती जी, अपना औकात में रहिए, हमरा मरद बनने का कोशिश मत कीजिए।
2: औकात को ताकत का तराजू में तोड़ने का कोशिश मत कीजिए। आप हमारे पति हैं, परमेश्वर बनने का फूल मत कीजिए।
0: 1994 में माधुरी दीक्षित ने एक बार फिर राशि प्रोडक्शंस की फिल्म की हम आपके हैं कौन। सलमान खान के साथ ये उनकी एक और हिट मूवी थी, जिसके लिए उन्हें मिला तीसरा फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड।

साल 1997 लेकर आया भावनात्मक उथल पुथल से जूझते तीन किरदारों की फिल्म दिल तो पागल है। इस फिल्म में माधुरी दीक्षित के साथ शाहरुख खान और करिश्मा कपूर थे। फिल्म जबरदस्त हिट हुई और माधुरी दीक्षित ने जीता 4th फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड।

प्रेम त्रिकोण पर आधारित माधुरी दीक्षित की फिल्मों में सन 2000 की फिल्म पुकार का जिक्र भी आता है, जिसमें प्रेम में हारी ईर्ष्या दग्ध अंजलि के रूप में उनकी जमकर प्रशंसा हुई।

माधुरी दीक्षित एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो हर उम्र हर वर्ग के दर्शकों की फेवरेट रही हैं। 2001 में मशहूर चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन साहब ने उन्हें लेकर फिल्म गजगामिनी का निर्माण किया। इसी साल रिलीज हुई राजकुमार संतोषी की फिल्म लज्जा, जिसमें जानकी के रोल में उन्हें बहुत सराहा गया।

0: देश हो या विदेश, माधुरी दीक्षित की फिल्मों का जबरदस्त क्रेज रहा है। 2002 में फिल्म देवदास आई, जिसमें माधुरी दीक्षित ने चंद्रमुखी की भूमिका निभाई। इस फिल्म में कथक नृत्यांगना माधुरी दीक्षित के अभिनय को भी बहुत प्रशंसा मिली। उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा गया।
1: ढाई शाम रोक लई, रोक लई, रोक लई, ढाई शाम रोक लई और चकमुख चूम लई, मुख चूम लई, मुख चूम लई, सर से मोरी चुनरी गई, गई, गई, सर से मोरी चुनरी गई, सरक सरक सरक, सरक सरक सरक, सरक सरक।
0: फिल्म देवदास के बाद माधुरी दीक्षित अपने परिवार के साथ अमेरिका चली गईं। वहीं रहते हुए उन्होंने एक फिल्म साइन की। खबर मिलते ही एक बार फिर रुपहले पर्दे पर उन्हें देखने के लिए फैंस बेकरार हो गए और सन 2007 में उनकी बेकरारी को करार देते हुए रिलीज हुई फिल्म आजा नच ले।

सन 2012 में वो वापस भारत लौटी और 2014 में रिलीज हुई आलोचकों द्वारा प्रशंसित फिल्म डेढ़ इश्किया, जिसमें माधुरी दीक्षित के साथ नसीरुद्दीन शाह, अरशद वारसी और हुमा कुरैशी नजर आए।

0: साल अभिनेत्री जूही चावला के साथ माधुरी की फिल्म आई गुलाब गैंग, जिसमें वुमन एक्टिविस्ट के रोल में उनके सशक्त अभिनय की बहुत सराहना हुई।
1: जैसे तिल में तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। जुर्म जुर्म होता है और इंसाफ इंसाफ होता है। हमारे यहाँ कहावत है, डंडा सबका पीर होता है।
0: 2018 में माधुरी दीक्षित पहली बार एक मराठी फिल्म में नजर आई। फिल्म का नाम था बकेट लिस्ट। इस फिल्म में एक बार फिर माधुरी दीक्षित के अभिनय की धाक जम गई।

2019 में एडवेंचर कॉमेडी टोटल धमाल में वो एक बार फिर अजय देवगन और अनिल कपूर के साथ नजर आईं। 2019 में ही रिलीज हुई फिल्म कलंक में माधुरी दीक्षित के अभिनय की सराहना हुई।

सक्रियता के अलावा माधुरी दीक्षित ने जज के रूप में रियलिटी डांस शोज किए हैं। साथ ही वो अपनी प्रोडक्शन कंपनी के प्रोजेक्ट्स में भी व्यस्त रहती हैं। अपने अभिनय और नृत्य के साथ निखरती मेस्मराइजिंग माधुरी दीक्षित हर रोल में सफल हों।

0: आज केंद्रित था अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर। शोध, आलेख और स्वर राजुल का था। प्रस्तुति सहयोग मिला आकांक्षा सिंह से और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम, जिसे हम रिले कर रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविध संगीत। कार्यक्रम विविध संगीत में पहले हम आपको सुनवाएंगे पंकज उदास और साथियों की आवाजों में ये गजल, लेकिन उससे पहले आप सुनिए वंदे मातरम।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं निशा भारद्वाज और आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष, वंदे मातरम। श्रोताओं, वंदे मातरम गीत भारत के राष्ट्रगीत के रूप में अपनी एक गहरी और महत्वपूर्ण विरासत रखता है और आज इस विरासत के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ऐसे में इस विषय पर हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं श्री हितेंद्र पटेल, जो कि रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता में इतिहास के प्रोफेसर हैं। नमस्कार हितेंद्र जी, आपसे जानना चाहते हैं कि वंदे मातरम गीत की रचना किस ऐतिहासिक संदर्भ में हुई थी और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का क्या दृष्टिकोण था?
1: वंदे मातरम गीत जो है वो 1870 के दशक में लिखा गया था। शुरू में इसको संस्कृत में लिखा गया था, इसका दो स्टैंजा, और उसके बाद में इसको बढ़ाया गया, 6 स्टैंजा इसका किया गया, और 1882 में पहली बार इसको महत्वपूर्ण उपन्यास बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ में शामिल किया गया है, जिस उपन्यास में एक सन्यासी विद्रोही भवानंद जो है इसको गाता है और देश प्रेमियों को आह्वान करता है कि अपनी मातृभूमि के लिए वो सोचे, उसके लिए कुर्बानी दे। बाद में 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया हेमचंद्र द्वारा, और 1896 में रविंद्रनाथ ने इसकी एक धुन बनाई और ये इसको कांग्रेस अधिवेशन में गाया भी था। 1901 में कलकत्ता में श्रीचरण दास ने भी इसे गाया था, और इस समय तक ये देखा जा रहा है कि भारत के विभिन्न हिस्सों के जो बड़े नेता हैं, जैसे तिलक वगैरह जो हैं, वो इसको एक मंत्र के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, देश प्रेम के एक मंत्र के रूप में। 1905 में बनारस में सर

0: देवी चौधरानी ने इसको गाया था, और जैसा मैंने कहा कि इसकी जो धुन जो है वो रविंद्रनाथ ने 1896 में बनाई थी। ये बात कई जगह अन्य लोग भी कहते हैं कि यदुनाथ भट्टाचार्य थे जिन्होंने इसकी धुन बनाई थी, लेकिन जो भी हो ये तय है कि स्वदेशी आंदोलन के समय आते आते ये राष्ट्रीय एक मंत्र बन चुका था, जो अंग्रेज विरोधी राष्ट्रीय भावना थी उसका एक नारा बन चुका था। और इसका परिणाम ये होता है कि 1906 में जब बरिसाल में कांग्रेस की एक जुलूस निकली तो उसमें इसको बैन कर दिया गया कि आप वंदे मातरम स्लोगन नहीं दे सकते हैं। भीखाजी कामा ने 1907 में स्टुगार्ट में जब तिरंगा झंडा फहराया तो वहां भी वंदे मातरम जो है वो एक नारे के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। और इस तरह से हम देखते हैं कि 1906-07 तक आते आते वंदे मातरम जो है वो हमारे देश के जो लड़ने वाले थे, जो चाहते थे कि अंग्रेजों से लड़ाई की जाए और अपने देश के देशवासियों को स्वदेश प्रेम के लिए उत्प्रेरित करते हुए कुछ कहना चाहते हैं, उसका रैलिंग सॉन्ग बन गया। सब्यसाची भट्टाचार्य इतिहासकार ने एक किताब लिखी है इसके ऊपर, और उसमें उन्होंने दिखलाया है कि इस गीत मात्र से पूरे देश में किस तरह की भावना जो है उत्पन्न होने लगी थी। और बाद में धीरे धीरे इसको लेकर के कोई संदेह नहीं रहा कि वंदे मातरम जो है भारतीय राष्ट्रवादियों का, विशेषकर क्रांतिकारियों का एक स्लोगन बन गया था। रामप्रसाद बिस्मिल जब आत्मकथा लिखते हैं 1929 में तो वहां भी वंदे मातरम का उद्घोष होता है। और ये जो वंदे मातरम है यह निश्चित रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे महत्वपूर्ण गीत बना था, और इसको गाने का मतलब था कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय लोग एकजुट होकर अपनी राष्ट्रीय भावना को प्रस्तुत कर रहे हैं। 36-37 में यह तय हो गया कि इसका दो स्टैंजा जो है जिसमें कि देश प्रेम की बात की गई है उसको ही हम लोग राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार करेंगे। बाद में ये कहा गया कि हम राष्ट्रीय गान के रूप में रविन्द्रनाथ के जन गण मन अधिनायक जय हे को रखेंगे, और वंदे मातरम की चूंकि ख्याति थी, लोकप्रियता थी, इसलिए इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकृति मिली। तो गान और गीत दोनों को बराबर मान्यता दी जाए, इसके लिए एक विशेष बात हम लोग को ध्यान में रखनी चाहिए, जो जनवरी 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक वक्तव्य है और जिसका करतल ध्वनि से सबने स्वागत किया था कि दोनों ही रहेंगे, जनगण मन भी रहेगा और वंदे मातरम भी रहेगा, एक को गान कहा गया और दूसरे को गीत कहा गया, दोनों का स्टेटस बराबर का होगा। अगर हम इसके ऐतिहासिक महत्व को समझना चाहें तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वंदे मातरम ने ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणा के रूप में काम किया था। जनगण मन को गा करके लोग शहीद नहीं हुए थे, फांसी पर नहीं चढ़े थे, ये बाद में एक सॉल्यूशन के रूप में जातीय गान के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। दरअसल हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण गीत और नारा वंदे मातरम ही है, और इसी का जो इसकी इसी की जो स्पिरिट है उसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, पूरे देश में इस गान और इसकी स्पिरिट को याद किया जाना चाहिए। जब जब हम राष्ट्रीय आंदोलन के स्पिरिट की बात करेंगे तो वंदे मातरम की बात करनी ही होगी, और ये हमारा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय गीत है जो हमारी राष्ट्रीयता की भावना को स्पष्ट रूप से सामने रखता है, और इसके साथ हमारे क्रांतिकारी आंदोलन की स्मृतियां भी पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं।
1: धन्यवाद प्रोफेसर हितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।

0: माफी सब कंगा।
1: कार्यक्रम विविध संगीत में अभी आपने पंकज उदास और साथियों को सुना।
2: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
3: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
2: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
3: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
2: आकाशवाणी से।
4: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
6: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
5: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: जगजीत सिंह की आवाज में अभी आपने ये गजल सुनी।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
3: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
3: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
4: आकाशवाणी से।
5: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविध संगीत, इसका प्रसारण आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से किया जा रहा था। FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम रजनीगंधा कार्यक्रम को आज हमने सजाया है लता मंगेशकर के गाए हुए कुछ लोकप्रिय सुमधुर और सदाबहार गीतों से। पहले सुनिए खानदान फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है नक्शलायलपुरी ने और संगीतबद्ध किया है खयाम ने।

कार्यक्रम का अगला गाना सुनिए, शंकर हुसैन फिल्म से। जानिसार अख्तर के बोल हैं, खयाम का संगीत है। और जैसा कि आप जानते हैं, कार्यक्रम रजनीगंधा को आज हमने सजाया है लता मंगेशकर के गाए हुए कुछ सुमधुर, लोकप्रिय और सदाबहार गीतों से।

और लीजिए अब सुनिए पत्थर के सनम फिल्म का ये गीत, आनंद बख्शी का लिखा हुआ और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया हुआ, लता मंगेशकर की आवाज में।

लता मंगेशकर के गाए कुछ सुमधुर लोकप्रिय और सदाबहार गीत इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रायगढ़ के लोकप्रिय कार्यक्रम रजनीगंधा में। और लीजिए सुनिए ये गीत।

लता मंगेशकर की आवाज में ज्वेल थीफ फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनवाते हैं आपको रजनीकांधा कार्यक्रम में दिल अपना और प्रीत प्राय फिल्म का ये सदाबहार गीत।

लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में दिल अपना और प्रीत प्राय फिल्म का यह गीत सुना। इस गीत को लिखा था शैलेंद्र ने, संगीतबद्ध किया था शंकर जयकिशन ने। और कार्यक्रम रजनीकंधा के अंत में हम आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में लव इन टोक्यो फिल्म का गीत, हसरत जयपुरी का लिखा हुआ और शंकर जयकिशन का स्वरबद्ध किया हुआ।

तो ये था कार्यक्रम रजनीगंधा, और आज के इस कार्यक्रम को हमने सजाया था लता मंगेशकर के गाए हुए कुछ सदाबहार, सुरीले और लोकप्रिय गीतों से। आज इस कार्यक्रम में जिन फिल्मों के गाने आपने सुने उनके नाम थे खानदान, शंकर हुसैन, जोएल थिप, पत्थर के सनम, दिल अपना और प्रीत पराई, और आखिर में लव इन टोक्यो। और इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से किया जा रहा था। रात्रि के 11 बजने को है थोड़ी ही देर में हिंदी में समाचार, और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हुरमुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। हॉर्मोन को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान एएमसीए निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई

0: जाएगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। विधानसभा में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने प्रश्नकाल, बहस, विधेयकों और बजटों के सीधे प्रसारण की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस राज्य की जनता को विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की गतिविधियों को देखने का पूरा अधिकार है और ये सत्र के सीधे प्रसारण के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जा सकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीआई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय पूर्णिमा सामंत कड़ाकोटी। Prime Minister Narendra Modi today reiterated India's support for safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz, underscoring its importance for regional stability as well as global energy and food security. After high-level talks with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi, Prime Minister Modi strongly condemned recent attacks on UAE.
2: Hormuz ko free, open aur safe banaye rakhna. ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विजन में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: Prime Minister Modi arrived in UAE this morning on the first leg of his five-nation tour covering the UAE and Europe. He was received by UAE President at the presidential airport and accorded a ceremonial welcome with UAE F-16 fighter jets escorting his aircraft as it entered Emirati airspace. Mr. Modi expressed gratitude to the UAE leadership for the warm reception, noting in a social media post that he looked forward to strengthening cooperation across key areas including energy, investment and supply chains. Concluding his UAE visit, the Prime Minister left for the second leg of his tour to Netherlands. Thereafter, Mr. Modi will visit Sweden, Norway and Italy during the six-day tour. Foreign ministers of BRICS have reiterated their commitment to reform and strengthen global governance. In the outcome document, the ministers called for a more equitable, democratic and accountable international and multilateral system. They noted rising global polarization and distrust and urged collective action to strengthen international peace and security. The ministers also called for addressing global challenges through diplomatic and political means to reduce conflict risks and stressed the importance of conflict prevention by tackling root causes. The ministers stressed their commitment to uphold multilateralism as necessary to address challenges threatening their shared planet and future, such as climate change. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today addressed the open session on the second day of the BRICS Foreign Ministers meeting. He said India remains committed to working with all partners in advancing the goal of reformed and effective multilateralism. Dr. S. Jaishankar also met foreign ministers of Iran, Malaysia, Uganda, Cuba on the sidelines of the meeting. Prime Minister Narendra Modi has said that government remains committed to improving ease of doing business and ease of living for the countrymen. In a social media post, Mr. Modi